0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से

अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करती हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आंख में दिक्कत है तो हम आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति, हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को
किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सोच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा लें तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई आज मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ ना, वो आप सभी को ये लगेगा कि हर किसी का सपना होता है, हर किसी एक लड़की का सपना होता है, हर एक औरत का सपना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हर एक औरत हर एक लड़की का सपना होता है। ज्यादा पैसे, अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड, नाना, ये सब तो सेकेंडरी है। पहली प्राथमिकता होती है अपनी सुंदरता, और सुंदरता का नाम जहां लिया जाए वो सबसे पहले बात होती है बालों की। बाल सभी के सुंदर होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, लेकिन एक ख्वाब जरूर होता है कि बाल हम सभी के बड़े हों, लहराते हुए बाल, चमकीले बाल, स्वस्थ बाल। लेकिन उसको पाने के लिए हम कितनी ज्यादा मशक्कत करते हैं, जिनके छोटे होते हैं, पतले होते हैं, काफी कुछ हम अपने बालों की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए रेमेडीज का यूज करने लगते हैं, घर में बनाए हुए नुस्खों को अपनाने लगते हैं, बाहरी चीजों को जो केमिकल युक्त होती हैं उसको हम लेकर के बालों में लगाने लगते हैं, कई ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हैं जो कि महंगे महंगे पार्लर्स में जा कर के, और बहुत सारे अब तो ये हो गया है कि हॉस्पिटल्स में भी होता है, इंजेक्शंस लगाई जाती हैं और ऐसे ऐसे महंगे ट्रीटमेंट बालों के लिए होते हैं, जो कि हमारे लिए आगे चलकर, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बालों के लिए वो नुकसानदायक भी होता है। थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब हमारी एज बढ़ने लगती है वो सब का सब वहीं धरा का धरा रह जाता है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजों को अपनाएं
जो हमेशा से साथ रहने वाली है, एवरग्रीन होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। योगशाला में आकर मैं योग के बारे में ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। योगशाला में आकर के योग को अपनाएंगे तो हमारा संपूर्ण शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है, साथ ही साथ हम सुंदर भी बनने लगते हैं। और सुंदरता, जैसा कि अभी मैंने बताया, बालों से, स्त्री की सुंदरता जो होती है वो वाकई में बालों से ही देखी गई है। तो आइए आज कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को घर बैठे बिना किसी खर्चे के सुंदर, चमकदार, मजबूत और लंबा कर सकता है। तो कुछ ऐसे आसन हैं जिसे हम अगर नियमित रूप से अपना लेंगे तो हमारे बालों की जड़ों पर यह जाकर के काम करेगा। सबसे पहला आसन मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ वो है अधोमुख श्वासन, जो कि सिर की ओर रक्त संचार बढ़ाता है, जड़ों तक पोषक तत्व को पहुंचा करके बालों की ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा आसन है सर्वांगन यानी शोल्डर स्टैंड, हार्मोन संतुलित करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तीसरा आसन जो है वो है शीर्षासन, इसे बालों का राजा आसन कहा जाता है। सिर में रक्त का संचार बढ़ता है जिससे बाल लंबे घने बनते रहते हैं। अगला आसन है वज्रासन, पाचन को सुधारता है जिससे पोषक तत्व शरीर को और बालों तक अच्छी तरह पहुंचते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर का व्यायाम करता है, यह तनाव को कम करता है और बालों के लिए आवश्यक ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। प्राणायाम बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि अनुलोम विलोम, तनाव कम होगा, बाल झड़ना अपने आप रुकेंगे, बाल बढ़ना अपने आप होंगे। कपालभाति, शरीर से विषैले तत्व निकालता है और बालों में निखार लाता है। भ्रामरी प्राणायाम, दिमाग शांत करता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है। साथ ही साथ में जब हमारा दिमाग शांत रहेगा, हार्मोन ठीक होंगे, तो हमारा संतुलित आहार अपने आप से हमारे पूरी बॉडी में काम करेगा। पोषक आहार, योग के साथ साथ हमें पोषक आहार भी लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, ई, ओमेगा 3 बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब मैं आपको 15 मिनट का प्राणायाम रूटीन बालों के लिए बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको बालायम योग यानी नाखून रगड़ना 3 मिनट या आपको सुबह कंटिन्यू करना है। हाथों की चारों उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ें, अंगूठों के नाखून ना रगड़ें, धीरे धीरे लगातार अपनी उंगलियों को रगड़ें। इससे सिर की नसों और बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़ता है। यह आपको 3 मिनट करना है। दूसरा अधोमुख श्वासन, यह आपको 2 मिनट करना है। जमीन पर झुककर उल्टे वी के आकार में खड़े हो जाएं, सिर को नीचे की ओर रखें और रीढ़ सीधी रहेगी। सिर की ओर रक्त का प्रभाव बढ़ता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। अधोमुख श्वासन 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट में यह आसन आप 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आए आपको यह आसन करना है। तीसरा आता है वज्रासन, जो कि 2 मिनट आपको करना है। घुटनों के बल बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें, जिससे पाचन सुधरता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। वज्रासन, यह आसन हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः खाना खाने के बाद में यह आसन जरूर करना चाहिए। चौथा अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह आपको 3 मिनट करना है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नौसिका बंद करें, बाईं नौसिका से गहरी सांस लें, फिर दाहिनी नौसिका से छोड़ें। इसी तरह यह क्रम बदल कर करते रहें पूरे 3 मिनट, जिससे तनाव घटता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बालों की नसों में भी ऑक्सीजन पहुंचता है,
जिसके कारण से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। पांचवा आसन है कपालभाति, जो कि हमें 2 मिनट करना है। आराम से बैठें, गहरी सांस लेकर जोर से सांस छोड़ें। पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचें, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और हार्मोन जो है वो संतुलित होता है। छठा प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमको 3 मिनट करना है। आंखें बंद करें, कानों को उंगलियों से बंद करें, गहरी सांस लेकर का उच्चारण करें, जैसे मधुमक्खी की ध्वनि होती है। तनाव और चिंता कम होती है, जिससे बाल झड़ना रुकता है। तो कुल मिलाकर के यह 15 मिनट हो गया। आप इसे रोज सुबह खाली पेट या शाम को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, फल, मेवे, दूध, दही, दालें, बीज, ओमेगा 3 वाले फूड्स जरूर से लें। अगर आपने यह नियमित रूप से अपना लिया तो आपके बाल बहुत ज्यादा सुंदर होते जाएंगे और नियमित रूप से आपके बाल जो झड़ते हैं वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगली प्राणायाम और आसन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

काम करना, जॉब को लेकर के बैठने और एक साथ कई घंटों तक काम करने की वजह से पीठ दर्द की समस्या सभी को होती है। ठीक उसी तरह जैसे यदि हम कोई भी काम एक साथ 8-5 घंटे तक बैठ के करते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी निपटा लें, उसके बाद हम आराम कर लेंगे। बस इसी आदत के कारण से हमारी जो भी अवस्था होती है हम उसमें ढलने लगते हैं और ये आगे चल करके हमारी दर्द का कारण बन जाता है। पीठ दर्द अमूमन आजकल हम सभी घर में सभी किसी न किसी एक व्यक्ति को हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीठ दर्द को कम करने के आसान से योगासन। पीठ दर्द को कम करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में प्राणायाम बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास से रक्त संचार सुधरता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में भी तनाव कम होता है और साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। पीठ दर्द के लिए बहुत सारे वैसे प्राणायाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य रूप से प्राणायाम की गिनती में आप सभी लोग मिलकर के करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी प्रकार के दर्द को दूर करने के साथ साथ हमें हमारे स्वस्थ शरीर को प्रदान करता है, जो कि रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ हमारे दर्द को भी घटाता है। अनुलोम विलोम आप सभी को पता है कि हमको अनुलोम विलोम कितनी देर करना है, 5 से 7 मिनट। ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में आप 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ कपालभाति रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, इसीलिए हमें नियमित रूप से कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति की भी समय अवधि स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट और हम समय के हिसाब से उसे बढ़ाते जाएंगे तो 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि नसों को शांति देता है, दर्द और बेचैनी को भी कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम जिसे हम विपरीत भी कहते हैं, यह हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक नसों को इतना आराम देता है कि हमारे सारे दर्द को दूर कर देता है। चौथा प्राणायाम दीर्घ प्राणायाम। गहरी सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर पीठ की जकड़न को कम कर देती है। पांचवा प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, रीढ़ की सिधाई और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। उज्जयी प्राणायाम, वैसे तो हम कई ऐसे प्राणायाम करते आ रहे हैं जिसमें गर्दन, पीठ, रीढ़ की सिधाई और भी हमारी नसों को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम विशेषतः गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है। सुबह खाली पेट या सारे प्राणायाम करने से इसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। आरामदायक आसन में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन, वज्रासन या फिर कुर्सी पर सीधा बैठना। 5 से 10 मिनट में शुरुआत करते करते धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना है। सबसे जरूरी है इसमें नियमितता, यानी कि हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तभी हमें इसका लाभ जरूर से मिलता है। या तीव्र पीठ दर्द, डिस्क या कोई गंभीर रीढ़ की समस्या है तो किसी योग और किसी भी योग से हम जुड़ सकते हैं, जैसे कि आज हमने आपको 5 योगासन बताए। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम की ओर जो कि हमारी पीठ दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। पीठ दर्द को कम करने के लिए बिल्ली, गाय, मुद्रा, घुटने से छाती तक खिंचाव करने के बाद में उसे उक्तासन जैसे योग आसन किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे बिल्ली, गाय, मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने अपनी सीरीज में आपको बताया है

और गाय की मुद्रा। पीठ दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको बिल्ली गाय मुद्रा ही बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, कलाइयाँ कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी पीठ को मोड़ें, पेट को नीचे की ओर झुकाएं और सिर व टेलबोन को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल करें, हड्डी को छाती से सटाएं और पेट को अंदर खींचें। यह है बिल्ली मुद्रा। इस प्रक्रिया को 6 से 8 बार हम दोहरा सकते हैं। घुटने से छाती तक जो खिंचाव होगा वही हमारा यह मुख्य उपाय होगा। पीठ के बल लेट जाना है, एक घुटने को अपनी छाती की ओर खींचें और कुछ सेकंड रुकें, फिर छोड़ दें। इस क्रिया को हम 5 बार दोहरा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं उत्तान आसन, यानी कि खड़े होकर आगे झुकना। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर खड़े होकर के रख करके खड़े हो जाएं। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए अपनी बाहों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को लटका दें और कुछ सेकंड रुक जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और इसे 3 से 5 बार दोहराएं। पीठ को सीधा रखने की कोशिश हमेशा से करें, यानी कि जब भी हम बोलें बैठें तब हम नियमित रूप से सीधे ही बैठने की कोशिश करें। क्या होता है दोस्तों कि कई बार हम कई घंटे एक जगह बैठे बैठे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक कसाव सा होने लगता है, जिसके कारण से हम झुकने लगते हैं। गर्म या ठंडी सिकाई करने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है। लेकिन मैं आपको जो आज अभी हम सब लोगों ने मिलकर आसन किए, यह आसन बहुत ही उपयोगी है और इन आसनों को जरूर से करना चाहिए। पीठ में जकड़न का इलाज करने के लिए हल्के व्यायाम जो आज हमने आपको बताए, स्ट्रेचिंग या गर्म ठंडी चिकित्सा का उपयोग हम कर सकते हैं। आराम करने से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, जबकि अगर आपको काम के दौरान भी 5 से 10 मिनट मिल रहा है तो जिनको भी पीठ में दर्द होता है वह जाकर के एक बार सीधा जरूर लेट जाए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है और गर्म या ठंडी सिकाई से रक्त प्रभाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। अपनी सारी मुद्राएं आराम से करने के बाद में तनाव मुक्त होकर के ही हम लेट जाएंगे। स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की जितनी भी अकड़न होती है वह तो दूर होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी बड़ा आराम मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का, यानी कि योगशाला में आज हमने बताया पीठ दर्द को कम करने के साधारण से उपाय और व्यायाम। आइए हम सभी मिलकर के करते हैं और मिलते हैं अगली योगशाला में सुबह 6 से 7, क्योंकि हम सभी मिलकर के जब योग करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए।

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर वक्रतुंड सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना, इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती, प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखार बिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों, अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है। कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना। तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है, बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है, यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र,

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीजों को स्वस्थ रखती हैं, माँ शारदे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए, अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है, और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए, इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं, तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से, जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया, जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्री पग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

तुम्हारे घर से गुजरता था। दूरियां बढ़ती गई पर दिल फिर भी धड़कता था। आखिर एक अनजान मोड़ पर हम बिछड़ कर रह गए। जमाने से ज्यादा मोहब्बत करी थी इसलिए शायद ये जख्म सह गए।

देखिए भाई, सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठने जा रहे हैं तो आपको पता होता नहीं कि भाई इसमें करना क्या है। अब ये प्लेन में बैठने के नियम कानून क्या है, लोग कहते हैं भाई लगेज का एक वजन ही

आउट होता है, एंड दूसरा होता है कि चेकिंग कहाँ होती है, कितने पहले जाना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या सिर्फ टिकट ही लगता है, और कैसे चेक इन होता है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स आपके चैट बॉक्स पर मैसेजेस आ चुके हैं, तो चलिए भाई आपके मैसेजेस में आप लोगों ने मॉर्निंग की मुबारकबाद दे दी, एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कल आंधी पानी के चलते इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से अभी तक आप नहीं सुन पा रहे थे 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। फिलहाल आप तक आवाज़ आ रही है और अब आप जुड़ चुके हैं अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुंडा में विद योर मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान। तो चलिए भाई इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और बताते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एयरपोर्ट तो किन किन बातों का आप ख्याल रखने वाले, क्योंकि आपको चिंता होती है यार कैसे होगा भाई कैसे। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता कि कैसे होगा तो हम बताते हैं कि आखिर ये कैसे होगा, सब कुछ आपके मॉर्निंग वाले शो में।

0: साहिबा के साथ सा ख्याल जो है उससे कहीं ज्यादा, अगर आप पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं वो भी प्लेन से, तो उसका ख्याल ज्यादा आता है कि भैया हम जाएंगे कैसे। खैर कोई बात नहीं, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम रही है, एक टाइम को हमारी भी थी जब तक हम भी नहीं बैठे थे, लेकिन फिलहाल आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बताते हैं। अगर पहली बार आप जा रहे हैं हवाई यात्रा करने प्लेन से, तो आखिर आपको किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपके डर को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपके डर का करेंगे छूमंतर, और कैसे, कुछ तरीकों से। चलिए बताते हैं क्या है वो तरीके अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं प्लेन से।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

जादू मंत्र काला का मंत्र दिल के अंदर जो है डर वो हो जा छू। चलिए अब बताते हैं क्या करना अगर पहली बार फ्लाइट में आप सफर कर रहे हैं, घबरा जाते हैं ना आप भी, अरे क्या होगा भैया, कितना ले जाना है, किलो तो हमने नापा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, देखिए कुछ स्टेप्स के जरिए हम जाने की कोशिश करेंगे कि अगर फर्स्ट टाइम आप फ्लाइट से कहीं भी जा रहे हैं, आप इवन लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं या कहीं से निकल करके विदेश जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, देश में किसी भी एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो किस तरह से हवाई यात्रा के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। स्टेप वन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करते हैं भाई, निकलने से पहले आप पैकिंग शैकिंग करते हैं कि अरे वो वाली टी शर्ट रहेगी ब्लैक वाली, वो हम पे ज़रा स्मार्ट लगती है भाई साहब, उसको भी रख लो। तो इस तरह से हम पैकिंग में जो है वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। सो पैकिंग के नियम क्या है ये जान लीजिए, जो आप बैग लेके जा रहे हैं, जो लगेज है आपके साथ में वो क्या है। सो केबिन बैग जो है वो 7 किलोग्राम, जी हाँ, और 7 किलोग्राम में क्या है कि इसे आप अपने साथ प्लेन के अंदर ले जाएंगे, यानी जो पिट्ठू बैग जिसे आप बोलते हैं, केबिन बैग का मतलब ये जो केबिन में आप अपने साथ प्लेन में ले जा सकते हैं, यानी जिसमें आपकी कोई कीमती चीज़ लैपटॉप वगैरह या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो आप ले जाते हैं केबिन बैग में, जो कि 7 किलो तक अलाउड होता है, 7 kg तक। सो इसे आप अपने प्लेन के अंदर ले जाते हैं, इसमें क्या होता है, लैपटॉप होता है, पावर बैंक होता है, या कीमती सामान हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हो, तो आपको इसी बैग में रखना होता है क्योंकि ये आपके पास में होता है। इसके अलावा चिकन बैग जो है उसको लेकर के इसे आप अंदर नहीं ले जा सकते, जो बड़े लगेजेस होते हैं इसको आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये काउंटर पर ही आपको जमा करना होता है। इसके बाद इसमें पावर बैंक या लाइट आपको भूल कर भी नहीं डालना है क्योंकि इसके बाद ये आपको मिलने वाला नहीं है, ये सीधे आपको उसी एयरपोर्ट में मिलेगा जहां आप लैंड करेंगे। सो इसलिए आप ऐसी कोई भी ज़रूरी चीज़ अपने चेक इन बैग में मत डालिए, जो अपने साथ बैग ले जा रहे हैं जिसको हम केबिन बैग बोल रहे हैं उसमें ही आपको डालना है, जो ज़रूरी चीज़ को, जो आपको अपने यात्रा के दौरान जिन चीज़ों को यूज़ करना है और वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है आपके लिए, वो आप अपने केबिन बैग में रखेंगे। बाकी कपड़े और ऐसी चीज़ें जो आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं है यात्रा के दौरान, तो फिर आप उसको चेक इन बैग में डाल देंगे। इसके अलावा अगर हम बताएं स्टेप टू की बात, एयरपोर्ट पर कब पहुंचना है और एंट्री कैसे होने वाली है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है स्पेशली उनके मन में जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वेब चेक इन होता है, यानी फ्लाइट से 24 घंटे पहले अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर जा करके आप सीट अपनी चुन सकते हैं 24 घंटे पहले, जी हाँ। एंड टाइम की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। डोमेस्टिक फ्लाइट क्या है, ऑफकोर्स जो फ्लाइट देश से ही उड़कर देश में ही जाती है, मान लीजिए आप लखनऊ से उड़े और अहमदाबाद तक गए, या लखनऊ से मुंबई, या दिल्ली से आप रांची चले गए, या रांची से आप चले गए जयपुर, मतलब देश में ही एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाना, ये डोमेस्टिक फ्लाइट आती है। जबकि इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं जो एक देश से दूसरे देशों तक जाती हैं। तो डोमेस्टिक का जो नियम है वो 2 घंटे पहले आपको कम से कम पहुँच जाना है। एंट्री कैसे होने वाली है, एंट्री पर भी एक सवाल होता है कि भाई एंट्री कैसे होगी। सो गेट पर सिक्योरिटी को अपना ओरिजिनल जो आईडी है, अब आईडी में क्या हो सकता है, आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, और फ़ोन में जो टिकट है वो दिखाना होता है, यानी एक आईडी और आपका जो टिकट है जहां से जहां तक जाने का, ट्रैवल करने का, इसको दिखा करके आपको एंट्री मिलती है गेट पर। इसके बाद आता है नंबर 3 स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में काउंटर पर बैग आपको जमा करना होता है। कैसे, आइए बताते हैं। सो इसमें क्या होता है कि एयरपोर्ट के अंदर स्क्रीन पर अपनी एयरलाइन, जैसे अब आप मान लीजिए आपकी एयर इंडिया है या इंडिगो है या स्पाइस जेट है या अकासा है, कोई भी है, इसका नाम देख करके उसके काउंटर पर आपको जाना होता है कि आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं। जैसे आपको पता होता ना कि इंटरसिटी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और वैशाली कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, सत्याग्रह कब आएगी कौन से प्लेटफॉर्म पर, उसी तरह फ्लाइट का होता है, कंपनीज होती हैं अलग अलग कि एयरलाइन कौन सी एयरलाइन की, इंडिगो की है या एयर इंडिया की है, अकासा की है, स्पाइस की है, किसकी है, तो वो आपको देखना होता है और उसके बाद उसी के काउंटर पर जाना होता है क्योंकि वहाँ पर सबके अलग अलग काउंटर्स होते हैं।
सो अपना बड़ा बैग यानी चेक इन बैग, बड़ा बैग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ में रहता है लेकिन वो प्लेन में लगेज के सेक्शन में रहता है, वो आपको दिया नहीं जाता है। तो अपने बड़े बैग वो वहाँ पर मशीन में आपको रखना होता है और एयरलाइन स्टाफ उस बैग पर जो है उसको लगा कर मशीन पर चेक कर लेते हैं और आपका फिजिकल बोर्डिंग पास जो है वो आपको वहीं पर दे दिया जाता है। ऐसा आपको जब आप अंदर जाते हैं बैग जमा करते हैं, ये प्रक्रिया उस दौरान चल रही होती है, हम उस दौरान के बारे में ही आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एंड इसके बाद क्या आता है, स्टेप चार आता है जो कि सिक्योरिटी चेकिंग जिसे हम बोलते हैं। जी हाँ, अब ये सिक्योरिटी चेकिंग में क्या होता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। फिर बोर्डिंग गेट और उड़ान जो स्टेप पाँच है वो भी हम आपको बताएंगे। लैंडिंग और घर वापसी को लेकर के स्टेप छः पे भी हम आपको बताने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स इस तरह से आपकी यात्रा कैसे मुकम्मल होने वाली है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है बल्कि बने रहे हैं अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आरजे नांग के साथ। चलिए इस गाने को सुनिए, अभिजीत की आवाज़ में है अभिजीत भट्टाचार्य और ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, ये आपके प्लेन से सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। इस गाने को एंजॉय करेंगे, वापस से आएंगे और आने के बाद जानेंगे कि भाई आखिर स्टेप चार पर सिक्योरिटी चेकिंग में क्या होता है। स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या बात है। और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में लम्हा लम्हा फ्रॉम द मूवी गैंगस्टर। वाओ व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, कितना प्यारा है, कितना बेहतरीन है और कितना रोमांटिक है, और स्पेशली इस मौसम में तो बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठ रहा है बॉस। आपने ट्यून कर लिया गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका अपना मॉर्निंग जॉकर चेतनान। सो फिलहाल हम थे भाई स्टेप्स पे बताने के लिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी हवाई यात्रा फ्लाइट से, तो आखिर आप क्या क्या चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं, और 6 स्टेप्स में हम आपको बता रहे हैं पूरी यात्रा किस तरह से होती है। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और बताते हैं कि अगला स्टेप आखिर क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो हमने पैकिंग की स्टेप को जान लिया कि भाई कितना ले जा सकते हैं वजन में, और कौन से दो अलग अलग लगेजेस होते हैं, केबिन बैग के बारे में, साथ ही चेक इन बैग के बारे में। फिर एयरपोर्ट पर आपकी एंट्री को लेकर बताया, फिर काउंटर पर जो बैग जमा करते हैं उसको लेकर बताया। अब सिक्योरिटी चेकिंग को लेकर के आपको बताते हैं, जो कि स्टेप फोर है। इसमें क्या है, यहाँ आपको प्लास्टिक की ट्रे दी जाती है। प्लास्टिक की ट्रे खाने पीने के लिए नहीं दी जाती है कि इसमें बैठ के आराम से खाइए, इसको होता है कि इसमें अपना मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक जैसे, और आपकी जैकेट है या बेल्ट है, इसको निकाल कर उस ट्रे में रख देना होता है। आपकी और आपके बैग की चेकिंग होती है, इसके बाद आप अपना सामान बैग में वापस से डाल सकते हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये रूटीन प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप पकड़ गए हैं, आप पे कोई शक है, ये सबके साथ होता है। इसके बाद आता है अगला स्टेप, बोर्डिंग गेट और उड़ान। जी हाँ, सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अपने बोर्डिंग पास पर गेट नंबर देखना होता है, क्योंकि अलग अलग गेट नंबर्स होते हैं। साइन बोर्ड फॉलो करके वहाँ पहुँचना होता है, जैसे ट्रेन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि अलग प्लेटफॉर्म पे अलग ट्रेन आएगी, उसी तरह पे आपके बोर्डिंग के लिए होता है बोर्डिंग पास, जिस पर आपका गेट नंबर होता है। और जब अनाउंसमेंट होता है तो लाइंस लग करके प्लेन के आगे अंदर जाना होता है, अपनी सीट ढूंढना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सीट है 12A, तो आप 12A पे जाके ढूंढ लेंगे, या अगर आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर आप एयर होस्टेस से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अपना फ़ोन जो है एयरप्लेन मोड पर डाल देना होता है, सीट बेल्ट बांध लेना होता है, और बादलों का नज़ारा और मज़ा ले लेना होता है। इसके बाद घर वापसी की अगर हम बात करें लास्ट स्टेप पे, यानी स्टेप नंबर 6, लैंडिंग और घर वापसी। सो बैगेज क्लेम क्या होता है और कैसे होता है, सो अपने फ्लाइट के बाद में बाहर निकलना होता है और बैगेज क्लेम का बोर्ड फॉलो करना होता है। अब अगर आप देखेंगे तो बैग टैग अपने फ्लाइट के नंबर या सामान क्लेम के नंबर के साथ में आपको चेक कर लेना होता है कि यही आपका लगेज है, और सारा बैग मिल जाने के बाद एग्जिट गेट से आपको हा हा हा करते हुए निकल जाना होता है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी पहली हवाई यात्रा होती है, यानी जो डर होता है कि भाई किस तरह से फ्लाइट का टिकट है, मुझे नहीं पता कैसे जाना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमने आपको 6 स्टेप्स में बताया। पहले स्टेप में बताया कि केबिन बैग और चेक इन बैग होते हैं। केबिन बैग 7 किलोग्राम का होता है और चेक इन बैग जो है वो 15 किलोग्राम तक का उसमें आप सामान रख सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई ऐसा सामान मत रखिए जो आपको ज़रूरत पड़े, वो आपका ज़रूरत का सारा सामान होना चाहिए केबिन बैग में, जो कि आपके ट्रैवल के दौरान भी आपके साथ में रहेगा। स्टेप 2 पे बताया कि एयरपोर्ट पर पहुंचना कैसे है, यानी वेब चेक इन से 24 घंटे पहले भी अपनी वेबसाइट पर जाकर सीट चुन सकते हैं। टाइमिंग जो होती है 2 घंटे पहले डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पहले आना होता है, एंड एंट्री जो है गेट एंट्री होती है, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपना जो होता है चेक करता है, और ओरिजिनल एक आईडी के साथ में, चाहे आपका आधार हो या वोटर आईडी हो, और साथ ही साथ फ़ोन से अपना टिकट दिखा देना होता है। स्टेप 3 पर हमने आपको बताया काउंटर पर बैग जमा करने का नियम, जिसमें आपकी एयरलाइंस जो है इंडिगो है, एयर इंडिया है, कासा, स्पाइस है, जो भी है उस पे उसके काउंटर पर आपको जाना होता है और चेक इन बैग वहाँ मशीन पर रखना होता है, फिर वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। इसके बाद हमने बताया सिक्योरिटी चेकिंग, जो कि स्टेप नंबर 4 था। यहाँ आपको प्लास्टिक की ट्रे मिलती है जिसमें आपका अपना मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, पावर बैंक, जैकेट, बेल्ट, ये सब निकाल कर रख देना होता है। आपकी और सामान की दोनों की चेकिंग होती है, उसके बाद आपको दोनों ही चीज़ें वापस मिल जानी होती है, और यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हमने बताया आपको बोर्डिंग गेट और उड़ान के बारे में, कि अपने बोर्डिंग पास पर आप गेट नंबर देखते हैं और साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जब अनाउंसमेंट हो तो लाइन में लगकर आप प्लेन के अंदर चले जाएं और अपनी सीट ढूंढ लें। इसके बाद अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डालें और सीट बेल्ट बांधे और बादलों का नजारा लेने लग जाए। इसके बाद लास्ट में हमने बताया बैगेज क्लेम के बारे में। जब आप वहां पहुंच जाते हैं, लैंडिंग हो जाती है, तो अपने फ्लाइट के बाद आपको बाहर निकलना होता है और बैगेज क्लेम का बोर्ड को फॉलो करना होता है, और उसके बाद बैग पर टैग और अपने फ्लाइट नंबर या फिर सामान क्लेम के नंबर के साथ में आपको चेक करना होता है, उठा लेना होता है और निकल जाना होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। सो उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने अभी तक हवाई यात्रा नहीं की है या प्लेन से नहीं गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात की उलझन होती है कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सो आई होप कि आपको अब इस बात की जानकारी हो गई है,
और आज ही आप कहने वाले हैं कि भैया हम जा तो रहे, निकल रहे, नहीं आज इतनी जल्दीबाजी में जाना सही नहीं है। सो जब भी आपको जाना हो बट ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे हम चाहेंगे कि भाई आप ट्रैवल करिए, क्योंकि वापस से मई आ गया है और मई जून तो भाई घूमने के महीने होते हैं। फिलहाल आइए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं फ्रॉम द मूवी लव आजकल।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका मॉर्निंग वाले शो में वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

यार हर घर में कोई ना कोई ऐसी कीमती चीज होती है जिसको लेकर के बड़ा बखान होता है। सो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको फेंकने पर घर में WWE हो जाता है। जी हाँ, यानी WWE वाली फाइट हो जाती है अगर उस सामान को आपने फेंक दिया। ऐसे कई सारी फैमिलीज हैं, ऐसे कई सारे परिवार हैं जहां पर घर की कोई ऐसी पुरानी चीज होती है जिसके फेंकने पर WWE शुरू हो सकता है। सो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ है जो पुरानी है और उसको अगर आप फेंकेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है घर में। सो ऐसी कोई अगर बात है, ऐसा कोई भी सामान है तो आप बता सकते हैं। मेरे घर में भी है। जी हाँ, मेरे घर में भी ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको अगर हम फेंक दें तो उस पर WWE हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पुराना बक्सा संदूक जिसका फिलहाल तो कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी को उससे इतना ज़्यादा प्यार है कि वो नहीं भी काम में है लेकिन वो होना चाहिए। ऐसे अगर उसको कोई ऐसी बात भी कर दे कि इसको फेंक दिया जाएगा तो वो सीधे घर से निकलवाने की बात करते कि तुम खुद निकल जाना। तो ऐसी अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के अगर आप अपने घर से उसको हटाने का सोचते हैं तो आपके घर में हो सकती है महाभारत यानी कि WWE। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल हम आपको ले चल रहे हैं अंकित तिवारी के महफूज सॉन्ग की तरफ। आज हम कुछ पुराने और कुछ नए एक एक करके यूं सॉन्ग सुन रहे हैं और काफी मजे हो रहे हैं। फिलहाल आइए अंकित तिवारी की आवाज में ये महफूज गाना सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उस चीज को फेंकने के बाद भी महफूज रहें।

0: सो फिलहाल एरोप्लेन की बात पर कुछ प्लेन वाले जवाब आए हैं जो प्लेन दिखने में है लेकिन है काफी स्पाइसी। तो चलिए क्या रिएक्शन दिया है आपने बता देते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो भाई नगेश्वर ने प्लेन उड़ाकर भी बता दिया कि ऐसे करते हुए निकला क्या। और कैफ पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ समस्या बता सकते हैं, कैसी समस्या बताइए आप, हालांकि हम कोई बाबा नहीं है उस तरह वाले कि बताओ बच्चा हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिलहाल इसके बाद नगेश्वर ने कहा कि एरोप्लेन में बैठने के बाद अगर कुरकुरा खाने का मन करे तो खा के खाली पैकेट खिड़की से फेंक सकते हैं क्या। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लेन्स की खिड़की तो परमानेंट बंद रहती है, लेकिन ऐसे शौकीन आदमी को फेंकने के लिए एक इमरजेंसी गेट हमेशा बाहर रहता है। सो यू कैन ट्राई। ऑलराइट, सो इन्फॉर्मेशन इनको बहुत बढ़िया लगी और कहीं ना कहीं इस बात को अप्रिशिएट किया है हमारी गीता श्रीवास्तव जी ने भी। आपने भी कहा कि सर पहली बार मेरे कान में बहुत दर्द हुआ था, अब ईयरबड्स लगा लेती हूँ तो काम आराम से हो जाता है। सो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ये आपको भी अनुभव रहा है, तभी आपने कहा कि हाँ इस तरह से भाई जो हमारा एक्सपीरियंस होता है पहली बार प्लेन में जाने का, तो उससे पहले सच में एक डर होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे क्या होगा, ये डेफिनेटली होता ही होता है, ये सबके साथ होता है। आइए फिलहाल मैसेजेस की तरफ चलते हैं। हमारे धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से सुनते हैं, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग गोंडा, सुनने वालों को मेरा नमस्ते सलाम शास्त्रीय कॉल, गॉड प्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र मोहन जी, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और अदनान सर को आपको भी दिल से सलाम, आपको भी दिल से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नगेश्वर मौजूद हैं, लिखा है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है, क्या बात है। इसके बाद नगेश्वर ने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे दास, गुड मॉर्निंग टू यू। मुस्तफ़ा फ्रॉम सऊदी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद जो है हमारे कमल नयन जी भी मौजूद हैं, लिखा है आरजे दास गुड मॉर्निंग आपका भी स्वागत है, वेलकम है। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग। इम्तियाज़ ने लिखा है गुड मॉर्निंग। सो आप सब लोगों को आज पता चल ही गया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एंड अभी हम कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं कि आप कहने वाले हैं वाह इसकी भी जानकारी मिलती थी क्या। जी हाँ, सो उन सारी जानकारियों से पहले आपको हम बताने वाले हैं कि वैकेंसी अभी फ़िलहाल कौन सी आई हुई है, स्पेशली उनके लिए जो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जाना चाहते हैं। जी हाँ, बी एड असिस्टेंट प्रोफेसर, सो इसकी वैकेंसी निकली है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी है, क्या कुछ होने वाला, ये सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं उदित नारायण साहब की आवाज़ की तरफ, जिनका जादू उस दौर से लेकर इस दौर तक जारी है और चलते रहने और चलाते रहने की कसम उन्होंने उसी दिन खा ली थी जिस दिन को भूख लगी थी और क्या। ऑलराइट, सो चलिए भाई एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनाते हैं उदित नारायण साहब की आवाज में, सिर्फ मॉर्निंग वाले शो में।

0: खुशबू तेरा बदन तू
1: हाँ, कर,
0: हाँ ही करूंगा वैसे
1: या ना कर।
0: अच्छा ऑप्शन ही नहीं है फिर।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: डिलीशियस
6: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
7: अब एक ऐसा सॉन्ग जिसको आपने काफी ज्यादा सुना होगा, और इस वक्त जेंजी काफी ज्यादा सुन रहे हैं, और मुझे भी अचानक ही सुनने में आया था। मुझे लगा कि यार एक अच्छा सा सॉन्ग है, क्यों ना आपको भी सुना दिया जाए। हालांकि आपको काफी छोटा लग सकता है ये सॉन्ग, बट ये कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं सॉन्ग के साथ। जी हाँ, फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो तलविंदर की आवाज़ में इस सॉन्ग की बात कर रहे हैं, और ये सॉन्ग में भी आपको ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा लग सकता है। सो क्या है ये सॉन्ग, आइए आपको सुनाते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो, ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और हम हैं आपके अपने मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। और फिलहाल इस सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आज इस सॉन्ग में हमको क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि सॉन्ग की तारीफ तो काफ़ी ज़्यादा आपने सुनी होगी वैसे। हालांकि अगर आपने सुना होगा तो आप इसको ज़रूर जानते होंगे, और अगर आपने नहीं ही सुना है तो फिर कैसे जानेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम सुना देते हैं आपको तलविंदर की आवाज़ का ये सॉन्ग, पल पल बाय तलविंदर। आखिर सॉन्ग कैसा है सुन करके बताइए।

0: हाँ जी सुबाई, जाहिर है आपने इस गाने को सुना होगा और आपको याद भी आ रहा होगा। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये याद आ रहा है। बट फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं आज में जो बीएड वैकेंसी आई है उसको लेकर के। सो क्या है वैकेंसी के बारे में सारी अपडेट देंगे आपके मॉर्निंग शॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है, चलिए बताते हैं। सो ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका है। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 107 वैकेंसीज है और अप्लाई कैसे करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो संस्थान का नाम जो है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC, और पद जो है वो है असिस्टेंट

मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री और उसी संबंधित विषय में शैक्षणिक योग्यता जो है वो ज़रूरी है, और अन्य पात्रता डिटेल जो है नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें एज की और सैलरी फ़ीस की, तो इसके बारे में आयु सीमा जो है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से है, आरक्षित वर्ग को नियम के हिसाब से छूट भी है, सैलरी जो है वो आयोग के नियमों के हिसाब से है, और फीस जो है वो ऑनलाइन आवेदन के वक्त जमा होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन जो है वो पहले रिटन एग्ज़ाम 28 जुलाई 2026 को होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद जो है आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करना है, फीस जमा करके फॉर्म आपको सबमिट कर देना, और इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। यानी अगर आपने भी किया है बीएड और आप भी हैं बताई हुई पात्रता के अकॉर्डिंग, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 107 वैकेंसीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका है, एंड ऑफ कोर्स इसमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपसे जुड़े हुए कोई ऐसा जो एलिजिबल हैं और वो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उनको भी ये बता सकते हैं। साथ ही रिकमेंड कर सकते हैं गोंडा FM उन लोगों को भी जो ऑफ कोर्स वैकेंसीज ढूंढते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए आपके मॉर्निंग शो में लेकर के आते रहते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भाई भलाई और अच्छाई जितनी फैलाई जाए उतनी बड़ी है, और आपके पास तो उसका गोल्डन चांस है भाई, गोंडा वाले हैं ना हम लोग। चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं मिल करके, संडे स्पेशल के बाद आज ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी संडे वाला स्पेशल है, क्योंकि मौसम इतना गजब का है, सॉन्ग्स लाजवाब है और बातें माशाल्लाह।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। क्यों ना मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि आप भी सुने और खुश हो जाएं। चलिए आपको ले चलते हैं एक चलती फिरती लाइब्रेरी के पास। हाँ, चलती फिरती लाइब्रेरी। जी हाँ, बेशक सही सुना आपने, चलती फिरती लाइब्रेरी। आखिर ये चलती फिरती लाइब्रेरी है कहाँ और क्यों चल रही है और किसके पैरों से चल रही है और कहाँ तक चल रही है, ये सब कुछ बताते हैं आइए आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda with your favorite RJ Khan.

सो चलती फिरती लाइब्रेरी है मैसूर के डिएगो माराडोनो का ऑटो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैसूर नाम सुना है ना। सो मैसूर का डिएगो माराडोना जो है उनका ऑटो चलती फिरती लाइब्रेरी है। किताबों के साथ यहाँ पर आपको हाथ से लिखे हुए मोटिवेशनल कोट्स, उसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं है, उस ऑटो में आपको लाइब्रेरी के अलावा बच्चों के लिए कैंडीज यानी टॉफीज भी मिल जाएगी, जो कि हर एक सफ़र करने की वाले को उसकी जो यात्रा है, जो उसकी राइड है, वो शानदार बना देती है। लिटरली मतलब ज़रा सोचिए, कोई एक ऐसा ऑटो है जिसमें लाइब्रेरी हो, जिसमें बुक्स भी हो, हैंड रिटन नोट्स भी हो जो कि मोटिवेशनल हो, और साथ ही साथ बच्चों के लिए कैंडीज हो, तो ये सफ़र आपके ऑटो में करना कितना बेहतरीन हो सकता है। सो आपको बता दें, इनकी इस पहल का जो मकसद है उसके पीछे है कि सफ़र को थोड़ा पॉजिटिव, माइंडफुल और एंगेजिंग बनाया जाए। सो क्या आप नहीं करना चाहेंगे ऐसे ऑटो की सवारी? जी हाँ, जहाँ पर आपको इस तरह की फैसिलिटी ऑटो के अंदर मिले, यानी ऑटो के अंदर ही आपको मिल जाए कुछ किताबें और साथ ही साथ कुछ हैंड रिटन नोट्स और कुछ कैंडीज बच्चों के लिए, तो मैसूर की अगर सड़कों पर आप जाते हैं और आप इनसे टकराते हैं डिएगो माराडोना का, सो इनका ये जो अनोखा ऑटो है ये चलती फिरती लाइब्रेरी बन चुका है, जहां सफ़र के साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज और पॉजिटिविटी भी मिलने वाली है। सो ऑटो के अंदर ही सेल्फ हेल्प किताबें हैं, हाथ से लिखे मोटिवेशनल नोट्स हैं और छोटी छोटी कैंडीज यानी टॉफीज हैं, और ये सभी अगर मिला दें तो आप, जाहिर है आप भी जानते हैं कि आपका सफ़र कितना ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सो यहाँ बैठते ही आपको सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का एहसास नहीं होगा, बल्कि कुछ नया सोचने और सीखने का भी वक्त और नज़रिया ये मिलने वाला है। सो आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने रूटीन काम को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने इनको ही जान लिया, जिनके ऑटो में आपको कुछ बुक्स मिल रही हैं और कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। अब ज़रा सोचिए कि आप सफ़र कर रहे हों और आपके सामने कुछ बुक्स भी रखी हों, तो सफ़र के दौरान आप फ़ोन जो चलाते हैं शायद उसको साइड में करके और बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत चित्रों वाली कुछ किताबें आप उठाने की कोशिश करेंगे, साथ ही उन नोट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन पर हाथ से लिखा गया है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें लिखी गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुनते हैं अपने मॉर्निंग वाले थॉट के साथ में। जी हाँ, बेशक सही सुना आपने, तो ऐसी ही चीज़ें आपको मिलने वाली है इस ऑटो में। अब ज़रा सोचिए कि ये ऑटो का सफ़र कितना सुहाना और कितना ज़्यादा शानदार है। सो क्यों ना कभी अगर मैसूर जाया जाए तो इस ऑटो की सवारी किया जाए। बहरहाल आप इसको लेकर के आपका क्या है मानना? क्या अगर आप किसी ऐसे ऑटो में बैठते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बाकी ऑटो जैसा ही होने वाला है या कुछ उसमें बदलाव होने वाला है? और अगर बदलाव होने वाला है तो क्या होने वाला है? ये मेरा सवाल आपसे है। और अगर आप सोचते हैं कि कुछ बदलाव होने वाला है तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं हमको चैट बॉक्स पर आकर के। फिलहाल चलते हैं हम, अच्छी लगती हो, नहीं ये कह नहीं रहा हूँ, ये सॉन्ग है, इसको सुनने की तरफ। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम मॉर्निंग वाला शो। गुड मॉर्निंग गोंडा विद यू मॉर्निंग शो का आरजे अदनान।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: Mixing in the house.

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

आपको नहीं लगता कि आपके जहन में भी कुछ सवाल कौंधा करते हैं? खैर, कौंधा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके आए हुए मैसेजेस जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपने काफी कुछ लिखा है। तो इम्तियाज ने लिखा है कि कॉल किया था, जब आप दोबारा कॉल करें आपकी कॉल रिसीव्ड होगी, बट अगर आप ऑड नंबर पर करेंगे तो पक्का फिर कोई दूसरा आरजे ही होगा। एंड इसके अलावा गीता जी ने लिखा है, सर मेरे घर में सारा कबाड़ मैं ही रखती हूँ, उसे कोई नहीं फेंकता, फिर मुझसे WWE कौन कर सकता है? आखिर होम मिनिस्टर हूँ मैं। बेशक आप होम मिनिस्टर हैं, एंड कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि अगर आप ही इस चीज़ को करने वाले तो आपसे कोई झगड़ा नहीं होने वाला। लेकिन ऐसे कई बार देखा जाता है कि कई बार क्या मतलब, ज़्यादातर घर में ऐसा है कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिसको अगर आप फेंकने का सोच रहे हैं तो आपको पता है कि इसको फेंक दिया तो फिर WWE होना बाकी है। हाँ जी अनुष्का जी, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। श्रावस्ती से आप जुड़ गई हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आई होप कि आप भी अच्छी होंगी। और इसके बाद चैट रूम की जो प्रॉब्लम है वो टेक टीम को बता दी गई है, इम्तियाज जरूर इस पर कोई जल्दी एक्शन होगा। एंड इसके बाद आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और धर्मेंद्र जी लिखते हैं, स्वाद भरा गाना अगर सुबह सुबह सुनने को मिल जाए तो मैं खाना ही भूल जाऊंगा। आह क्या बात है, बट सच में ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि गाना जो है वो खाने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड मुस्तफ़ा ने भी भेजा हुआ है कुछ लीव्स, हमारे ख्याल से नीम का है, उन्होंने कहा है कि भैया आप सुबह सुबह खा लो, फ़ायदेमंद बहुत होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको हम सबों की सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल है, और इसी के मद्देनज़र रखते हुए आपने नीम की पत्तियां हम तक पहुंचा दी है। थैंक यू सो मच टू यू। गाना बहुत पसंद आया गीता जी को, तभी तो उन्होंने मस्ती से कहा है कि बड़ा ही मस्त वाला सॉन्ग लगा आपको, थैंक यू सो मच। और गाने की ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो आज हमने मिला करके सुना कुछ पुराने कुछ नए, और बहुत अच्छा इसी तरह कॉम्बिनेशन चलता रहा। इसके बाद हरीशचंद्र सविता जी जो कि रेगुलर लिसनर है हमारे और गुड मॉर्निंग गोंडा को भी सुनते हैं मुंबई से, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान खान हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग, आज थोड़ी सी देर से हुई उस्मान जी, आपकी सुबह क्या बात है, सब खैरियत? तो चलिए, आपने ट्यून किया था गोंडा FM 89.6 FM को फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। आप सभी के हम शुक्रगुजार हैं। आज बहुत सारी बातें हुई हैं मॉर्निंग वाले शो में, कौन सी बेस्ट लगी ये आप चाहे तो बता भी सकते हैं और चाहे तो अपने मन में भी रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। फिलहाल मेरे चलने का वक्त आ गया है और मैं आपसे अब इजाज़त मांगता हूँ। साथ ही साथ आज का शो कैसा रहा हमको कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, और जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल जाते जाते ये सॉन्ग एंजॉय ज़रूर करिएगा और बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा पे बैक टू बैक शोज़ के लिए, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और आपका ज्ञानस्थली परिवार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टर्स किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर्स किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टर्स किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता, गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वह श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है, और उसका साथ देने आ रहे हैं जिमी, श्वेता और समता। आज हम आपको ले चलने वाले हैं हमारे गोंडा के ही एक पर्यटक स्थल यानी कि बलरामपुर की ओर, जहां पर आप सभी को पता है कि पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वहां पर एक माता जी का भव्य मंदिर भी है। तो आइए दोस्तों, हम गांव की गूंज का जो ये एपिसोड है, इस बार हम आपको ले चलने वाले हैं एक नए और एक बहुत ही प्यारे से पर्यटक स्थल की ओर। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। उफ, श्वेता भी अभी नहीं आई है, गांव भी जाना है। किरण दी तो अभी आते ही बस शुरू हो जाएंगी। चलो चलो, क्या कर रही हो सब?
10: राधे राधे समता जी, क्या हाल है? बहुत गुस्से में दिख रही है, आखिर बात क्या है?
0: अरे पूछो मत श्वेता, देख नहीं रही कितनी गर्मी है और इतने पसीने गिर रहे हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान ही हो गई हूँ।

0: अरे सब लोग रेडी हो भाई, किरण भी आती होंगी। और आओ सब लोग रोटी सब्जी खा लो, बस अभी गरम गरम बनाई है।
1: मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर किरण दीदी आ जाती तो सब एक साथ मिल के खा लेते और मजा ही आ जाता।
2: सच्ची कहा श्वेता, पर किरण दी आज कहाँ रह गई भला, गांव भी तो निकलना है। श्वेता देखो जरा फोन लगा के किरण दी को।
1: ओके।
3: हाँ श्वेता, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। और सुनो, ड्राइवर भैया रास्ते में मिल गए हैं, तो मैं गाड़ी से ही आ रही हूँ, और सब बिल्कुल मुझे तैयार मिलो।
0: हाँ दी, आप आइए, तो हम सब बिल्कुल रेडी हैं। किरण दी आइए, आज मैंने रोटी और कटहल की सब्जी बनाई है, चलिए सब मिलकर खा लें, फिर सब चलते हैं।
3: ठीक है, आओ सब कटहल की सब्जी और रोटी खाते हैं।

0: किरण दी, इस बार हम लोग बलरामपुर चल रहे हैं ना? बलरामपुर के किस गांव में?
1: हम लोग चल रहे हैं बलरामपुर के बैरिया सुरजनपुर गांव में, और पता है जहां पर जिम्मी की नानी रहती हैं और उनकी नई नई बहू आई है, उसी को देखने चल रहे हैं। चलो सब लोग।
2: और जानती हैं समता दी, हमारी नानी जी अपने बहू बेटे दोनों से बहुत प्यार करती हैं। अभी आप जैसे उनके सामने पड़ेंगी वो अपने बहू के गुणगान गाने लगेंगी।
3: जो बहुओं के गुण गाती है वो सा

0: अभी कितनी दूर है गांव? जिमी, तुम्हारी नानी का घर तो बहुत दूर है।
1: अरे श्वेता दी, बस आने वाले हैं ड्राइवर भैया, थोड़ा आराम से चलिए, इधर का रास्ता बहुत खराब है।
2: पर काफी हद तक सड़कें अच्छी हो गई हैं अब।
3: जिमी, यही है ना बैरिया सुरजनपुर गांव? जरा बताती हुए चलो, रमेश को रास्ता पता नहीं है।
1: हाँ किरण दी, मैं बताते हुए ही चल रही हूँ, इसीलिए तो मैं ड्राइवर भैया के बिल्कुल बगल वाले सीट पे बैठी हूँ। भैया इधर से दाहिनी मोड़ लीजिए, और वो देखिए भैया, सामने वाला जो दो मकान है पीले रंग का, आगे छप्पर छाया हुआ है, बस वही है नानी का घर।
2: वो जो चारपाई पर बैठी है वही है क्या तुम्हारी नानी, वो जो बूढ़ी सी है?
1: हाँ हाँ समता दी, वही है हमारी नानी जी। चलिए सब लोग उनको राम राम बोलते हैं।
4: राम राम नानी जी।
3: कैसी हैं आप नानी जी, क्या हाल चाल है? नानी जी, भैया और भाभी सभी ठीक है ना? कहाँ हैं सब लोग?
5: सबका राम राम बहनी, जियो नी के रहाओ। कहाओ बहनी जिम्मी, काओ हाल है?
3: तुहरे मम्मी पापा केर का हाल है बहनी?
5: आज नानी कहाँ याद कैली हो बच्चा हमार? ये सब तुहार के हो सखी सहेलर हो?
3: आओ आओ सभी जने बैठो, आओ बैठो।
1: हाँ हाँ नानी, ये सभी हमरे साथे काम करती, सखी सहेली समझो नानी।
2: जिमी, तुम्हारी भाभी आ रही है क्या? वो देखो सामने, और शायद भैया भी साथ में हैं।
6: लगता है नानी अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करती हैं।
5: नानी, ज्यादा लाड प्यार ना करो अपने बेटे का, नहीं तो बिगड़ जाएंगे भैया।

0: अरे बच्चा यक्कई जने हैं ये, तब मोहाइत है इनका, अब का करी बहनी, यक्कई तो हमार बिटीवा बाटे।
1: किरण दी, हमारा मन कह रहा है कि नवरात्रि चल रही है तो हम लोग इधर से ही देवी पाटन मंदिर के दर्शन करते हुए चलें।
2: हाँ दी, हम लोग दर्शन करके ही चलेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। नानी जी आप भी चलिए और भैया भाभी आप भी चलिए, गाड़ी तो हमारे पास है ही, बहुत मजा आएगा।
0: अब ये दुल्हन कहाँ जाई है दादा, घाम बहुत है और तनी ये पैदल चले, मैं यहाँ कमजोर ही बच्चा हमार, डरात ही कि घमाम चली तो करिया ना हो जाई।
3: अरे नहीं अम्मा, ये बात ना है, हम कहाँ करिया हन, हमसे ज्यादा तो तुहारी बिटिया करिया ही
0: है। दुल्हन खबरदार, जो हमरे बिटिया का यहाँ करिया का है तो

0: अरे नानी जी, अब बहू और बेटी में कोई फर्क वर्क नहीं करता है और न करना चाहिए। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। बहू को बेटी की तरह ही रखिए और प्यार करिए।
1: हाँ नानी जी, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए ही घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी आने ही वाली हैं।
2: अरे हमारी नानी जी बहुत अच्छी हैं। देखो कितनी सुंदर हैं और बहू को बहुत प्यार करती हैं। अरे इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है आपको, तो आपको किस बात की चिंता है, क्यों नानी?
3: अरे बहनी, हम तो इनका बहुत मोहाइले, लेकिन ये जब देखो तब यह कहत ही कि तोहार लड़िकवा हमारे साथे बहुत मनमानी करत है, हमार कौनो कदर नाई की हिस। आप बताओ का करी।

0: अरे भाई, झगड़ा लड़ाई कहाँ सुनी, सब बंद करिए और चलिए हमें दर्शन करा तुलसीपुर पाटन देवी मैया का।
1: चलिए नानी जी, मामी जी, दादी, आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोग मंदिर चलते हैं, मैया के दर्शन करेंगे।
0: चलो चलो, मैंने ही कहा था मंदिर चलने के लिए, चलो सब लोग मंदिर चलते हैं।
2: आओ आओ सब लोग, चलो गाड़ी में बैठो।
0: अरे भैया संभाल के जरा, आराम से चलिए। नानी जी आप आराम से बैठी है ना?
2: हाँ हाँ बच्चा बैठी हैं, नीक यक बैठी हैं दादा।
1: चलो चलो सब आराम से उतरना, नीचे मंदिर आ गया, देखो नवरात्र चल रहा है तो कितनी भीड़ है। अरे राम रे,
0: आराम से उतरो, भीड़ बहुत है।
2: आओ चलो एक माता जी का गीत गाकर हम लोग अपनी अर्जी लगा देते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
8: ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है।

उड़ी उड़ी उड़ी कहाँ उड़ी भाई, बारिश हो रही है हल्की हल्की आज भी, और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञान, असली आवाज़ है आपकी अपनी आज उन्नति की। और आज है ट्यूसडे, यानी कि आपके स्टोरी वाला डे, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गानों की महफिल से एक स्टोरी। आपने कई तरह के गाने सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा भी गाना है जिसको सुनकर पता चल जाता है कि किसी की डेथ होने वाली है। और ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे गाने हैं हिस्ट्री में जो ये क्लेम करते हैं कि इस गाने को सुनने वाला इंसान कहीं ना कहीं कर्ज्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, जो गाता है उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसा ही एक गाना है ब्लूमिंग संडे, जिसके बारे में आपने आई थिंक सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन हमारी कहानी ब्लूमिंग संडे पर नहीं है, एक कबीले के एक ऐसे गाने के ऊपर है जो शायद गुफा से आ रहा था आवाज़, और वहाँ पर कुछ 100-150 लोग गायब हो चुके थे। बताते हैं आपको कहानी, तब तक बने रहिए, इन्जॉय करते रहिए अदनान सामी की आवाज़ में ये गाना।

हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे, लेकिन घर के अंदर रह करके, क्योंकि भैया बारिश में भीगने का अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बारिश में भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोला शहर की धड़कन पर आपका अपना रेडियो ज्ञान, असली आवाज़ है आपकी अपनी आरजी उन्नति की, जो है आपके साथ ऑन एयर मौजूद। और फिलहाल आज है ट्यूसडे और ज्ञान असली लाइव में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपको बता दूं, ट्यूसडे को ज्ञान असली लाइव होता है स्टोरी वाला डे, यानी कि हम कहानियां लेकर आते हैं दूर दराज से, कहीं ढूंढ ढांड के, कभी 1600 ईस्वी से, कभी किसी और पन्ने से, कभी 2000 की, कभी 2010 की, और हर कहानी कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी टेरिफाइंग स्टोरी जो एक गाने के ऊपर बनी हुई है। यूँ तो हिस्ट्री में ऐसे कई गाने हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हैं, और जब भी लोगों को वो गाने सुनाए पड़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि भैया अब हमारा ज़िंदगी का जो आखिरी वक्त है वो आ चुका है। एक ऐसा ही गाना है हमारे हिस्ट्री में और उसका नाम है ब्लूमिंग संडे। अगर आपने इस गाने को कभी सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये गाना यहाँ भारत का नहीं है, ये गाना विदेश का है। और कहते हैं भाई, जब इस गाने को लिखा गया था तो उस राइटर ने उस गाने को लिखने के बाद सुसाइड कर लिया था, यानी कि वो मर गया था, वो क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल था, उसे कहीं ना कहीं पनिशमेंट के तौर पर जेल भी भेजा जा चुका था। तो उसने ये गाना लिखा था अपनी उस प्रेमिका के लिए जो उसे छोड़ कर चली गई थी, उसका ब्रेकअप हो चुका था। और ये गाना कुछ सालों पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी रहा था, लोग इसको सर्च कर रहे थे, ना जाने क्यों, लेकिन पता नहीं क्यों सुसाइडल सॉन्ग सर्च किया जा रहा था। इस गाने का नाम ही सुसाइड सॉन्ग है, और कहते हैं इस गाने को सुनने वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस गाने की जो लिरिक्स हैं वो इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर किसी का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। इवन एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन भी इसको हैंडल नहीं कर पाता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी बात से परेशान चल रहे हैं तो इस गाने को नहीं सुनना चाहिए, और ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और एक ऐसे ही एक गाना है जो है भाई 1600 ईस्वी के आसपास का, जिसमें एक कबीले वाले इस गाने को तब गाते हैं जब किसी की डेथ होने वाली होती है। इवन वो बंदा जिसकी मौत होने वाली है वो खुद इस गाने को गाता है, और गाते गाते दुनिया को अलविदा कहता है। और वो गाना अगर किसी को सुनाई पड़ जाता है तो लोग वहाँ से रफू चक्कर होने को तैयार खड़े रहते हैं, उन्हें लगता है नहीं भैया यहाँ नहीं रहना है, नहीं तो अगला नंबर अपना ही हो जाएगा। इसी कबीले में कुछ ऐसा होने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है, ख़तरनाक है, मिस्टीरियस है, और लोगों के समझ से थोड़ा परे होने वाला है। कुछ लोग जो शिकार के लिए गए थे जंगलों में, और आपको भी पता है कि 1600 ईस्वी में शिकार करने का मतलब आप जानते ही होंगे कि शिकार इतनी जल्दी नहीं मिलता, जानवर आपके इतनी जल्दी हाथ नहीं लगते, जानवर अच्छे से जानते हैं शिकारियों से कैसे बचना है, शिकार से कैसे बचना है। तो जब लोग ढूंढने जाते थे शिकार तो उन्हें थोड़ा बहुत वक्त लगता था। इस बार कुछ लड़के गए थे, हट्टे कट्टे जवान लड़के गए थे, अभी अभी उनकी फैमिली बसी थी, उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनको जब चीफ ने, कबीले के चीफ ने बुलाया कि अब तुमको जाना है, तो वो गए, उन्हें पता था क्यों जाना है, किसका नंबर है, क्या काम करना है। वो चले जाते हैं लेकिन दो दिन तक उनकी कोई खबर नहीं आती। घर वाले परेशान हैरान कि कहाँ है मेरे चुन्नू मुन्नू के पापा कहाँ गए। इस बात से परेशान थे और वो फाइनली चीफ के पास आकर बैठते हैं और चीफ से कहते हैं देखो सरदार हमें बताओ हमारा परिवार कहाँ है। तो वहाँ पर जो बाकी लोग बैठे होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, देखो शिकार इतनी जल्दी नहीं मिलता है, थोड़ा सा वक्त लगता है किसी भी चीज़ को ढूंढने में, और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अभी टेलीफोन चल रहा हो जो तुरंत ही उठाकर भेज दिया जाए। जंगल में रह रहे हो, उस वक्त तो शायद टेलीफोन था भी नहीं, उस दौरान कुछ भी नहीं था, तो किसी से कोई कनेक्शन नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तक कोई खबर ही नहीं आई है, अगर वो शिकार करने भी गए हैं तो कुछ खबर तो आनी चाहिए थी, और मेरे छोटे छोटे ये बच्चे हैं, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँगी, मैं कुछ नहीं करती, मैं घर में हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, खाना बना रही हूँ, और मेरे पति का कोई अता पता नहीं है, इनके पिता का कोई अता पता नहीं है। गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। इतने में कबीले का मालिक यानी कि चीफ वहाँ पर एक सबसे फेमस बंदे को बुलाता है, वो बंदा जो किसी कार्टून कैरेक्टर का, वो जो मेन कैरेक्टर होता है ना कि कोई भी मुसीबत आए, जैसे नोबिता के लिए डोरेमोन सब कुछ है, एंड ढोलकपुर में छोटा भीम सब कुछ है, सो दैट्स लाइक वो इंसान भी कुछ इस तरह से ही था कि बाकी चीज़ें तो बाद में देखी जाएंगी, पुलिस वाले, आर्मी वाले, देश दुनिया को बाद में बचाएंगे, पहले हमारा एक बंदा है, हमारा एक डोरेमोन है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। आपने भी देखा होगा डोरेमोन में भी होता है, जब एलियंस आ रहे होते हैं तो ऑफकोर्स डोरेमोन के पास गैजेट है, वो धरती को बचा लेता है।
ऐसा ही ख्याल उस इंसान के लिए भी था उस कबीले में कि कोई हो या ना हो, आर्मी बाद में जाएगी, बाकी के भाई ये 58,000 जो लोग हैं ये बाद में जाएंगे, बट उससे पहले वो एक इंसान जो इन सबका डोरेमोन है उसे भेजा जाए। उसको बुलाते हैं और वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे जाना है, मुझे पता करके आना है। और वो कहता है मैं अपने साथ अपने कुछ दोस्त को भी लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं आराम से ढूंढ ढांड के आ जाऊँ। वो अपना एक झुंड तैयार करता है जिसमें कुछ लोग होते हैं, 7-8-10 लोग होते हैं ऑफकोर्स, और वो उस झुंड को लेकर निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। अब क्योंकि वो एक महान शिकारी भी था, उसे पता था शिकार किस तरह से होता है और जंगल में अगर कोई खो जाए तो उसे कैसे ढूंढना होता है, वो ये सारी बातें अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने जो सबसे पहले सोचा वो ये था कि जंगल में बने हुए कदम के जो निशान है उस पर गौर फरमाया जाए। उसने पद चिन्हों को पकड़ा और उनका पीछा करना शुरू कर दिया और कहा कि यही वो दो लोग हैं जो जिनके निशान आपको नजर आ रहे हैं। अब बहुत ध्यान से वो लोग इसको फॉलो कर रहे थे। कुछ देर चलते चलते चलते चलते ये पद चिन्ह जो अभी तक सामने की तरफ जा रहे थे ये अचानक से घूम जाते हैं, टर्न हो जाते हैं और वो परेशान की हैं ये घूमे क्यों, और ये जो इलाके में घूम रहे हैं वो इलाका अपना है भी नहीं, वो इलाका दूसरे कबीलों का है। और अगर वो देख लेते हैं कि उनके कबीले में कोई दूसरा मेंबर आया हुआ है जो उनके शिकार को चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो उनका हश्र क्या होगा, ये ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। और उससे भी बड़ी बात है कि इस साइड तो कोई शिकार है भी नहीं, एक तो कबीले वालों की टेंशन, दूसरा यहां पर कोई जानवर नहीं मिलता, तो तुम यहां करने क्या गए हो। फिर भी नॉनस्टॉप कई घंटों तक चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वो फुटस्टेप ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। वो जगह एक गड्ढे की तरह थी और जब उन्होंने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो अंदर एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर ऐसा क्या था ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे ये जो छोटा भीम या फिर कहते हैं डोरेमोन है ये इस गुफा के अंदर जाने वाले हैं अपने लोगों को लेकर के, और असल कहानी यहीं से शुरू होती है। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, जगाइए और मुझे बताइए चैट बॉक्स में आकर कि आपके क्या ख्याल है। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए सुरनियम की आवाज़ में, मेरी महबूबा, स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे खूबसूरत सा गाना, और इस गाने के बाद आई थिंक आप सभी का वापस स्वागत करते हैं हम ज्ञान असली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम, यह गोना शहर की धड़कन पर। ट्यूसडे का वक्त यानी कि कहानियों का दिन, और कहानी में आज हम आपको गुफा वाली कहानी सुना रहे हैं, यानी कि गाने वाली कहानी सुना रहे हैं। एक ऐसा कबीला जिसका नाम था हॉनसंग हॉनचंग, ऑफकोर्स उसके कुछ मेंबर्स एक गुफा के अंदर गए और कभी वापस नहीं आए, और चीफ परेशान, भाई ऑफ कोर्स परेशान होगा। अगर आप ही सोचिए, हमारे देश का कोई जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनको पता चले कि हमारे देश के मेंबर किसी दूसरे इलाके में गए हैं, दूसरी जगह पर गए हैं, और वहाँ से वो वापस ही नहीं आ रहे, तो उन पर क्या बीतेगी? लोग उनसे सवाल करेंगे और उन्हें उनको जवाब भी देना पड़ेगा, प्लस अपने बाकी लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ उस चीफ के साथ अब हो रहा था। फिलहाल जिस डोरेमोन को, यानी कि जिस अपने कमांडर को उसने भेजा था कि जाओ पता करके आओ क्या हुआ है, वो फाइनली उस गुफा के पास तक पहुंच चुके थे। और उन्होंने सोचा था कि गुफा में ऐसा भी क्या है जो ये सबके सब अंदर जाके चले गए हैं, और बाहर निकलने का कोई भी निशान नहीं है, सब अंदर ही अंदर चले गए। दो दिन हो चुका है, बाहर तो आना चाहिए था ना। फिलहाल वो अपने दो लोगों को अंदर भेजता है और कहता है जाके अंदर देख कर आओ क्या हो रहा है। वो दो लोग अंदर जाते हैं और वो वापस नहीं आते। उनकी जगह पे वापस आता है एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो कुछ जानी पहचानी सी थी, जो कहीं सुनी थी। याद आया, वो गाना था जब कोई मरने वाला था तब वो गाना गाते थे ना। और ये आवाज इस गुफा से क्यों आ रही है, सवाल लीडर के दिमाग में था। वो सोच ही रहा था कि उसके पीछे जो सात लोग खड़े थे वो अचानक से उस गुफा के अंदर दौड़ पड़ते हैं, और वो जब तक रोकने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि यार ये हो क्या रहा है, तब तक वो सातों के सातों गुफा के अंदर जा चुके होते हैं। और अब वो आवाज, वो डेथ सॉन्ग, वो मौत वाला गाना बहुत जोर से बज रहा था, बहुत ज्यादा शोर में बज रहा था, इतना शोर में बज रहा था कि अब बाहर खड़े हुए लोगों का दिल बैठा जा रहा था। इसके बाद भी वो लीडर सोच रहा था कि मैं अंदर जाऊं ना जाऊं, जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, और अगर मुझे कहीं अकेले जाना पड़ा तो क्या होगा। अगर मैं चीफ के पास अकेले जाऊंगा तो चीफ तो मुझसे सवाल करेगा ना, तुम्हारे साथ मैंने 10 बंदे और भेजे थे, वो 10 के 10 कहां गए। अब वो इसी सोच में था। फिलहाल उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि यहीं से वापस मुड़ो, गुफा के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, और सीधा चीफ के पास चलो। वो लोग तुरंत उल्टे पैर उस गुफा के से भागते हैं, और भागते भागते भागते भागते जाकर चीफ के पास पहुंचते हैं, और रुक कर सांस लेते हुए कहते हैं कि चीफ वहां पर जो गुफा में था वो अनबिलीवेबल था, ऐसा नहीं देखा कभी, नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्या था, हमने सॉन्ग सुना, हमने, हमारे लोग गायब हो गए हैं। चीफ ने उनसे कहा भैया 2 मिनट सांस लो पहले, उसके बाद बताओ क्या चल क्या रहा है। थोड़ा सा शांत होने के बाद वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि हमने ये फॉलो किया था, फुटस्टेप्स देखे थे, हम गुफा के अंदर तक गए थे, वहाँ से हमारे लोग गायब हो गए, डेथ सॉन्ग हमें सुनाई पड़ा। चीफ कहता है ऐसा करते हैं कि सब चलते हैं और देख कर आते हैं क्या हुआ है, लेकिन इस बार पूरी सावधानी के साथ। लोग तैयार थे। अब सबसे आगे वो कमांडर था, और उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे एक और कबीले का मेंबर, उसके पीछे एक और कबीले का मेंबर, और ऐसा कर करके पूरी चैन बना रखी थी, एक जंजीर की तरह बना रखी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए थे। और अब वो लोग तैयार थे, कबीले के सारे मेंबर्स तैयार थे उस गुफा के अंदर जाने और देखने के लिए कि उसके अंदर क्या बवाल है, क्या भसड़ मची हुई है। एक एक करके अंदर जाना शुरू करते हैं। जो सबसे आगे वो जो कमांडर था वो उन लोगों का नाम बोल रहा था जो गुफा के अंदर जा चुके हैं, जिनको ढूंढने वो यहां आया है, और उसके पीछे लोग, कमांडर के पीछे जो इंसान खड़ा था वो कमांडर का नाम ले रहा था, और जो कमांडर के पीछे था उसका नाम उसके पीछे वाला ले रहा था, और ऐसा कर करके वो पूरी चैन अपने आगे वाले का नाम लेती जा रही थी, और कमांडर उन लोगों का नाम लेता जा रहा था जिसको वो ढूंढने के लिए आया था। वो कहते ना, एक से भले दो, दो से भले चार, उन लोगों ने भी यही सोच रखा था। एक एक करके सब अंदर जाना शुरू करते हैं, और जाते जाते पता चलता है कि अंदर गुफा छोटी होती जा रही है, ये श्रिंक होती जा रही है। जो अभी तक सीधे चल रहे थे अब वो टेढ़ा होके चल रहे हैं, अब वो खुद को एकदम दीवार से चिपका कर निकल रहे हैं। चलते जा रहे थे और अचानक से वो डेथ सॉन्ग फिर से चालू होता है। उसकी आवाज़
फिर से बढ़ती है, और इस बार वो लीडर, वो भी उस डेथ सॉन्ग में शामिल था। इस बार वो भी अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोल के उस गाने को गाने में लगा हुआ था। लोग डर चुके थे, वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था दीवारों के अंदर से आवाज़ आ रही है। आज तक आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, बट उस वक्त लोगों को फील हो रहा था कि दीवारों के मुंह भी होते हैं और ये गाने भी गाते हैं। वो आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी, पीछे खड़े हुए लोग अपने कानों को ढकने के लिए मजबूर हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे कि क्या है भाई, क्यों है। दिल बैठा जा रहा था, डर सातवें आसमान पे पहुंच चुका था। और इतनी देर में पता चला कि वो जो लीडर था उसका हाथ अब महसूस नहीं हो रहा है, वो छोड़ चुका है हाथ, वो कहाँ गया। अब सिर्फ आवाज़ थी, अंधेरा था, और वो लीडर, वो कमांडर अब नहीं था। चीफ बाहर खड़ा होकर देख रहा है कि हाँ भाई बताओ क्या क्या चल क्या रहा है अंदर। वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई जवाब सामने आएगा, जवाब की जगह पर लोग सामने आए, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, भागते हुए, गिरते पड़ते, वो वापस उस गुफा से निकल कर आए और आते ही चीफ को बोले, भाई मैं नहीं जा रहा हूँ अंदर। पहली बात, गुफा के अंदर सिर्फ अंधेरा है, दूसरी बात गाना इतनी ज़ोर से बज रहा है कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, मेरे कानों से खून आ जाएगा। चीफ अपने लोगों को वहीं पर इकट्ठा करता है और गिनना शुरू करता है कि जो लोग अंदर गए थे उनमें से कितने वापस आए, और पता चलता है कि 15 लोग अभी भी उस गुफा के अंदर हैं जो शायद बाहर नहीं आने वाले हैं। चीफ तुरंत उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और अपने 7800 लोगों को लेकर के वहां से चला जाता है, और वहां जाकर मीटिंग बुलाई जाती है और कहा जाता है कि आज के बाद उस गुफा के पास कोई नहीं जाएगा, ना बिना बताया जाएगा ना बताकर जाएगा, जाना ही नहीं है, तो मैं कदम रखनी ही नहीं है उस पर, मैं नहीं चाहता कि अब हमारा कोई एक भी साथी मरे या गायब हो। और साथ ही साथ अभी हम उस गुफा का गेट बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बहुत बहादुर लड़के, हमारा कमांडर, वो आज भी उसके अंदर है और हो सकता है वो किसी ना किसी दिन ज़रूर वापस आए। कमांडर जो उसके अंदर था उसने देखा था कि गुफा सीधी जाते जाते जाते जाते दाहिनी तरफ मुड़ रही थी, यानी कि राइट टर्न ले रही थी, और उसने वो राइट टर्न लिया भी था, बट उसके बाद ऑल सडन वो कहाँ गायब हो गया ये बात किसी को नहीं पता। 2 साल गुजर चुके थे बात को, कोई वापस नहीं आया उस गुफा से निकल करके। फाइनली चीफ ने डिसाइड किया कि अब उस गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और वहां पर एक मकबरा सा बनाया जाएगा, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर लोगों की कब्रें होंगी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लोग अपने घर से बड़े बड़े पत्थर लेकर उस गुफा की तरफ जा रहे थे, और फाइनली उन्होंने प्रे करते हुए, उन लोगों की आत्मा की शांति मांगते हुए उस गुफा को फाइनली बंद कर दिया। साल गुजरते गए और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। अब लोगों को ये कहानी असल से ज़्यादा एक फोक स्टोरी लगने लगी थी, एक लोक कहानी लगने लगी थी जो उनके समाज में चली आ रही है। ऐसे ही आपके साथ भी होता है, जब आपको बहुत पुरानी कहानी दादी नानी चाचा उनसे भी पुराने लोगों से सुनने को मिलता तो आपको भी लगता है कि ये बस कहानी है, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। वक्त आ चुका था 300 साल आगे का, 1930 का जमाना था, और अब अमेरिका काफ़ी डेवलप हो चुका था, वहाँ जो कबीला था वो शहर बन चुका था, और वो शहर अब बड़े बड़े घरों में तब्दील हो चुका था। अब वहाँ पर गुफाएं नहीं थी, अब वहाँ झोपड़ियाँ नहीं थी, अब वहाँ बड़े बड़े मकान थे, दुकान थे, और वहाँ पर एक दुकान थी जो बहुत एंटिक पीस की दुकान थी। वो एक ऐसा इंसान जो शायद एंटिक चीज़ों को ढूंढता था, हिस्ट्री से उन चीज़ों को लेकर आता था जिनको वो मार्केट में ढूंढना नामुमकिन हो, और वो इसीलिए अलग अलग जगह पर घूमता रहता था ये सोच करके कि यहाँ से कुछ बढ़िया मिलेगा, वहाँ से कुछ बढ़िया मिलेगा, कभी पत्थर से, कभी सोने से, कभी मेटल से, कुछ ऐसी यूनिक डिज़ाइन जो हिस्टोरिक हो, जो अलग हो, जो सबसे हटकर हो, और मार्केट में उसका अच्छा खासा दाम आज भी मिलता है। अगर आपको कोई ऐसी एंटिक चीज़ मिलती है जो बहुत पुरानी है, जो अब नहीं मिलती, तो आपको भी पता है उसका अच्छा खासा दाम आज भी मिलता है, इवन पहले से ज़्यादा मिलता है। और वो इसी के चक्कर में सब जगह घूमता था, दौड़ता था, और घूमते घूमते घूमते घूमते वो फाइनली उसी जगह पर आ खड़ा हुआ जहां पर वो गुफा थी। और उसने जब उस गुफा को देखा तो बड़ा अटपटा सा लगा उसे, हालांकि 300 साल बीत चुके थे, उसकी जगह उस गुफा के चारों तरफ कुछ पेड़, कुछ झाड़ियां, कुछ घास फूस उगाई थी, बट वो जगह आज भी थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ थी, समतल नहीं थी। उसने अपना मैप निकाला, उसने कहानी भी पढ़ी थी जहां पर इन कबीलों का नाम था, उसमें ये कबीला भी था,
और उसने जब ये कहानी पढ़ी तो उसके दिमाग में आया कि ये वही गुफा हो सकती है जिसकी बात हम सुनते आ रहे हैं। क्यों ना इसमें देखा जाए कि अंदर क्या है, क्या पता इसमें कुछ बढ़िया चीज मिल जाए जिसको मैं बेच के करोड़ों कमा सकूं। लालच बहुत बुरी और अच्छी दोनों कला हो सकती है। पर उसने सोचा कि इस गुफा के अंदर जाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता सामान को ढूंढते ढूंढते 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, अंधेरा होगा नहीं होगा, पानी होगा नहीं होगा, खाना होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले वो शहर वापस आता है और शहर से वो कुछ सामान उठाता है और सामान उठाकर बोलता है कि अब चलते हैं, ढूंढते हैं, पैसे छापेंगे पैसे। गुफा में जाते हैं, वो सारे जितने भी पेड़ थे, जितनी भी झाड़ियाँ थी, उनको उखाड़ उखाड़ के वो फेंकता है और फाइनली उसे वो गुफा का गेट दिखता है जो कुछ पत्थरों से बना था। वो पत्थरों को हटाता है और अब गुफा का मुंह खुल चुका था जिसके अंदर वो जाने को एकदम तैयार था। क्या वो भी उस गुफा के अंदर गायब होने वाला था या उसके हाथ अब कुछ ऐसा लगने वाला था जिसकी बदौलत मैं आज आपको ये कहानी बता रही हूँ? क्योंकि 1600 ईस्वी में ना मैं थी, ना न्यूज़ पेपर्स थे, ना मैगजीन था, ना कोई कहानी थी, तो ये कहानी आज पूरी दुनिया में कैसे फेमस है ये बताते हैं हम आपको। लेकिन पहले इन्जॉय करते हैं इस छोटे से गाने को जो ऑफ कोर्स एक पार्टी सॉन्ग होने वाला है, तो आप इंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, चंडीगढ़ में घर वापस लेकर आ जाइए क्योंकि ज्ञान असली लाइफ में आप सभी का हम वापस से स्वागत करते हैं। 89.6 FM आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोला शहर की धड़कन, आवाज है आपकी अपनी आचरण की। और ट्यूसडे का स्पेशल कहानी जो हम लेकर आए हैं, किसी को फांसी 300 साल तो 1930 में ही पूरा हो गया था, अभी तो फिलहाल 2026 चल रही है, काफी साल पुरानी। तो भाई कहानी की शुरुआत हुई थी 1600 में और खत्म हो रही है आज। वैसे आज भी ख़त्म नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाती है कई कहानियों की। फिलहाल वो भाई साहब जो तैयार थे गुफा के अंदर जाने के लिए, और उन्होंने सोच भी लिया था कि हम जाएंगे, ढूंढ के आएंगे, क्या पता कितने करोड़ पैसे छापेंगे अंदर जा करके। वो अंदर जाना शुरू करता है, देखता है अंदर जाते जाते जाते तो गुफा छोटी होती जा रही है, एज यूजुअल, क्योंकि उस कमांडर ने भी यही सेम चीज़ नोटिस की थी ना, गुफा छोटी होती जा रही है। वो आदमी बस चला जा रहा था अपना टॉर्च उठाकर ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्या पता चमगादड़ कहीं से उड़ के निकल जाए इसीलिए। और आगे जाकर जब उसने अपने आप को टेढ़ा किया और उस दीवार से चिपक कर आगे बढ़ता जा रहा था, उसकी निगाह पड़ी आगे एक बहुत खुली सी जगह पर, जो जगह पूरी तरह से ओपन थी, बहुत बड़ी जगह थी। उसे सोचा बड़ी सी जगह में क्या है, ये शायद वो गुफा नहीं है जिसकी जिसकी बात कही गई है, वो शायद सिर्फ कहानियां थी, कोई इतिहास नहीं था। पर अब उसकी निगाह पड़ने वाली थी जमीन पर, और यहां से उसके पैर कांपने वाले थे। उसने जैसे ही अपनी टॉर्च अपनी लालटेन उठाकर नीचे की तरफ किया, उसने देखा कि बहुत सारे दर्जनों से ज्यादा इंसानों के कंकाल एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पर झुक कर बैठे हैं, जैसे कि वो किसी को प्रणाम कर रहे हों। आपने देखा वो चाइल्ड, अगर योगा आप करते हैं तो एक चाइल्ड पोज योगा आता है, जिसमें आप अपने घुटनों को मोड़ के अपने सर को जमीन पर टिका के हाथ सामने रखते हैं। अगर आप अपना सर झुकाते हैं मंदिरों में जाते हैं, तो आपने कभी कभार ऐसा नमन जरूर किया होगा। और वो सभी के सभी लोग उसी पोजीशन में, दर्जनों लोग उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, और वो हड्डियां बन चुकी हैं, लेकिन आज भी वो उसी पोजीशन में है, यानी कि वो नमन कर रहे हैं, वो किसी को अपना सर झुकाकर अपनी थैंक्स भी बोल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसा है जो वो कर रहे हैं। एक दो नहीं, दर्जनों, बहुत सारे लोग, और ये काफी खौफनाक नजारा था किसी भी इंसान के लिए। अगर एक ही लाइन में आपको 12-14 कंकाल एक साथ देखने को मिल जाए और उसके पीछे और कंकाल देखने को मिल जाए, तो आपका दिल भी दहल जाएगा। और उसने देखा कि ये सब लोग एक ही तरफ मुंह उठाकर किसी को तो नमस्ते कर रहे हैं, किसी को नमन कर रहे हैं। उसने देखा कि उस तरफ है क्या जिसको ये सर झुका रहे हैं, जिसके लिए सर झुका रहे हैं। उसे तुरंत टॉर्च घुमाई और दूसरी तरफ देखा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बड़ी सी कुर्सी बनी हुई थी जो कि चट्टान से बनी थी। ऐसा लग रहा है, वो आपने देखा होगा जिस पर राजा महाराजा बैठते हैं, वो तख्त कितना बड़ा होता है, बड़ी सी कुर्सी होती है, सबसे अलग, एकदम सबसे हटकर, मंत्री मंत्री की अलग होती है, राजा की कुर्सी अलग होती है, सेम कुर्सी वहां थी। एक बहुत बड़ा सा तख्त बना हुआ था, एक बहुत बड़ी सी कुर्सी। कमाल की बात यह है कि उस पर कोई भी नहीं था, उसके अंदर कोई नहीं था, वो सिर्फ उस खाली कुर्सी को सर झुकाकर नमन कर रहे थे। पर क्यों? ये राज उन लोगों के साथ ही दफन हो गया। वो आदमी वहां से तुरंत भागा, उसको जहां सोना चांदी और न जाने क्या एंटिक पीस उठाने थे, उसने सब छोड़ा, बस खुद की जान बचाई, वहां से भागते हुए सीधा शहर आया। और शहर आने के बाद वो अगले दिन एक मैगजीन क्रिएटर के पास गया, जो उस वक्त मैगजीन लिखते थे, छापते थे, और उस मैगजीन क्रिएटर के पास जा करके उसने बताया कि वहां पर क्या कुछ उसने देखा है। अखबार का नाम था मिलवॉकी जर्नल। वहां पर जाकर उसने अपना इंटरव्यू दिया, उसने बताया मैं उस गुफा के अंदर गया था, उसमें इतने सारे लोग थे। और जब ये कहानी सामने आई तब समझ में आया कि कबीले के चीफ ने भी कहा था कि ये गुफा किसी डेमन की है, यानी किसी राक्षस की है, किसी ऐसी शक्ति की है जो इंसानों से परे है, और वो यहाँ पर लोगों को निगल रही है, खा रही है, नमन करा रही है, जो भी हो। फिलहाल अब इसका सच क्या है
ये ना मिलवॉकी मैगजीन उस वक्त जान पाई और ना आज इस बात को कोई जानता है। बस ये कहानी पॉपुलर है क्योंकि ये डरावनी है। 300 सालों बाद कोई इंसान जा करके फाइनली देख पाया कि उसके अंदर वो जो डेथ सॉन्ग था वो क्यों था, इसका तो नहीं पता। लेकिन वो लोग जो अंदर जा रहे थे वो कहाँ जा रहे थे और क्यों अचानक से गायब हो रहे थे, इसका जवाब वो एक खाली कुर्सी के सामने सर झुकाकर मरते दम तक वहीं बैठे बस गाना गा रहे थे। और जब वो मर गए तो उनका कंकाल उसी शेप में, उसी पोजीशन में, उसी जगह पर हमेशा के लिए रह गया। क्योंकि उस वक्त इतने टॉर्च, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, 300 सालों बाद किसी के पास लाइट थी तो उसने अंदर जाकर कोशिश की और फाइनली सच इतना ब्रिचुअल सामने आया। फिलहाल अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं और क्या लगा आपको आज की कहानी से। आई होप आपको पसंद आई होगी, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। फिलहाल घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली कोना शहर की धड़कन। अपनी आर्शनती के साथ आपका अगला कार्यक्रम है सेहतिया सिंह, सुनना मत भूलिएगा। रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो यानी रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा। स्मार्ट के सौजन्य से चलती जा रही श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के आज इस प्रोग्राम में हम कुछ बहुत ही ज्यादा खास लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर, हर परिवार, हर बच्चे और हर आने वाले पीढ़ी से जुड़ी है। जी हाँ, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। लेकिन आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे, एक सच्ची कहानी से।
2: आरजे कांछा, ये कहानी मैं बहुत करीब से जानता हूँ, हमारे गांव की है। एक समय था जब केशवपुर पहाड़वा गांव में एक छोटी सी बच्ची थी, नाम था कमला। बहुत हंसती खेलती थी, चंचल बच्ची थी, लेकिन उस समय गाँव में टीकाकरण को लेकर उतनी जानकारी नहीं थी। लोग कहते थे कि छोटे बच्चे को सुई क्यों लगवानी, बुखार आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। कमला के माता पिता भी यही सोचते रहे और धीरे धीरे समय निकल गया। एक दिन गांव में खसरे का प्रकोप फैल गया और वही बीमारी कमला को भी लग गई। पहले बुखार, फिर दाने और फिर हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के पास ले गए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमला बच तो गई लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया। उसे हमेशा सांस की दिक्कत रहती थी, पढ़ाई भी छूट गई और आज भी जब वो बड़ी हो चुकी है तो कहती है, काश मेरे माँ बाप ने मुझे समय पर टीका लगवा दिया होता।
1: कमला जी को अपनी जिंदगी मुश्किलों के साथ काटते हुए देखकर दिल भारी हो जाता है। सेहतिया जी, क्या सच में सिर्फ एक टीका ना लगने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है?
2: बिल्कुल हो सकता है, और यही वजह है कि हर साल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ते होता है, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होता है। इस दौरान पूरी दुनिया एक साथ मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार किसी भी बीमारी से सिर्फ इसलिए नहीं पीड़ित हो क्योंकि उसे समय पर टीका नहीं मिला है।
1: तो ये एक वैश्विक अभियान है?
2: हाँ बिल्कुल आरजे कांछा, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO चलाता है और इसका मकसद है लोगों को समझना कि टीके सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए इस साल का थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क, यानी हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं और सुरक्षा देते हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश है, लेकिन सिहतिया जी, हमारे भारत में इसका क्या महत्व है, खास करके गाँव में?
2: देखिए आरजे कांछा
1: जी,
2: भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हर साल लगभग 2.7 करोड़ नवजात बच्चों को मुफ्त में टीके दिए जाते हैं। आज की तारीख में भारत में 93.5% तक बच्चों को पूरा टीकाकरण मिल रहा है, जो पहले 76% के आसपास था। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि।
1: ये तो सच में बहुत बड़ी प्रगति की बात है सेहतिया जी, लेकिन क्या आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीकाकरण से छूट जाते हैं?
2: देखिए आरजे कांछा, सच्चाई ये है कि हाँ, आज भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे बच्चों को हम जीरो डोज बच्चे कहते हैं, यानी वो बच्चे जिन्हें अभी तक एक भी टीका नहीं लगा है। ये स्थिति ज्यादातर उन इलाकों में देखने को मिलती है जहां जागरूकता कम है या पहुंच में दिक्कत है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के हिस्से में।
1: ओह, मतलब अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है।
2: हाँ बिल्कुल आरजे कांछा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इस चुनौती को समझते हुए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है, मिशन इंद्रधनुष।
1: अरे हाँ, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन ये करता क्या है?
2: देखिए आरजे कांचा, मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा अभियान है जिसका मकसद साफ है, जो बच्चे अब तक टीकाकरण से छूट गए हैं उन्हें ढूंढकर पूरा टीकाकरण देना। ये सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि एक अभियान है जो गांव-गांव जाकर काम करता है। इसने हजारों गांवों तक अपनी पहुंच बनाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 16,000 से ज्यादा गाँव में और 48,000 से ज्यादा आकांक्षी जिलों में इसने काम किया है।
1: वाह, इसमें तो मेरा नाम भी है, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, इतने बड़े देश में इतने सारे गांव हैं, लोग हैं, ये सब कैसे संभाला जाता है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आरजे कांचा आपका।
1: जी,
2: दरअसल आज के समय में तकनीक ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। जैसे हमारे पास EVN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि टीके सही तापमान पर सुरक्षित रहें और जहां जरूरत हो वहां समय पर पहुंच जाएं।
1: यानी ये जो EVN है इसके चलते टीके खराब नहीं होंगे, इसका पूरा ध्यान कैसे रखा जाता है?
2: बिल्कुल सही समझे आप आरजे कांचा
1: जी।
2: और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है
1: जी,
2: EVN या एक डिजिटल सिस्टम है जो हर बच्चे और हर गर्भवती महिला का रिकॉर्ड रखता है
1: जी।
2: इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा या महिला टीकाकरण से छूट न जाए।
1: यानी अब पूरा सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना आसान हो रहा है।
2: जी हाँ आरजे कांचा, बिल्कुल, अब डेटा के आधार पर काम करते हैं जिससे निगरानी भी आसानी हो जाती है और छूटे लोगों को पहचानना भी।
1: बहुत बढ़िया, लेकिन सेहतिया जी एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही मुझे, इतनी सुविधा होने के बावजूद भी लोग टीकों से डरते क्यों हैं आखिर?
2: देखिए आरजे कांचा, डर की सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी और अफवाहों। कई बार लोग बिना सही जानकारी के ही बातें फैलाने लगते हैं। कोई कह देता है कि टीका लगवाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो कोई कहता है कि इससे बुखार आता है।
1: ये बातें तो मैंने भी कई बार सुनी है,
2: लेकिन सच्चाई कुछ और है। हल्का बुखार या सूजन आना बिल्कुल सामान्य है, इसका मतलब कि शरीर उस बीमारी के खिलाफ लड़ना सीख रहा है। यह एक अच्छी प्रक्रिया है, न कि डरने वाली बात है।
1: तो असली खतरा आखिर क्या है भैया?
2: असली खतरा टीका न लगवाना, क्योंकि अगर बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया तो वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे खसरा, पोलियो, टिटनस या निमोनिया। ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है भैया। तो सेहतिया भैया, अब क्या आप हमें पूरा टीकाकरण शेड्यूल जो है उसको थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं?
2: जरूर आरजे कांचा
1: जी।
2: ये जानना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसे 3 महत्वपूर्ण टीके लगवाए जाते हैं। BCG जो TB से बचाव करता है, OPV जो पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस बी का टीका।
1: ठीक है, यानी के शुरुआत जो है टीकाकरण का वो जन्म से ही शुरू हो जाती है।
2: बिल्कुल आरजे कांचा, इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चों को कई टीके दिए जाते हैं। इनमें OPV की खुराक या पेंटावेलेंट वैक्सीन, जी हाँ, और ये खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV से बचाव कराता है। साथ ही रोटा वायरस और कुछ जगहों पर PCV भी शामिल होते हैं।
1: ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है भैया।
2: और ये यही खत्म नहीं होती है, 9 महीने की उम्र में बच्चों को खसरा, रुबेला का टीका दिया जाता है। इसके बाद 16 से 24 महीने के बीच बूस्टर डोज दी जाती है, ताकि पहले लगे टीके का असर और मजबूत हो सके।
1: और बड़े होने पर,
2: जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है, तब DPT का बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 10 साल और 16 साल की उम्र में TD यानी टिटनस और डिपथीरिया के टीके लगाए जाते हैं।
1: अच्छा, ये तो बात हो गई बच्चों की और उनसे थोड़े से बड़े बच्चों की। अब जरा ये बताइए कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से टीके हैं?
2: गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्हें TD का टीका दिया जाता है, जिससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों को सुरक्षा मिलती है। ये समय पर लेना बेहद जरूरी होता है।
1: तो सेहतिया भैया, आज तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सच में अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए तो हम कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
2: बिल्कुल आरजे कांछा, यही हमारा लक्ष्य भी है कि हर बच्चे तक, हर परिवार तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि कोई भी जीवन सिर्फ जानकारी की कमी के कारण खतरे में ना पड़े।
1: बिल्कुल सेहतिया जी, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि टीकाकरण सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या हम इसे एक तरह का पूरा जीवन चक्र मान सकते हैं?
2: बिल्कुल आरजे कांछा, आपने बिल्कुल सही समझा। टीकाकरण को हम लाइफ साइकिल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान के जन्म से लेकर किशोरावस्था और आगे तक अलग अलग उम्र में शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए जाते हैं। यानी ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि समय समय पर जरूरी सुरक्षा देने की एक पूरी प्रक्रिया है।
1: सेहतिया जी, अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, ये टीके आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? लोग कहते हैं कि टीकाकरण जिंदगी बचाता है।
2: देखिए आरजे कांछा
1: जी,
2: अगर हम पिछले 50 सालों का इतिहास देखें तो टीकों ने दुनिया भर में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। जरा सोचिए, हर एक मिनट में लगभग 6 लोगों की जान सिर्फ टीकों की वजह से बच रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: मतलब हर मिनट 6 जिंदगियां बच रही हैं, ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है।
2: और सिर्फ इतना ही नहीं, टीकाकरण ने बच्चों की मृत्यु दर को लगभग 40% तक कम कर दिया है। पहले जहां छोटी छोटी बीमारियों से बच्चों की जान चली जाती थी, आज वही बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। यही वजह है कि टीकाकरण को दुनिया के सबसे सफल और किफायती स्वास्थ्य उपायों में गिना जाता है।
1: सच में ये सुनकर एहसास होता है कि टीकाकरण सिर्फ एक स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि जीवन बचाने का सबसे बड़ा साधन है।
2: बिल्कुल आरजे कांछा, और यही कारण है कि ये सिर्फ सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। जब हम अपने बच्चों को टीकाकरण लगवाते हैं, तो हम सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित बना रहे होते हैं।
1: तो सेहतिया भैया, जरा ये बताइए कि गांवों में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कैसे मनाया जाता है, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं?
2: देखिए आरजे कांछा
1: जी,
2: वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान गांव में काफी सक्रियता देखने को मिलती है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोग से मिलती हैं, उन्हें टीकाकरण के बारे में समझाती हैं, बच्चों के टीकाकरण कार्ड चेक करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बच्चा छूट न जाए।
1: मतलब भैया, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलती है।
2: जी बिल्कुल। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में PSC और आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जाते हैं, जहां बच्चे और गर्भवती महिलाएं आकर अपने टीके लगवाती हैं। गांव में माइक से घोषणाएं की जाती हैं, लोगों को तारीख और स्थान की जानकारी भी दी जाती है, और पूरे समुदाय को इसमें शामिल किया जाता है, ताकि कोई भी परिवार पीछे न रह जाए।
1: सेहतिया जी, आपने शुरुआत में कमला की कहानी सुनाई थी, जिसने टीका ना मिलने की वजह से बहुत दर्द झेला। क्या कोई ऐसी कहानी है जहां टीकाकरण से किसी का जीवन पूरी तरह से बदल गया हो?
2: हाँ आरजे कांछा, और ये कहानी भी हमारे ही गांव केशवपुर पहाड़वा की है। कमला वही लड़की है जिसने बचपन में टीका ना मिलने के कारण इतनी मुश्किलें झेली थी। जब बड़ी हुई तो उसने एक ठान ली, उसने निश्चय किया कि उसकी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। उसकी बेटी का नाम सुजाता कुमारी है। कमला ने उसके जन्म के दिन से ही हर टीके का पूरा ध्यान रखा। आशा दीदी के साथ खुद जाती थी, हर एक डोज समय पर लगवाती थी, एक भी टीका छूटने नहीं दिया।
1: जी जी भैया, अब ये बताइए कि और आज जो सुजाता है वो कैसी है?
2: आज सुजाता एकदम स्वस्थ है। वो स्कूल जाती है, खेलती है, दौड़ती है और एक खुशहाल बचपन जी रही है। कमला अक्सर कहती है कि मेरी बेटी को वो दर्द कभी नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला था।
1: वाह भैया वाह, यही तो असली बदलाव है, यही तो जीत है।
2: और यही इस साल का संदेश भी है, हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं। टीकाकरण सिर्फ आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा है।
1: तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि समझा और महसूस भी किया कि टीकाकरण कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक सुई नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच है, जो आपके बच्चे, आपके अपनों को बीमारी से बचाता है और उसका भविष्य सुरक्षित बनाता है।
2: और याद रखिए, टीका लगवाना सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। जब आप अपने बच्चे को टीका लगवाते हैं तो आप पूरे समाज को सुरक्षित बनाने में योगदान देते हैं।
1: तो इस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं, अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण करवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
3: स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत टीकाकरण से ही संभव है।
1: तो इसी के साथ आज का शो यहीं समाप्त होता है, पर जाने से पहले लेंगे हम सब मिलकर अपने अपनों की और अपनी सेहत की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे
0: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
3: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
0: तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जाने कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमैटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और आज इत्तेफाक की बात है कि साथ में नहीं है मेरे अंशिका, बट जो है मेरे साथ में वो है सौ पे भारी और जिसका नाम है एक बहुत ही प्यारी सी नारी
6: है। नहीं आज तो राइमिंग आपने पहली वाली तो काफी खूबसूरत करती और दूसरी वाली मेरे को मतलब सोचने में आया कि कहीं आप अच्छा क्या आपने नारी बोला, मैंने कुछ और बोलती तो फिर मुझे
5: नारी बोला मैंने।
6: हाँ ठीक है, नहीं मेरा तो है ना, मैं अपने वे में चली जाती हूँ।
5: हाँ तो ये अपने वे से अभी बाहर आने में इनको कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। मैं इसको अभी गुस्से में देख रही थी कि मतलब सबर नहीं हुआ ना, मैं इतने अच्छे से एंट्री कराने के मूड में थी कि आज ये इनकी हंसी से हम आपको पहचानते, लेकिन क्या पहचानते।
6: नहीं नहीं ये तो होना है, देखिए जब दो सहेलियां मिलती हैं और ओवरफ्लो होता है इमोशन का तो ऐसा होना बनता है
5: है ना। बट मैं बताऊं कि जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कभी बहुत टाइम के बाद किसी से मिल रहे होते हैं या फिर उनकी उनको याद कर रहे होते हैं और अचानक से अरे ग्रहण
6: आते वापस,
5: ग्रहण लगा हुआ है और पूर्णिमा पता नहीं कब आएगी, इसीलिए
6: और जो आएगी भी तो बारिश छा जाएगी, बादल छा जाएंगी, फिर से वो विलुप्ति हो जाना।
5: नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसी दुआ दोगे तुम मुझे? तुम चाहती हो कि पूर्णिमा नहीं आए मेरी जिंदगी में?
6: मैं बिल्कुल नहीं चाहती पूर्णिमा, मैं चाहती हूँ आपकी जिंदगी में कोई पूर्णिमा लड़की ना आए, मेल मतलब मेल आए। मैं चाहती
5: हूँ भगवान मेरे पूर्णिमा रात मतलब जिसमें फुल मून होता है।
6: अब आप पूर्णिमा पूर्णिमा कह रही थी, मुझे लगा मैं मोहल्ले की जो पूर्णिमा है।
5: हम चाहते हैं कि वो पूर्णिमा लड़की मेरे जिंदगी में आए
6: और अपने भाई को साथ
5: और अपने भाई को साथ मिला है। ये पागल लड़की है वाकई, मतलब आज लग रहा है ना सुन सहेली आप लोग सुन रहे हैं वाकई में। देखिए मैंने अभी आपको एंट्री नहीं दी है, मैंने आपसे ना शुभ दोपहरिया बोला है और इनकी ही हूँ।
6: दोपहर हुई ही कहा है, अभी तो सुबह हुई है।
5: सुबह हुई तो चलो चाय पी के फिर से लेट जाते हैं एक बार।
6: मौसम है आशिकाना।
5: क्या बता दें अब, चलो ठीक है। तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे आकांक्षा के साथ में है। तो भाई आज है मेरे साथ में आरजे आकांक्षा जो कि आज अंशिका की एब्सेंस में है, लेकिन एज अ गेस्ट के रूप में आई है आज हमारे साथ में सुन सहेली में।
6: ओहो अभी कुछ देर में हमें चाय पानी भी मिलेगा, इसका मतलब
5: भूल जाओ। पानी दे देंगे, पानी मिल जाएगा और मेरे बैग में रखी रहती हैं वो चूरन की गोलियां। अच्छा। वो दे देंगे, बाकी
6: मेरा हाजमा एकदम फिट है, मुझे नहीं चाहिए।
5: ठीक है वो दे देंगे, बाकी अदरवाइज तो क्या तुमको क्या लगता है मेरा हाजमा खराब है?
6: नहीं हाजमा नहीं खराब है, आपका दिमाग खराब है।
5: दामाद खराब है?
6: दामाद अब रहने से ज्यादा हो जाएगा।
5: दामाद खराब, बिटिया अभी आई नहीं है, दामाद कहाँ से आ गया भाई?
6: पता नहीं वो पूर्णिमा नाम की लड़की मुझे लगी कि कुछ ऐसा है।
5: तो चलिए तो एक साथ एक ही फ्रेम में इस प्यारे से मौसम में, भाई देखिए दोपहर तो कहीं ना कहीं तो निकली हुई है ना, लेकिन हम एक साथ विश करेंगे हम दोनों लोग, क्या बोलेंगे आकांक्षा?
6: शुभ दोपहरिया।
5: बिल्कुल शुभ दोपहरिया और ठंडी ठंडी शुभ दोपहरिया है आकांक्षा मैम, आपको बोल रहे हैं कमल नयन जी।
6: अच्छा हमको चलिए कम से कम इन्होंने बताया ठंडी है, ठिठुरी और ठुमरी नहीं बोल दिया।
5: नहीं कमल नयन जी ने कमल खिलाते हुए आपको बोला है शुभ दोपहरिया और ठंडी शुभ दोपहरिया।
6: ओह माय गॉड, एक्चुअली मुझे भी फील हो रहा था और मेरे साथ में हमारी प्यारी आरजी समता जी को भी फील हो रहा था।
5: क्या
6: बट इन्होंने बताया नहीं ठंडी
5: ठंडी तो तुम्हें नहीं लग रही है?
6: नहीं, मुझे हल्की हल्की फील हुई, इसलिए मैंने बोला चाय पानी, तो आपने फिर से बोल दिया पानी।
5: हाँ, मतलब मुझे उतनी नहीं ठंडी लग रही है, बट हाँ हल्की सी फील हो रही है, और बाहर जब आप निकल रहे हैं ना तो बढ़िया वाली ठंड लग रही है।
6: अच्छा, आपने आज मेरा वेशभूषा नहीं देखा, मैंने इतना बड़ा चद्दर तान के आई थी मैं।
5: हाँ, तो चद्दर तानने के बाद ही तो हमें लगा कि तुम आज आकांक्षा को ठंडी लग रही है, मतलब इट मीन्स ठंडी है, और हाँ। हम लोगों को तो लगती ही लगती है, हम लोगों का तो कोई कहना ही नहीं है, बट आज ठंडी है। और ठंडी का प्रूफ ये है कि सभी के घरों में एसी बंद हो गई है, कूलर नहीं चल रहे हैं, और फैन भी चल रहे हैं तो मात्र एक या दो पे चल रहे हैं।
6: क्या बात है, बिजली विभाग अब से हमारे आर्य समता के हाथों में है।
5: खुश रहेगा बिजली विभाग, काश मैं बिजली विभाग की कुछ ऐसी कार्यकर्ता होती तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता आज के दिन। और बता दूं कि कल रात में 24 डिग्री सेल्सियस, जिसको कहा जा सकता है कि तापमान था रात में, जब 24, जो कि हम लोग हमेशा से एसी में चलाते हैं 24, तो कल 24 था। और ये भी मौसम विभाग से पता चला है कि 26-30 तक ही कुछ दिनों तक और रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में बहुत बढ़िया वाली बारिश शुरू हो गई है।
6: तो क्या कहती हैं, कुल्लू मनाली वालों को यहीं बुला ले जो विजिटर्स आते हैं विजिट करने?
5: मुझे तो ये लग रहा है कि जो लोगों ने प्लान किया हुआ था, जिन लोगों की टिकट्स बुक हो गई थी मई जून में घूमने के लिए कुल्लू मनाली कश्मीर या फिर कहीं पे भी, तो उन लोगों को अपनी टिकट को करा लेना चाहिए कैंसिल।
6: अरे
5: क्योंकि यहीं पर सारी सुविधाएं हैं, अपनी छत पे जाएं और अच्छा सा एक तंबू अंबू बना लें और शाम के समय में चाय पकौड़े बना करके वही आनंद लें ठंडी ठंडी हवाओं का।
6: क्या बात है,
5: पकौड़े, उफ़ो, एक तो इस समय बहुत भूख लगती है, ऊपर से जब पकौड़े और चाय का स्वाद आ जाए मुंह में ना, अभी अंशिका होती है तो वो तो पहले खाने बैठ जाती है। ठीक है, तो चलिए भाई और शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। और आज है हमारा ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन होता है बच्चों का सेक्शन। तो बच्चों की पाठशाला शुरू करने से पहले, जो कि औपचारिकता हमने शुरू की है अभी कुछ ही दिन पहले, कि हम एक कविता लेकर के आते हैं हर दिन के प्रोग्राम के ऊपर अनुरूप बनी होती है। तो पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आकांक्षा जी आपको बताने वाली हैं, और उसके बाद आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ बचपन की यादें जो बारिश के मौसम में हम हमेशा से उसे मिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ूं आकांक्षा?
6: हाँ बिल्कुल।
5: पल में रोते पल में हंसते, पल में रोते पल में हंसते, उनको ये तक ज्ञात नहीं, उनको ये तक ज्ञात नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पास मेरे शब्द नहीं, बचपन होता कितना प्यारा जिसमें कोई भेदभाव नहीं, बचपन होता कितना प्यारा जिसमें कोई भेदभाव नहीं, तोतली बोली और किलकारी उनकी, उनके समान कोई मासूम नहीं। तो ये प्यारी सी जो अभी चार लाइन की जो कविता है वो अभी अधूरी है, क्योंकि आकांक्षा जी उनको पूरा करने वाली है।
6: और अगली कड़ी ये है कि बच्चों भविष्य तुम्हारा खुद है तुम्हारे हाथ में, बच्चों भविष्य तुम्हारा खुद है तुम्हारे हाथ में, चाहो इसे सजा लो या फेंक दो उत्पात में। तुम्हारे सपनों को मिले खुला आसमां, तुम्हारे सपनों को मिले खुला आसमां, हर कदम पर किस्मत तुम्हें गले लगाए, तुम यूं ही हंसते रहो यूं ही बढ़ते रहो, हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ते रहो।
5: बिल्कुल, तो सुना आपने कि कितनी प्यारी सी कविता थी। और आकांक्षा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस कविता के माध्यम से आप क्या बच्चों को एक संदेश देना चाहती हैं?
6: बस यही कि अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों पे तो भाई उत्पात अच्छा लगता है, पर उतना ही जितना कि मुझे लगता है जहाँ वो चोटिल ना हो, जहाँ उन्हें मम्मी से डांट ना पड़े, या जहाँ उनके समय का मतलब जाया ना हो।
5: एग्जैक्टली, और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी लाइन है जो कि बहुत जिसे कहते हैं ना, जिसमें ज्ञान जो होता है वो गुण रूप से भरा पड़ा है, वो ये है कि हम जितने भी बच्चे, हम जितने भी बड़े हो जाएं, हम अपनी एज से जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे जो दिल है ना, हमारे जो सीने में दिल है ना, उसको हमेशा से एक बच्चे के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो बड़ा हो गया ना, वो फिर तमाम बाहरी चीज़ों को सोचने लगेगा, समझने लगेगा, और पता है वो हमेशा से दुखी रहने लगेगा। इसीलिए आपके सीने में जो दिल है ना, उसको दिल ही बना के रखें, और उस बच्चे वाले दिल को हमेशा से उस तरीके से संभालें जैसे एक छोटे बच्चा जो पैदा होता बच्चा होता है उसे हम लोग कैसे संभालते हैं, कैसे पैम्पर करते हैं कि ठीक से उठाओ, कहीं उसको लग ना जाए, नेल्स ना लग जाए, उसको भूख लगी है खाना दे दो, उसको इतना संभालो कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ठीक आज की जो पोयम का एक सारांश निकलता है वो यही है कि बच्चों वाले दिन को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बच्चों वाली जो एक मासूमियत होती है वो बड़ों तक उन्हें सीमित रख करके रखना चाहिए।
6: और अगर आपने दिल को कर दिया आपने मिस, तो आपको फिर भरना पड़ेगा डॉक्टर वाला बड़ा बड़ा बिल।
5: वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इमोशनल वाली लाइन आ गई। एग्जैक्टली एक लाइन मैंने भी कहीं पढ़ी थी आकांक्षा की, अगर आप दोस्तों के साथ खोलेंगे नहीं दिल तो एक दिन डॉक्टर आपका दिल जरूर खोल देंगे।
6: ऐसा का?
5: हाँ, इसीलिए मैं खोल देती हूँ अपना दिल आपके सामने।
6: ओह माय गॉड, अगली दफा से मैं डॉक्टर की बजाय खुद ही उस पे सिलाई मार दूंगी।
5: क्यों
6: तो? अरे आप खोलिए तो।
5: मैंने कई बार खोला है, मैंने अभी भी खोला है कि हाँ मैंने मेरी मन की जो भावना होती है, जो फीलिंग होती है, जो चीजें बातें होती हैं, मैं आपको ही तो बताती हूँ।
6: हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, मैं डॉक्टर के पास आपको कहाँ जाने दूंगी, मैं ही उपचार करूंगी।
5: हाँ बिल्कुल, तो चलिए आकांक्षा यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फैक्ट्स ऑफ लाइफ में। आज है चिल्ड्रंस डे के स्पेशल में बताएंगे कि कुछ ऐसी फैक्ट्स होती हैं जो आज भी हम उन फैक्ट्स को मिस करते हैं, लेकिन वो क्या है, और स्पेशली जो मॉनसून स्पेशल है उस पर हम बताएंगे कुछ चर्चा। तो चलते हैं इस प्यारे से गाने को सुनते हैं, क्योंकि माई नेम इज लखन।
6: अच्छा आपका नाम लखन है, कब पड़ा?
5: आज ही हो गया क्योंकि पूर्णिमा आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लखन बन जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज आकांक्षा जी। तो चलिए फटाफट फैक्ट्स ऑफ लाइफ शुरू करते हैं आज के। तो आकांक्षा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और आप उसका प्रश्न का उत्तर आप हमें सही सही बताइएगा।
5: प्रश्न का उत्तर प्रश्न में देना है या जवाब में देना है?
0: जवाब देना है।
5: ठीक है,
0: बोले।
5: हाँ जी, आई एम रेडी।
0: कागज की नाव और बारिश का पानी, वह बेफिक्र जमाना जहाँ बस खेलना ही मुख्य काम था। माँ की लोरी हो और पापा की डांट, माँ का आलिंगन और पापा की हल्की डांट से भरा संतुलित जीवन। तो आप हमको ये बताएं कि कागज की नाव और बारिश का पानी,
5: इसमें बैठना कैसे है?
0: तो बैठना नहीं, ये क्या आपने बचपन में किया है?
5: ओ, ये आप जानना चाहती हैं। मैंने नाव तो बनाई थी, मैंने तैराया भी था, लेकिन वो तैरने से पहले ही डूब गई।
0: क्यों?
5: पानी भर गया था ना, ओवरफ्लो के कारण।
0: कैसे?
5: क्योंकि कागज की नाव थी।
0: कागज की नाव थी। हाँ। और एक स्टीमर आता था पहले, जिसमें मोमबत्ती लगाई जाती थी, मोम की छोटी सी, और उसको जलाने के बाद में स्टीमर आवाज करता था। हम लोग टंकी में उसको चलाते थे, बड़ी सी टंकी होती थी आंगन में। वो जो होती नहीं थी पहले जमाने में, सिरमेंटेड होती थी टंकी और बहुत लंबी सी। आज भी गाँव में कई जगह पर है जहाँ पर,
5: और उसमें तो मशीनें भी चलती,
0: मशीनें चलती हैं पानी की। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, स्टीमर मिलते थे, अब वो शायद नहीं मिलते हैं, और उसमें छोटी सी एक वो लोग देते थे, मतलब जैसे नहीं वो मोम का बिल्कुल फ्लैट करके और हल्की सी बाती बनी होती थी, तो उसको जला के जैसे आप वो उसमें स्टीमर के अंदर रखेंगे तो जैसे वो गर्म होता था,
5: मतलब भाप की वजह,
0: भाप की वजह से वो फिर वो पूरा चलता था स्टीमर।
5: तो और उसमें वो भी एक पोता जैसे होता था जो ऐसे से आगे बढ़ाता
0: था। तो ये सारी हरकतें क्या आपने की है?
5: नहीं, मैंने तो अलग ही हरकत की है ना।
0: जैसे?
5: जैसे वही जो ट्यूबवेल होता था जिसमें से पानी निकलता था। हाँ। पूरा दिन उसमें बिताते थे, फिर शाम में मम्मी से मार खाते थे।
0: मतलब क्या उसी में बैठे थे ना पूरा टाइम?
5: अरे हम अकेले नहीं, पूरा बच्चा पार्टी, हमारे यहाँ के पूरे कजिन्स सारे के सारे, और सब के सब डांट खाते थे। और सबसे ज्यादा काम उसमें मेरा ही हुआ होता था
0: गर्मियों में।
5: हाँ, गर्मियों में, जब गर्मियों की छुट्टी में जाते थे
0: गाँव में।
5: हाँ जी, मामा के यहाँ जाते थे।
0: तो मामा, अरे क्या याद दिला दिया, मई जून और मामा और आम, ये कॉम्बिनेशन जो था ना। हाँ। ये कॉम्बिनेशन आज हम लोग बहुत मिस करते हैं यार। मन करता है कि
5: यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं 8 साल बाद एक हफ्ते जो अभी मैं गई थी। हाँ। हाल फिलहाल में 8 साल बाद पूरे वो यादें ताजा करके आई,
0: और मेरा भी मन कर रहा है अब कि बहुत साल हो गए हम लोग मामा के घर ऐसे छुट्टियों में नहीं गए हैं। तो कभी कदार लगता है कि चलो, वैसे तो हम लोग आए दिन जाते रहते हैं लखनऊ, लेकिन वो वाला जो रहना होता था छुट्टियों में और मामा के बच्चे और हम सब लोग मिल करके, वो ढेरों मतलब घंटे, मतलब रात क्या होती थी आकांक्षा, सुबह के 4 बज जाते थे, हम लोग मस्ती करते करते बातें करते करते।
5: बिल्कुल, नेक्स्ट मैं ही आपसे कहने ही वाली थी। हाँ। कि हम तो अभी बड़े हो गए फिलहाल, अभी हम मासी भी बन गए हैं। हाँ। काफी सारे बच्चों के। हाँ। लेकिन वो जो हमसे जो नई पीढ़ी आई है, जो कजन्स हैं आपस में, उन सब ने क्या रील्स बनाई हैं, फुल टाइम मस्ती की है, सब बड़े सो रहे हैं। अच्छा, बड़े जानते भी हैं, सब बड़े हेडफोन कान में लगा के गाने चला के सो रहे हैं कि बच्चों को डिस्टर्ब ना किया जाए। आए हैं धूम धड़ाका करने। हाँ। मस्ती कर रहे हैं तो करने देते हैं, और लगातार 4 बजे तक उनके सियापे चलते रहे हैं, और हम लोगों ने डोर लॉक कर करके अपने अपने रूम में हम सभी शिफ्ट हो गए हैं।
0: वाह,
5: ये हाल था।
0: तो यही जो मस्ती है ना, यही मस्ती बचपन जो है ये हमेशा से हर किसी की लाइफ में आता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो घिर जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी दिमाग की उलझनों में। बहुत सारे लोग तो इसीलिए भी ग्रस्त हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कई बार धोखे भी खाते हैं।
5: कारण यही था, मैं कहूंगी कि आपको जो आपकी प्रायोरिटी है वो उसका आप सही तरह से चयन नहीं कर पाते।
0: हाँ,
5: बस इतनी
0: शायद मुझे भी ऐसा लगता
5: है। शायद नहीं, यही बात ही है। हाँ, हम अपनी प्रायोरिटीज को क्या कर लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको बना लेते हैं अपनी दुनिया।
0: हाँ।
5: और हमें भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं।
0: हम भी इंसान हैं।
5: हमें ये होता है कि हम अब एक मशीन हो गए हैं, एक मॉनिटर हो गए हैं और सबकी जिम्मेवारी हम अपने ही कंधों पे लेके ढोने लगते हैं।
0: लेकिन ऐसा नहीं, ये कहना आसान होता है ना, लेकिन देखो जब हम बच्चे थे तो बच्चों को कोई डांट दे, कोई नहीं बोले कितने दिन तक, या वो फर्क नहीं होता था, वो तुरंत जाकर के, वो बच्चा खुद जाकर के दोस्ती कर लेता।
5: वही तो जिंदा रखना है, वही बचपना तो जिंदा रखना है। मेरे अंदर ये कूट कूट के भरा है, मैं सफाई भी नहीं देती, मैं बोलती भी नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको जो मन में आए करो, आई डोंट केयर, मैं तो बोल भी देती हूँ। कई दफा मैंने बोला है ऑन एयर, कई दफा ऐसी बातें भी की है लिसनर से भी, और कई दफा उनका मुंह भी फूला है। तो भाई मैं अपने अंदर के बचपने को क्यों मिटाऊंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात मैं जानना चाहती थी कि क्या ऐसा सभी के साथ होता है।
5: बेशक
0: कि हर एक इंसान के साथ होता है कि जब वो बचपन कहीं ना कहीं मिट जाता है तो वो एक अंदर से खालीपन हो जाता है।
5: और वही इतना नहीं होता मैम, मैं यहाँ पे आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि हर इंसान, जैसे हम, आप और सभी एक दूसरे की तरह ही हैं। बस हम क्या होता है, हम अपने कुछ पार्ट्स को हाईलाइटेड करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ये दिखाएं, हम इतना ही दिखाएं लोगों को। लेकिन जिसको जो आपसे चाहिए होगा, जिससे जिसको जो आपसे जानना होगा वो आपसे जान लेगा, आप उसे बताओ या ना बताओ। वो आप एक खुली किताब होते, हर किसी को लगता है कि वो कवर्ड है पेपर के अंदर, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई यही होती है कि हर इंसान को समझ आता है हर इंसान का ऑरा।
0: बिल्कुल, तो मतलब अगर वो खालीपन है तो उसको फिल करने के लिए हमें फिर से बचपन में लौटना पड़ेगा।
5: फिर से लौटना ही क्यों पड़ेगा, आप अपने बचपने को हमेशा बरकरार रखिए। फिर कोई भी पंगा हो, कुछ भी हो, देखिए प्रायोरिटी आप, आपकी दुनिया खुद है, सबसे पहले आप हैं, तब ये दुनिया है, तभी आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, तो लोग आपसे जानना और सीखना पसंद करेंगे कि भाई क्या कारण है ये इतना, मतलब हमेशा आप एनर्जेटिक कैसे रहते हो, आप इतना खुश, मतलब खुश कैसे रह लेते हो, मुस्कुरा कैसे लेते हो, कारण क्या है। कारण यही है कि भाई हमने अपना बचपना कभी खोया ही नहीं है।
0: खोया ही नहीं है। बिल्कुल, और जहां बचपना अगर खो गया तो वो उदासी, वो अकेलापन और बहुत सारा चीजें दिमाग में चलते रहना, तो ये फिर मुझे लगता है कि आगे चल करके ये लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम
5: नहीं आती है, ये चीजें भी आती
0: है,
5: ये पड़ाव भी आता है, क्योंकि आप बड़े होते हैं तो आप मैच्योर भी होते हैं, क्योंकि बचपना तो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है ना।
0: हाँ।
5: कई जगह आपको स्टैंड भी लेना होता है, आपकी जिम्मेदारियों को भी आपको देखना पड़ता है। बट हमको एक गुण और आना चाहिए, लेट गो वाला, मतलब आएगा एक सैलाब की तरह, लेकिन अगर आपने उसको मैनेज करना, बैलेंस करना सीख लिया है तो फिर आप, और बोलते भी हैं साइकोलॉजी में कि इंसान जितनी जल्दी समायोजन कर लेता है वो उतना ही बुद्धिमत्ता, मतलब प्रदत्त इंसान है, उसकी बुद्धि उतनी ही हाई है।
0: हाँ।
5: तो मतलब होता नहीं कि एक समस्या आई तो एक इंसान है कि 24-24 घंटे, एक एक महीने उसी में उलझा पड़ा है, और कुछ होते हैं कि वो आई, उसने देखा, 2-4 मिनट केवल लिया मुश्किल से, और उसके बाद में उसको उसने उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला, बाकी जो बेकार की चीजें थी हटा दिया। हाँ, तो इंटेलिजेंसी लेवल उसका यहाँ पे वो दिखाता है।
0: गुड गुड, वेरी नाइस,
5: थैंक यू।
0: तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे हम अपने नए टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक को जानने के लिए, क्योंकि आकांक्षा जी कुछ लेकर के आई हैं आप सभी से बात करने के लिए।
5: नहीं, तो, मैं लेके तो आई हूँ लेकिन दूंगी नहीं किसी को, मैं लेके आई हूँ खुद के लिए।
0: तो मतलब लिसनर्स को नहीं देना है?
5: नहीं, ज्ञान देना है ना, बाकी जो लेके आई मैं खुद खाऊंगी।
0: ज्ञान देना है, वो हमारे सामने जो बैठे है ना वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है।
5: नहीं नहीं, कभी कभी रिमाइंडर के तौर पे देना होता है, भले ही सभी के पास होता है, इंसान भूल जाता है।
0: हाँ, ये भी बात है। तो चलिए अभी हम यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे सीधे हम लिसनर्स का करेंगे वेलकम, और उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584 88 40 33 95 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आकांक्षा जी। तो चलिए सबसे पहले आते हैं आकांक्षा जी चैट बॉक्स में, क्योंकि काफी लिसनर्स आ गए हैं।
4: ठीक है, अगर कुछ नाश्ता पानी होगा तो हम तक भिजवा दीजिएगा।
3: अच्छा जी, ठीक है। तो नाश्ता पानी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी। सबसे पहले सबलू जी ने कुछ मैसेज किया है, धर्मेंद्र जी ने मैसेज किया है, एंड कमल जी ने मैसेज किया है, एंड गीता जी और लिख रहे हैं सबलू जी के कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था।
4: और वहीं बगल में घर हमारा था,
3: जहाँ रहती थी हमारी आकांक्षा, हमारी जहाँ नदी का एक किनारा था।
4: क्या बात है।
3: तो धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। नहीं नहीं, साल नहीं बोलते धर्मेंद्र जी, वो एक युग दूसरा था। हाँ। वो ये युग दूसरा है, जो बच्चों वाली बात हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक क्या है आकांक्षा जी?
4: हाँ, तो अगर आप भी हैं पेरेंट्स हमारी तरह, मतलब हम फिलहाल है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास,
3: मानते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं घर में, हमारे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हमारी भतीजियां हैं, भतीजे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स बन ही गए हैं।
4: और कई दफा तो हमें ऐसा भी फील होता है कि हमारी आरजे समता जी भी अभी बच्ची हैं।
3: मैं तो बस, मुझे मेरे लिए बस यही दुआ किया करो कि मेरा दिल हमेशा से बचपन वाले में ही जिए।
4: हाँ, लेकिन बातें इनकी बड़ी समझदारी वाली होती है, तो भाई इनसे ज्ञान लेना बनता है कई दफा। नहीं नहीं, आक्रोश देखिए, जो साफ दिल का होता है वो उसे सूट करता है,
3: थोड़ा सा क्रोध में आ जाता है।
4: हाँ, वो उसका हो ही जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी को सच्चे दिल से कुछ दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और नहीं भी करते तो भी मतलब उसका हक बनता है, तो फिर गुस्सा आना लाजमी है। फिलहाल चलते हैं उस टॉपिक की ओर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी, और लगभग सभी जानते भी हैं उस टॉपिक को, बट मैंने बोला था ना कि एज अ रिमाइंडर हमें याद दिलाना पड़ता है काफी दफा काफी सारी चीजों को। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बस इतना सा ही है कि अगर आप भी हैं पेरेंट्स हमारी तरह, मतलब हम सभी होते हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी के पेरेंट, तो उनके लिए खास कि सुबह के टाइम पे उनकी एक हैबिट बनाइए। हैबिट क्या है? बस इतनी सी बात है कि सुबह खाली पेट पानी पीना उनको सिखाइए।
3: अच्छा।
4: हाँ, और खाली एक गिलास मात्र।
3: उससे क्या होगा?
4: उससे होगा ये कि दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, यानी कि कौन सा
3: दिमाग की बत्ती जलेगी और वो आपकी बत्ती को फिर वो कम कर देंगे।
4: हाँ। ये वाला सही है, तब तो मैं कहती डेफिनेटली पिलाना चाहिए।
3: हाँ।
4: हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका नहीं आपके बच्चों का बढ़ेगा, और मेमोरी बढ़ेगी। भाई आपको अगर बढ़ाना है तो आपको भी पानी पीना पड़ेगा। तो हम तो कहते हैं बच्चे वैसे भी वही करते हैं जो वो देखते हैं अपने बड़ों को करते हुए, तो आप भी अपनी आदत में इसको शुमार कर लीजिए और बच्चे आपको देख के जरूर से सीख जाएंगे, क्योंकि आपको वो फिर कार्बन कॉपी आपकी करने लगते हैं। और इससे क्या होगा कि रात भर शरीर आपका जो हल्का डिहाइड्रेट हो जाता है, सुबह पानी पीने से ब्रेन को तुरंत हाइड्रेशन मिलती है, जिससे बच्चे की फोकस करने की क्षमता जो है और जो याददाश्त है वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन को सक्रिय करता है सुबह एक गिलास खाली पेट, और इसे डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली काम करता है, और एसिडिटी की जो समस्याएं होती हैं, जैसे होता है ना कि बच्चे छोटे होते उन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती चीज़ों की, वो कुछ भी खा लेते हैं।
3: और वैसे भी ना जैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं अभी टाइमिंग में, तो सुबह तो कुछ खा पी के जाते नहीं है।
4: हाँ।
3: बहुत रेयर होता है कि जो एक कप दूध ले लिया या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक ले ली और फिर वो लंच के टाइम यानी 10-10:30 बजे ही खाते हैं लंच।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है जब आपके पेट में, मतलब बच्चों के पेट में वो एसिडिटी बन सकती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर को डिटॉक्स भी करता है सुबह का खाली पेट एक गिलास पानी, और बाहर निकलने में मदद करता है टॉक्सिन्स को, और जिससे कि बच्चों की एनर्जी लेवल अच्छी तरह से बरकरार रहती है। और वैसे भी बच्चों में अगर एनर्जी लेवल ना हो तो फिर वो बच्चे नहीं नजर आते हैं। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन से बचाता है, गर्मी या स्कूल के लंबे दिन में उनको कॉमनली हाइड्रेट देता है, और दिन की शुरुआत उनकी काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ में आप कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं पानी के साथ में, जो बच्चों को आप दे सकते हैं वो है भीगे हुए बादाम, किशमिश, तीन से चार कलियां और चार पांच किशमिश तो जरूर ही दीजिएगा। किशमिश बहुत अच्छा होता है पाचन शक्ति के लिए। और बादाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसे माना जाता है याददाश्त तेज होती है।
3: याददाश्त तेज होती है जैसे कि हमारी आकांक्षा जी की।
4: बिल्कुल नहीं।
3: और सबसे ज्यादा एक आपने उपचार शायद मिस कर दिया
4: अभी, मैं बता ही रही थी। अच्छा, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल।
3: हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
4: तो इसके अलावा आप कभी कभार अगर आदत उनकी बनवाना चाहें, जैसे कभी होता नहीं जुकाम हो जाता है बच्चों को, तो क्योंकि पानी में खेलने की बड़ी आदत होती है इनके। अभी हाल फिलहाल में जो बारिश वाला मौसम चला है ना, उसमें भी आपके घर के नौनिहाल जरूर कूद मचा रहे होंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो उस दौरान आपको क्या करना है, उनको हल्का गुनगुना पानी पीने का आदत डलवाना है। और नींबू या शहद भी डाल के दे सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। और हाँ, अगर बच्चों को बचपन से ही नारियल पानी की आदत डाल दी, और एक फल कोई भी फल, केला हो गया या फिर सेब, वैसे तो बोलते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट सेब एक सुबह सुबह अगर खा लिया किसी ने तो बहुत हेल्दी होता है।
3: खाली पेट ना,
4: नहीं नहीं सॉरी, खाली पेट, हाँ खाली पेट, खाली पेट ही है। हाँ मतलब ये नहीं कि आपने जैसे पानी दिया उसके कुछ समय बाद, कुछ समय अंतराल के बाद, जैसे नाश्ते का जब वक्त होता है
3: तो आपने,
4: तो वो उस टाइम पे आप इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हैं। वैसे बच्चे कहाँ खाते हैं,
3: कुछ नहीं। उनको अगर वो एप्पल कट करके दो ना, तो वो ये होता है कि ऐसा है मम्मा आप हमको टिफिन में दे दो मैं खा लूंगा, ऐसे मतलब होता है। तो वो खाने का जो एक दौर हो जाता है वो फिर कहीं जा करके लंच में वो उनका लंच पैक।
4: लेकिन यही तो हमें सुधारना है, इसी की तो आदत डालनी है। अगर शुरुआत से ही हमने न्यू मजबूत कर दी तो फिर उस पर हम अपना मकान हो या महल हो कुछ भी खड़ा कर सकते हैं।
3: बिल्कुल।
4: और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी खाली पेट आपको नहीं देना है, एकदम ज्यादा मात्रा में भी पानी नहीं देना, एक गिलास पर्याप्त।
3: एक गिलास पर्याप्त
4: बिल्कुल। और बच्चों की उम्र के हिसाब से ही मात्रा एडजस्ट करिएगा। और अगर कोई मेडिकल इशू है तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही ऐसा करिएगा। और छोटा सा डेली रूटीन है, बेस्ट हैबिट है। और उठते ही एक गिलास पानी, 10 मिनट बाद भीगे हुए बादाम, किशमिश या फल, हल्का नाश्ता जो आप उन्हें देना चाहें, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें या बच्चा आपका जिस हिसाब से मतलब उसको लेना चाहे। और इससे क्या होगा कि सुबह खाली पेट पानी पीने से बच्चे के लिए ब्रेन बूस्टर हो जाएगा, डाइजेशन स्टार्टर हो जाएगा कहीं ना कहीं, और हाइड्रेशन शील्ड की तरह ये काम करेगा। अगर इसके साथ सही न्यूट्रिशन जोड़ दिया जाए तो बच्चे दिन भर एनर्जेटिक

0: लो कि रख, अगर हम लोग रात में मतलब उसको रख दें भिगो करके और सुबह खाली पेट में मतलब कितने दाने होने चाहिए
1: किशमिश के? कम से कम 6 से 7
0: दाने बच्चों के लिए है ना,
1: और बादाम 4 इनफ है,
0: 4 इनफ है, अगर गर्मियां हैं तो 2
1: की
0: हाँ, गर्मी
1: बिल्कुल है। और उसका जो पानी वो आप खुद भी पी सकते हैं।
0: ओके पानी पीने से भी वो जो जिसमें आपने ड्राई फ्रूट को भिगोया है
1: बिल्कुल,
0: तो वो पानी भी अगर आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उससे पेट की सारी प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला एक उपचार आकांक्षा जी ने आज बताया है। तो चलिए आकांक्षा जी यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि आज है भाई बच्चों की पाठशाला। तो बच्चों की पाठशाला में बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बच्चों का पालन पोषण बहुत ही केयर से करते हैं, ऐसे ही हम बच्चों के टॉपिक भी बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि सेंसिटिव टॉपिक होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो उनके टॉपिक को जरूर से सुनिए और जरूर से हमें फीडबैक भी दीजिए। हम बस यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। दोस्तों आगे आपकी आज समता और साथ में है आकांक्षा जी। तो आकांक्षा जी, आपसे कुछ करने हैं मुझे प्रश्नों की बौछार, क्योंकि आज आप आई हैं मेरे द्वार। अरे वाह, तो मुझे करना है कुछ आपके ऊपर प्रश्नों का, प्रश्नों की बौछार।
5: तो क्या मैं है स्टार्ट कर दूं अपनी गिटार
0: गा के थोड़े आंसर करना है।
5: नहीं तो मैं तो वही वाला गिटार ऑन करती हूँ, मेरे पास है मेरा।
0: सबलू जी लिख रहे हैं चांदनी और मेरी तू चांदनी, जान बिना चश्मे के देखूं तो लगते हो आप शैतान।
5: हैं?
0: मतलब आपको बिना चश्मे के जब मैं देखता हूँ तो आप लगती हैं मुझे शैतान।
5: ऐसा क्यों?
0: अब इन सबलू से जाके पूछो हम क्या बता दें क्यों भाई। इनकी जो है रामलीला, ये वही जाने इनके मन में क्या है, इनकी मनसा क्या है। तो आकांक्षा जी चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मासूम सा है, हमारे बच्चों की तरीके से है, तो हम उसमें आपसे कुछ निवारण चाहेंगे। ठीक है
5: जी, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे
0: जी। तो हमें आप ये बताएं कि क्लास LKG UKG, ठीक है, LKG UKG के जो बच्चे होते हैं,
5: मैंने बस सुनते ही मेरी तो मतलब क्या बोलते हैं खटिया खड़ी हो जाना।
0: क्यों?
5: वो हो गई, क्योंकि बच्चों को संभालना अपने आप में जंग जीतने के बराबर होता है।
0: और मैं बता दूं कि मेरे घर पे भी जैसे कैंप लगता है या मैं लगाती हूँ या फिर कहीं पे भी, तो मैं LKG टू क्लास सेकेंड थर्ड तक ही बच्चों को लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना इन लोगों को हैंडल करने में बड़ा मजा आता है।
5: क्या बात है भाई। हाँ मुझे मालूम। हाँ। है वो जो टुटू टुटू कल के बोलते होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है,
0: बड़ा मजा आता है। तो हाँ। उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में उनकी तोतली बोली है। पर मेरा प्रश्न ये था कि LKG टू जितने भी बच्चे हैं, जब इनके एग्जाम्स आते हैं और इनकी ट्यूशन मैम जब इन्हें बहुत सारा वर्क दे देती हैं या फिर उनको एग्जाम्स में जो हम लोगों को सिलेबस दिया जाता है, तो बच्चों पे इतना बर्डन LKG टू UKG, क्या इतना बर्डन उन बच्चों के लिए पर्याप्त है जो, या फिर जो हम लोगों ने पढ़ाई की है, क्या हम लोग आज साक्षर नहीं है? आज का सिलेबस आपने देखा है LKG UKG का? मैंने देखा है, मतलब UKG तक उनको स्पेलिंग्स पूरी सिलेबस में दे दी जाती है।
5: माय गॉड।
0: और हम लोगों के टाइम पर क्या था,
5: छोटा बड़ा ज्यादा ही बड़ी बात होती। हाँ। थी फर्स्ट स्टैंडर्ड तक हमको, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने अपने दोस्तों से छपाई करते थे हम हिंदी वाला, इंग्लिश का तो आ जाता था A to Z। और अभी भी आप यकीन नहीं मानोगे, अगर रेंडमली किसी से आपने पूछ लिया
0: छोटा से
5: यहाँ तक बता दो तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैंने बड़े होकर सीख लिया।
0: मुझे आता है,
5: मुझे भी आता है।
0: बताओ,
5: छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा।
0: अब लग रहा है कि आज ये जो क्लास है, पापा मैं यार
5: लो से आज मैं बोलने ही नहीं दिया। नहीं, मैंने गलत नहीं किया, मैं अभी सही कर
0: रही हूं। मैं बताऊं, अगर लिसनर्स आपको सुनना है ना तो मेरी बात सुने, उसके बाद सुने। तो अब लग रहा है कि आज बच्चों की पाठशाला चल रही है, तो क से ज्ञा तक ये बताएंगी मैडम आज।
5: चलिए, क से ज्ञा तक बताना है।
0: बस क से ज्ञा तक।
5: कख गघ अंगा चच इया टठना तथना पापा मम्मा यार लवशा छत्रिज्ञा।
0: ये तो एक राइम हो गई, ये तो राइम हो गई भाई, गगा, ये तो राइम हो गई।
5: तो मैंने ऐसे ही याद किया था बचपन में।
0: क ख ग घ ण च छ ज झ ई आ त थ द, ऐसे ट ठ ड ऐसे बताया
5: जाता है। वो स्लो वाला आप बताइए, फास्ट वाला मेरा है।
0: हाँ, तो फास्ट में क्योंकि मिस्टेक्स होंगी ना, इसलिए है ना।
5: फास्ट में मिस्टेक नहीं होती है, मुझसे स्लो में होती है।
0: नेहा ने उसने क्या लिखा है कि मेरा बेटा तो नर्सरी में ही है और ठीक ठाक सिर्फ दो सब्जेक्ट में, बताइए आप, अब आप बताइए, थक जाता है सिर्फ दो सब्जेक्ट में। अब आप बताएं नेहा जी, मेरा कहना सही है कि नहीं है कि मतलब है। इतना ज्यादा सिलेबस दे देते हैं कि यूकेजी तक बताओ, वर्णमाला तो उनकी एलकेजी में है, एलकेजी में वर्णमाला खत्म ज्ञा तक,
5: और नहीं वो आजकल के मतलब शिक्षा पद्धति को लगता है कि बच्चे मम्मा के पेट से सीख के आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अभिमन्यु ने सीखा था, बस लास्ट वो चक्रव्यूह भेदन भूल जाते हैं, मतलब एग्जाम के टाइम पे एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं।
0: हाँ, और यूकेजी का सिलेबस ये है कि आप एप्पल की स्पेलिंग आ गई, बनाना स्पेलिंग आ गई, कैट मैट रैट आ गया, मतलब ये सारी जो स्पेलिंग्स हैं वो आपकी उसमें यूकेजी में आ जाती है।
5: हमको कोई क्या ही स्कूल से निकालेगा, हम खुद ही रिजाइन दे देते हैं स्कूल में होते तो।
0: नहीं, स्कूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हाँ। ये बात हो रही है कि कितना ज्यादा बर्डन बच्चों पे एग्जाम्स के टाइम पे आता है। भाई चलो वैसे तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा जो बर्डन हो जाता है तो क्या ये सही है?
5: बिल्कुल नहीं सही है।
0: तो इसका उपचार क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए?
5: ये तो भाई मुझे फिर से अपने बचपन में जाना पड़ेगा।
0: आपको थोड़ी कह रही हूँ कि आपको हैंडल करना है, आज के बच्चों को हैंडल कैसे करना चाहिए, या तो उनके पेरेंट्स के लिए कोई टिप्स की क्या होना चाहिए?
5: ऐसे अमेजिंग वाले सवाल के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है मैडम, आप पहले पूछ लेती तो अच्छा था। मेरा दिमाग जो है ना वो गुल हो गया, बत्ती गुल।
0: मैं बताती हूँ, एग्जाम्स के टाइम में हम उन पेरेंट्स को केवल यही बताना चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो आप उन्हें ना खेल खेल में पढ़ाए।
5: हाँ,
0: पूछिए कैसे,
5: किंडर गार्डन पद्धति में भी यही कहा गया था। मैंने हाँ। जस्ट सोचा था, मैंने बोला ना कि मेरा दिमाग थोड़ा सा वीक है, मैं भूल जाती हूँ, तो जो
0: बादाम कौन खाता है ज्यादा?
5: नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ।
0: हाँ।
5: मैंने बचपन से आज तक नहीं खाया, मेरी मम्मी बोलती थी बहुत महंगा होता है, ड्राई फ्रूट मत खाओ, खाने ये तो मूंगफली खाओ। जब मैंने मूंगफली खाया मेरा हाजमा खराब, जब मैंने पानी बताशा खाया दोस्तों ने कहा पानी बताशा बहुत टेस्टी है, मेरा हाजमा खराब। मैंने कुछ और खाने की सोची, मैंने सोचा कि हाजमे के साथ में बिल भी खराब हो जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस खराब हो जाना है, मैंने सब खाना ही छोड़ दिया।
0: नहीं तो क्या बताशा खाने से क्या बुद्धि तेज होती है?
5: जबान तेज होती है, उसमें हरी मिर्चें होती है ना,
0: हद है। मतलब अगर बताशे खाने से जबान तेज होती है, बुद्धि तेज होती है, तो हमसे ज्यादा बुद्धि और जबान किसकी होती तेज?
5: बिल्कुल नहीं, और आपसे ज्यादा किसी की तेज है भी नहीं। देखिए मेरा दिमाग जहाँ बंद हो गया आपने जवाब दिया, अब साक्षात प्रमाण है इस बात का, हमारे लिसनर्स भी मान ही
0: बात को घुमाना तो कोई इनसे सीखे। है ना, तो खेल खेल में लर्न टू प्ले, मतलब ऐसा होना चाहिए कि प्ले टू लर्न होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ना बच्चे जो है वो सबसे छोटे बच्चे वो होते हैं, और उन्हें हमें डांट करके उन्हें धमका करके पढ़ाने के बजाय हमें उन्हें प्यार से सिखा मतलब खेल खेल में होना चाहिए। अगर आप उन्हें खाना खिलाते हैं तो आप खुद सोचिए कि कितना आपको दौड़ना पड़ता है ना, बेटा एक बाइट ले लो एक। आप खाना खाते समय भी उसको उन बच्चों को एग्जाम की प्रिपरेशन करा सकते हैं। पूछो कैसे?
5: कैसे?
0: आप बाइट्स कर लो, मतलब आप रोटी खिला रहे हैं तो आप बाइट तोड़ के रख लो पहले, ठीक है? तो आप उनसे पूछो बेटा कितनी बाइट्स देखो रखी हुई हैं, तो काउंटिंग उसी में आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8।
5: क्या बात है, और उनको फिर जो वाली डिजिट पसंद होगी वो वाली वो पहले खाएंगे,
0: वो पहले खा लेगा, ठीक है? इससे आपके दो काम हो गए। पूछो क्या,
5: हम भी के लिए तैयार हो रहे हैं, भावी भविष्य में बुआ बन गए ना आजकल, भावी भविष्य की तैयारी हो रही है हमारी।
0: तो हमें तो आपके भविष्य, मुझे तो आपका भविष्य दिख रहा है।
5: नहीं उतना दूर है, काफी दूर है वो,
0: मुझे आपका भविष्य दिखने लगा,
5: वो काफी दूर है।
0: एक लिसनर है मुरलीधरन, आई थिंक वो लिख रहे हैं कि आरजे आकांक्षा को क ख ग नहीं आता है।
5: नहीं तो मुझे काखा गाघा अंगा चाचा जाझा इया टाठा डाढ़ा ना ताथा दाधा माँ पाफा बाबा माँ या नहीं नहीं ताथा दाधा क्या होता है, पाफा बाबा माँ यार लावा शाह चाखा हा छत्र
0: कहाँ से आ गया इसमें?
5: ए, मैं बोली नहीं, मेरा स्लो स्पीड में गलत हो जाएगा, मैं फास्ट स्पीड ही बोल पाती हूँ।
0: हाँ।
5: नहीं आता है मुझे, नहीं आता है। आज ऑन एयर बैठ के घोषणा कर दीजिए, कार्य आकांक्षा को काखा गागन नहीं आता है।
0: वाह बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ही बढ़िया। एबीसीडी आती है?
5: एबीसीडी एबीसीडी भी बोल के ट्राई करना पड़ेगा।
0: बोलो जरा,
5: ए बी सी डी आगे क्या है? ABCD, बड़की दीदी। हाँ।
0: सारे लिसनर्स ये प्रमाणित हो गया है कि आरजे आकांक्षा साक्षर नहीं है, ये सिर्फ ही के बेस पर यहाँ पर आ गई है। ये साक्षरता जो मिशन था
5: आता है, देखिए
0: ABCD बड़की दीदी लाओ कथरिया जल्दी सीधी। देखो इतना जो जरूरी वाला काम है मुझे
6: सारे हिंदी के पार्ट तो कपिल सिंबल ही खा गए, अब उसमें बचा क्या पश्चिमी सब बता। सही बात है, आड़ा भूल गई, अड़ा भूल गई। देखो लिख रहा है,
0: मैं तो सब भूल गई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं अपना नाम पता भी भूल गई।
6: चलिए तो नेहा जी लिख रही है, आइए हम सिखा दें क ख घ घ। कोई बात नहीं नेहा जी, इनको तो मैं ही सिखा दूंगी। अब कल से सबसे पहले जब हम बच्चों की क्लास लेते हैं ना घर पे, तो आकांक्षा जी मेरे घर आएंगी और इनको मैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला मैं इन्हें सिखाऊंगी जरूर।
0: इसी बहाने मुझे नया वाला स्लेट मिल जाएगा और चॉक का एक डब्बा।
6: नहीं, हम आपको पेंसिल और कॉपी देंगे। थोड़ा सा जो है वो शिक्षा नीति बदली है, तो आपको हम बिल्कुल LKG में नहीं एडमिशन देंगे, हम UKG में देंगे। UKG में पेंसिल है,
0: हमने बोला है ना जहाँ हमारे मन के मुताबिक पढ़ाई नहीं होती हम इस्तीफा दे देते हैं।
6: कल ही आते हैं स्टूडियो आपकी क्लास लेने, नहीं यहाँ कह रही है ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। पहले हम देख तो ले, आप बच्ची हैं, बड़ी हुई हमारी जैसी बच्ची होंगी तो आप भी हमारी तरह काका काका नहीं जानती होंगी, बड़ी होंगी तो फिर आपकी जिंदगी और वही उलझने।
6: तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक यही है कि बच्चों का सिलेबस जो है, मैं उन सभी स्कूलों के पेरेंट्स जो भी स्कूल के हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि एटलीस्ट जो है वो LKG टू UKG बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा कम करें, ताकि बच्चों का बचपन जो है वो पढ़ाई में ही कहीं गुम ना हो जाए। क्योंकि हम लोग के टाइम पर देखो इतना कम सिलेबस होता था, तो क्या हम लोग क्या कहते हैं 90s किड्स हैं, तो क्या आज कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आज कहीं वो मतलब सक्सेस नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ और अगर सिलेबस है तो उन पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि खेल खेल में पढ़ाई करवाएं, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें धमकाएं नहीं, उन्हें उनकी जिंदगी यानी बचपन उन्हें खेलने दें, जीने दें, उनका बचपन खोने ना दें।
0: बचपन खोने ना दें, जैसे मैंने अभी तक नहीं खोया है, मुझे A से Z तक नहीं आता,
6: तो ये तो बचपन में ही है ना, अब प्रूफ हो गया ये बचपन में ही है, है ना।
0: हाँ ये हुई ना बात, मेरे मन की हुई, इसी बात पे मैं आपको चॉकलेट खिलाना चाहती लेकिन उधारी।
6: नहीं, हम लेके खा लेंगे, तुम पैसे दे देना, ठीक है?
0: ठीक है,
6: चलो तो मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे एक स्टोरी टाइम, यानी स्टोरी आज की मॉरल स्टोरी बहुत ही अच्छी वाली है, जो कि सुनाएंगी आपको RJ आकांक्षा। तो स्टोरी हम उनके मुंह से सुनेंगे,
0: आज तो हम स्टोरी सुना ही देंगे,
6: ठीक है जी। अच्छी वाली स्टोरी है,
0: अच्छी वाली।
6: तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और प्यारा सा गाना सुनते हैं, और आते हैं बच एक छोटू से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। अच्छा गाना है ना,

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट आज की मॉरल स्टोरी को लेते हैं, एंड जल्दी वाली मॉरल स्टोरी।
2: तो आज की मॉरल स्टोरी कुछ यूं है कि एक बार की बात है, एक राजा के पास दो पालतू तोते थे। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनका स्वभाव जमीन आसमान की तरह अलग था। एक दिन एक साधु उस राज्य से गुजर रहे थे। उन्होंने पहले तोते को एक शिकारी की झोपड़ी के बाहर देखा। जैसे ही साधु वहां पहुंचे, तोता चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, इसे लूट लो, इसके पास बहुत सारा कीमती सामान है। साधु वहां से जान बचाकर भागा और कुछ दूर जंगल में एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां दूसरा तोता पेड़ पर बैठा था। साधु को देखते ही वह बहुत ही मधुर आवाज में बोला, प्रणाम महात्मा, आपका स्वागत है, कृपया अंदर पधारिए और थोड़ा विश्राम कीजिए। असली और इस तरह से साधु हैरान रह गया कि एक ही प्रजाति की दो पक्षियों में इतना अंतर कैसे। उन्होंने आश्रम के गुरु से इसका कारण पूछा। गुरु मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसमें तोते का दोष नहीं है, ये सब है संगति का असर।
1: ओके।
2: और हमारे आज की इस कहानी का अगर मैं शीर्षक बोलूं तो वो भी यही है कि संगति का असर। तो पहला तोता चोर डाकुओं के बीच में पला बड़ा है, इसलिए उसकी भाषा व्यवहार उन्होंने वैसे ही सीख ली। और दूसरा तोता चूंकि ऋषियों और संतों के बीच रहा, इसलिए विनम्र और शालीन बन गया। तो इस कहानी से बस इतनी ही मॉरल निकलती है कि हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारी पहचान हमारी संगति से होती है। आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल। तो भाई, इस मॉरल स्टोरी से हमें आज यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हम वैसे ढलने लगते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनने लगते हैं। तो भाई, अपनी सोच को भी बनाएं बेहतर और अपने माहौल को भी बनाएं बेहतर। ये तो बात मुझे किसी और ने भी कही थी आकांक्षा, कि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, वैसे हम बनने लगते हैं।
2: बिल्कुल। तो, और अगर आप नहीं भी बनते ना, तो वो लोग आपको विवश कर देते हैं।
1: तो चलिए, हम लोगों को दें इजाजत और हम मिलेंगे हम आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
3: आपके अपने शहर गोंडा में श्री जगजीवन प्रसाद पांडे व श्रीमती केवलपति पांडे जी के सौजन्य से परम पूज्य संत श्री रविशंकर जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री लड्डू गोपाल पूजन का आयोजन 10 मार्च से 17 मार्च शाम 6 बजे से 8 बजे तक किया जा रहा है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
6: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
8: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
7: और जेंट्स के लिए?
8: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
7: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
8: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ, यानी कि आज की पहली मुलाकात हमारी और आपकी होती है। और इस मुलाकात से पहले मैं मुलाकात करके आई हूँ आज के मौसम से। मौसम इतना खूबसूरत है कि भाई कहीं ना कहीं सफर पे निकलने का मन हो रहा है, और मन हो रहा है कि काश किसी के साथ में एक कॉफी हो जाए, और हाँ अगर कोई रूठा हो तो उसको मना लिया जाए। कैसे? हाँ, अपनी पुरानी यादों से, पिटारे से कुछ खास निकाल के। तो भाई मैं भी लेके आई हूँ अपने यादों के पिटारे से कुछ खास, तो चलिए आपसे साझा कर देते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, यानी कि फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। उससे पहले वो लाइनें, और चूंकि मौसम देखा तो मौसम से मुझे कुछ याद आया। हम अपने अपनों से नाराज हो जाते हैं ना कई दफा, और कई दफा कुछ हमें छोड़ के भी चले जाते हैं। तो उन छोड़ के चले जाने वालों के लिए अगर आपकी कभी उनसे दोबारा से मुलाकात हो तो कैसी मुलाकात होनी चाहिए, आई जानी मेरे हिसाब से। हाँ जी, तो अगर तुम्हें एक मौका मिले उससे मिलने का, अगर तुम्हें एक मौका मिले उससे मिलने का, प्यारी बात है ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें एक मौका मिले उससे मिलने का, प्यारी बात है ध्यान से सुनना, कुछ ना कहना बस चुप रहना, और उसे दिल भर के देखना, उसने तुम्हें कितना तोड़ा, किस हालात में कैसा छोड़ा, अपने इन सवालों की किताब बंद रखना। हाँ जी, बंद रखना है, पूछना नहीं है, ना ही कोई बात करना है, बस सुनते जाइए क्या क्या करना है। अगर कोई आपका आपसे बिछड़ के चला गया हो, और बाय द वे कभी उससे आप रابطہ रख पा रहे हैं किसी मुलाकात में, तो बस इन चंद लाइनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके अपनी आरजी आकांक्षा की सीख समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। तो हाँ चलते हैं, अगर आपकी उससे मुलाकात होती है तो क्या करना है आपको, उसने तुम्हें कितना तोड़ा, किस हालात में कैसे छोड़ा, अपने इन सवालों की किताब बंद रखना, और उसकी आंखों में खुद को देखना, वो सामने होगी तुम्हारे, नसीब वाले हो पलक नहीं मारना, वो सामने होगी तुम्हारे, नसीब वाले हो पलक नहीं मारना, उसका साया अपने साए पर लेना, और उसके होने का एहसास महसूस करना, और सबसे ज़रूरी बात, जिस तरफ की हवा हो उसकी उल्टी तरफ बैठना, ताकि जो हवा तुम तक आए वो उसे छूकर तुम तक आए, पर इस बार जब वो जा रही हो, तो अपनी आँखें बंद रखना, खुली आँखों से उसे जाता हुआ देखोगे, मैं जानती हूँ दिल बहुत कमज़ोर है, आवाज़ दे बैठोगे, खुली आँखों से उसे जाता हुआ देख नहीं पाओगे, मैं जानती हूँ दिल बहुत कमज़ोर है, एक और बार उसे दिल दे बैठोगे, तो इस मुलाकात को ख्वाब समझना, और आँखें बंद करके इसे रोज़ देखना और महसूस करना। उम्मीद है कि अगर नेक्स्ट आप किसी से ऐसे वाले मौसम में मुलाकात करेंगे तो मेरा दिया हुआ ये ज्ञान ज़रूर अपनाएंगे। फिलहाल चलते हैं, शो की स्टार्टिंग हो गई है, और वक्त की अगर बात करें तो स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 3:11 हो गए हैं, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और शो वही आपका पसंदीदा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा, और इसमें फरमाइशों की कतारें भी लग गई हैं। तो चलिए ट्यून कर देते हैं आज की सबसे पहले डिमांड, जो कि आई हुई है मुंबई बोरेवली से, यानी हमारे सामरे बलन जी उर्फ सबलू सावन जी की, नहीं सबलू सावन जी उर्फ सामरे बलन जी की। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को 3-4 के सफर में, बने रहिए।

वैसे आज के मौसम के अकॉर्डिंग जो स्टार्टअप लिया है हमने इस नगमे से बखूबी फिट बैठ रहा है। कितना खूबसूरत सा सॉन्ग है और उदित नारायण जी और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं आपके अपने शो जी हाँ कॉलर ट्यून गोंडा को। और ये डिमांड हमारे सभी सावंत जी की, अगर आपको भी अपनी डिमांड करनी है भाई, मौसम बड़ा आशिकाना हुआ पड़ा है और आपने अगर ये गाना ट्यून नहीं करवाया तो फिर क्या ही करवाया जनाब। तो नंबर वही है 6393316429, जल्दी से फोन मिलाइए और अपने गानों को ट्यून करवाइए। एक बार फिर से 6393316429।

गाना था, मजा आ गया। व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग, और सुन के तो भाई आत्मा तृप्त हो गई। और हमने कहा इस मौसम पे सूटेड सॉन्ग है, और इसको पूरा प्ले हो जाने देते हैं। फिलहाल अब बढ़ेंगे इस सफर के दूसरे सॉन्ग की ओर, और जो डिमांड आई हुई हमारे पास में अमित कुमार जी की ओर से। उम्मीद है आपका सॉन्ग यही होने वाला है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, दो चार गानों में डाउट हो रहा था। और हमारे प्यारे लिसनर जब डिमांड करते हैं ना, तो अंतरे से भी उठा के कोई भी लाइन मार देते हैं, और फिर उसको खोजने में हमारी क्या बोलूँ, याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हमें लगने लगती है। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे की ओर, और एक गाना बड़ा ही खूबसूरत है, और अगर आपका डिमांडेड नहीं होगा तो भी मान लीजिएगा आप ही ने डिमांड किया। गाना बड़ा प्यारा है, रानी तू मैं राजा। एंजॉय द ट्रैक। 3 से 4 के सफर में मैं आपकी हूँ दोस्त आरजे आकांक्षा।

हाँ जी, तो कहीं ना कहीं शादियों का सीजन चल रहा है और स्वयंवर रचाना तो बनता है बॉस। अगर अभी तक नहीं रचाया हमारी तरह तो रचा लीजिएगा भाई। मैं तो ढूंढ रही हूँ मेरे पापा जी का दामाद, उन्हें मिल नहीं रहा है। जिस दिन मिल जाएगा कंफर्मेशन करती हूँ, उसी दिन मैं विवाह रचा लूंगी। प्लान बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं, हमारे मुंबई के गोरी छोरी यानी कि रिजू जी की। और आज देखते हैं इन्होंने कौन सी बीट दे दी है और क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि भाई जब बात आती है पंजाबी बीट्स की तो भाई बिना थिरकन के आपका मन तन और हर एक जगह से आप थिरकन करने लगते हैं। देखते हैं आज क्या लेके आए हैं ये और कौन सा तड़का मारने वाले हैं शो। जी हाँ, कॉल एट इन गोंडा में। एंजॉय द ट्रैक।

क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रहा और इसको हमने अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लिया। भाई आपकी प्लेलिस्ट हो या हमारी, हम दोनों की एक ही जैसी होती है। भाई रिजु जी की पसंद अमूमन मेरी पसंद होती, मुझे ऐसा मैं कभी कह ही नहीं सकती कि इनकी पसंद मेरी पसंद है नहीं। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर एंड थैंक्स अ लॉट रिजु जी एक बार फिर से। और अभी बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिमांड की ओर। डिमांड है हमारे अंबर गोयल जी की, बड़े दिनों बाद आए हैं और इसलिए चलिए इन्होंने बोला है कि आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग बजाइए। तो भाई चूंकि पंजाबी बीट्स की जब बात आती है तो दिल दिमाग वैसे तो मैंने बोला था थिरकने लगता है, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने के बाद बड़ा ही सूदी और बड़ा ही रोमांटिक सा मन हो गया है। और जिस हिसाब से रोमांस वाला मौसम भी है तो मेरी प्लेलिस्ट का अगर हमारे गोयल जी ने कहा है कि आप अपनी पसंद का कोई गाना आपकी अपनी प्लेलिस्ट से बजाइए, तो फिर मैं आपके लिए खास अपनी पसंद का ये सॉन्ग प्ले करती हूँ। बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। 3 से 4 के सफर में मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त आर्य आकांक्षा और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 99.6 FM हुंडा शहर।

हाँ जी, तो उम्मीद है कि हमारे गर्ल्स आपको हमारे कलेक्शन से ये सॉन्ग जरूर पसंद आएगा। और चूंकि मैंने पंजाबी सॉन्ग सुना था, मेरा मन किया कि मैं यही सॉन्ग ट्यून करती हूँ। फीडबैक जरूर मिलेगा, उम्मीद है। लेकिन अभी हम चलेंगे सावन की झूलों की ओर, और ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे अब्दुल कलाम जी का कहना है। भैया, भले ही चढ़ा है जेठ का मौसम, कल मुझसे मेरे प्यारे किसी लिसनर ने पूछा भी था कि ये जेठ का मौसम है या फिर सावन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो धर्मेंद्र मोहन जी ने ही पूछा था। और तो चलिए, फिलहाल मुझे नहीं पता कौन सा मौसम है, लेकिन मौसम बड़ा औसम है, और इस औसम वाले मौसम में ये, हाँ जी, डिमांड है हमारे अब्दुल कलाम जी की। आइए आप भी एंजॉय करिए, हम भी करते हैं 3 से 4 के सफर में इस गाने को एंजॉय।

जी, तो सावन के झूलों ने तो बुलाया किसी ना किसी को, और पता नहीं सावन का झूला अभी तक पड़ा या नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन बचपने की बारी हो और जब नानी ननिहाल की बात हो तो झूले बिल्कुल याद आ जाते हैं, और ऐसे नगमों से तो वो यादें ताज़ा हो जाया करती हैं। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली सॉन्ग की ओर, क्योंकि वक्त की अगर मैं बात करूँ तो 3:29 हो गए हैं बाय स्टूडियो क्लॉक, और शेष मेरे पास में है 31 मिनट। डिमांड्स हमेशा की तरह ढेर सारी आप सभी की प्यारी प्यारी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये जो नेक्स्ट डिमांड है हमारे रितेश जी की है, और रितेश जी कई दफ़ा इस गाने को सुन चुके हैं, लेकिन अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते हैं आज फिर से, थोड़े से सैड सैड मौसम में मुझे लग रहा है। बट मौसम इतना ऐसे में आप सैड क्यों हैं मुझे पता नहीं, बस दुआ करूंगी अगर वाकई आप सैड हैं तो अच्छे हो जाएं, और अगर बस सुनने के लिए ट्यून करवाया तो फिर हम भी सुनते हैं इस सॉन्ग को रितेश जी की डिमांड पर।

बेशक समय ही सबसे बलवान है इस दुनिया में। लोग सोचते हैं कि इंसान पहलवान है और जो पैसा है वो सबसे बड़ा बलवान है, लेकिन नहीं, वाकई यकीन मानिए समय ही सबसे बड़ा बलवान है, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। और हमें लगता है अगर हम अच्छे स्थिति में तो हमेशा अच्छे रहेंगे, नहीं, और अगर हम बुरे स्थिति में तो हमेशा ये दिन अभी ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं है, बदलता रहता है, इसीलिए वो बलवान माना जाता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोग के मैसेजेस की ओर। जी हाँ, हमारे बीच में मौजूद हैं मनी शर्मा जी, जी हाँ, और इसके बाद में रिजु जी हैं और सबलू सामंत जी मुंबई बोरीवली से। लिखते हैं, जब हम उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, ओके, जब हम उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, उनकी माँ ने खोला दरवाज़ा, हम घबरा कर बोले आंटी बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो। क्या बात है, वाह, बहुत ही प्यारा सा जोक था भाई, मज़ा आ गया। और प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, राधे राधे आपको भी। नेहा जी आ गई हैं बहराइच से, आज माई मंगू जी हैं, चंगू जी गायब हैं, खैर कोई बात नहीं है, इनकी जोड़ी अधूरी रह जाती है, इस बात का मुझे थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मशरूफ़ होंगी अपने किसी काम में। और एक बार फिर से नमस्कार बोला इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद में मुथैया मुरलीधरन जी हमारे बीच में हैं, लिखते हैं, नमस्कार आरजे आकांक्षा, नमस्कार आपको भी। और आपको पता है कि हमको वर्णमाला अच्छे से नहीं आती है, और ये बात खाली हमारे मुथैया मुरलीधरन जी ही जानते हैं, थैंक यू। और सबलू जी ही फिर से लिखते हैं, अरे होता है जिनको सच्चा प्यार, उनकी किताबों में गुलाब का फूल मिलेगा, सूख गया है गुलाब का फूल, फिर भी प्यार आज भी दिल में ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा है, कोई आता है और अगर दिल में बस जाता है तो भले ही वो चला जाए, बट उसकी यादें, उसकी सीख, उसकी प्यारी प्यारी यादें सब कुछ बरकरार रहती हैं। और इसी बीच में हाँ जी, प्रबल जी ने भी बोल दिया, भैया समय बहुत बलवान है, बिल्कुल, बट आपसे थोड़ा सा कम मुझे दिखता है, खैर। और कमल नैन जी हैं जिनको ये गाना काफ़ी पसंद आया है, फीडबैक देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून आपको भी कमल नैन जी। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट साइड की ओर, जो कि आई हुई है हम तक, मोहम्मद तौफील जी हैं शायद, और इन्होंने पूछा आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बोल रहा हूँ रामपुर भवानीपुर बाराबंकी से, और मुझे एक फरमाइश सुननी है। तो फिलहाल वैसे तो ये कॉलिंस मतलब शो है, बट आप हमारे नए लिसनर हैं और आज आपने पहली दफ़ा मतलब हमें मैसेज किया है, तो आज हम पहली दफ़ा आपका सॉन्ग प्ले किए दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप जब कॉल करेंगे तभी आपका सॉन्ग ट्यून होगा, अदरवाइज नहीं। फिलहाल गाना भी बहुत खूबसूरत है, आइए सुनते हैं ये सॉन्ग, बहुत ही प्यारी सी सॉन्ग और आप सभी को पसंद आने वाला है, और मूवी का नाम है हमको तुमसे प्यार है। आइए एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को, और फिल्माया गया है अमीषा पटेल और अर्जुन रामपाल जी पर, और गाना क्या है, शादियों का सीजन चल रहा है भाई, और कहीं ना कहीं दिल टूटे आशिक भी उसमें से मिलेंगे, और अगर आपका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है तो थोड़ा संभल के सुनिएगा, लेकिन गाना वाकई बहुत खूबसूरत है। आई एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, 3 से 4 के सफर में आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पे, मैं हूं आपके होस्ट दोस्त आरजे आकांक्षा, और शो चल रहा है आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा।

हाँ जी, तो ये गाना अभी आपने एंजॉय किया, मोहम्मद तौफीक शायद उनका नाम था, और ये हमें सुना है बाराबंकी से, भवानीपुर से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले अब्दुल मुजीम जी हमसे जुड़ गए हैं और लिखते हैं, हर वक्त मुस्कुराना अच्छा है। बेशक, बिल्कुल सही बात कही है आपने। चाहे वो गम हो, दर्द हो, दुख हो, कैसा भी वक्त हो, अगर आप मुस्कुरा लेते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपका जो, चूंकि मुस्कुराने का अगर साइंटिफिक रीज़न बोलूँ तो उससे आपके मेंटल को, आपके माइंड को एक रिलीफ मिलती है। तो उसको जब एक बूस्ट अप हो जाता है वो, तो फिर वो अच्छे से काम करने लगता है और आपका दिल दिमाग एक बैलेंस क्रिएट कर पाता है चीज़ों में। तो इसलिए मुस्कुराना ज़रूरी है, बिल्कुल बेशक। और प्रबल जी का कहना, समय बलवान होता है, कमज़ोर हैं अगर आप, तो ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप बलवान हैं या कमज़ोर, ये आपके मनोभाव पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर दिल टूटता है तो आवाज़ कौन सी होती है भाई, इनको कोई बता दे, हमको तो नहीं पता है। और हमें लग रहा है कि बिल्कुल कमल नयन जी ने जवाब भी दे दिया है, जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती है, महसूस होता है। सही जवाब है, बिल्कुल खामोशी वाली आवाज़ होती है, जो कहीं से भी आवाज़ तो नहीं आती, बट महसूस जो है वो काफ़ी अंदर तक जाके हो जाती है। धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवाज़ बिकॉज कॉलोनी से, दिल ना लगाना दिलदार सारे झूठे हैं। ओ माय गॉड, भैया यहाँ पे सब दिल तोड़ू आशिक बैठे हुए हैं। फिलहाल बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, रीना शर्मा जी की है, जो हमें सुनती हैं रुड़की उत्तराखंड से। आइए वहाँ की वादियों से राबता हो गया आजकल हमारे गोंडा के वादियों का भी, क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो भी औसम है, और औसम ऐसा है कि भैया रजाई की ज़रूरत पड़ रही है, और एसी सारे बंद हैं, और 24 डिग्री सेल्सियस समझ सकते हैं ना, वो वाला तापमान जो एसी का होता है गर्मियों के दिन में, वो वाला तापमान चल रहा है। तो बलाल उत्तराखंड और गोंडा एक जैसा हो गया, इसलिए हम एक कर देते हैं इस सॉन्ग से आपका मूड भी सेम ऐसा जैसे हमारे रीना शर्मा जी का हो रखा है। जी हाँ, स्टे ट्यून्ड।

सुना दो, रीना शर्मा जी की डिमांड पे आपने उत्तराखंड की वादियों के साथ में गोंडा की वादियों को ये कर दिया। मतलब इस प्यारे से रोमांटिक वाले सॉन्ग को एंजॉय कर लिया रोमांटिक वाले मौसम के साथ में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड होस्ट आज आकांक्षा और आप ने ट्यून करके रखो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन को। और इसी रफ्तार के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। रफ्तार इसलिए मैंने बढ़ा ली है क्योंकि भैया वक्त अपने पास में बहुत कम बचा है और डिमांड हर दिन की तरह वही ढेर सारी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है हमारे रमेश कुमार जी की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं और इनका सॉन्ग भी जाहिर सी बात है कि मुझे कंफ्यूजन हुआ है फिर से तीन चार खाली आप लोगों ने दो शब्द बताए हैं और उम्मीद है कि मैं जो गाना ट्यून करने वाली हूँ वो आपकी पसंद का ही होगा। चलिए सुनते हैं इस गाने को कि क्या गाने के बोल हैं। आशा भोसले जी की आवाज़, शान मूवी और शान पट्टी नहीं दिखाने का, केवल सुनते जाने का। आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा को।

तो जिंदगी हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

भाई प्यार करने वाले जो है ना वो जीते भी हैं शान से, मरते भी हैं शान से और दूसरों को सिखा भी देते हैं जीना शान से। एंजॉय द ट्रैक भाई, ये डिमांड है हमारे रितेश जी की, नहीं रमेश कुमार जी की। और उसके बाद हम आएंगे धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग के साथ में, फिर होंगे हमारे प्रबल मिश्रा जुड़ पंडित जी, उसके बाद में होंगे राजेश जी कौड़िया बाजार से। और इन्होंने क्या भेजा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, आज हमारे एडिटर साहिबा ने थोड़ी सी गलती से कॉल्स उठाई या फिर आप लोगों ने ऐसे ऐसे बताया ही उन्हें। चलिए शो के बाद में उनसे निपट लूंगी। और उसके बाद होंगे हमारे अक्षय त्रिपाठी जी, फिर होंगे हमारे अविरल त्रिपाठी जी गायत्रीपुरम से, और इनका सॉन्ग है मनी मनी मनी। अगर मनी जी सुन रहे हो तो इनका कहीं ना कहीं फेवरेट सॉन्ग है, मैं जानती हूँ। फिलहाल ये सॉन्ग

0: क्या बात है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से सुनने वाले सभी लिसनर्स के नाम ये बतौरे पैगाम सॉन्ग, कारण ये है भाई वहां से हमारे चिंटू जी भी हैं और चिंटू जी भी बिल्कुल वैसे ही जैसे ये गाना है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।
1: समझो हम बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा न

0: अरे एक दिन हम गए जंगल मा, हर एक दिन हम गए जंगल मा, वहाँ मिल गए हम का डाकू, ससुरा मिल गए हम का डाकू, किसी के हाथ में परछा भाला, किसी के हाथ में चाकू, हाँ किसी के हाथ में चाकू। हमने पूछा, अरे हमने पूछा कितने हो तुम, तब वो बोले दस।
1: हम कहा बस, का कहा बस,
0: ऐसा हाथ जमाया तो गज धरती माँ गए धस धस धस। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। ओ बाबू बड़े,
2: बिल्कुल आप हैं बड़े काम की चीज, हम जानते हैं आप बड़े काम की चीज हैं, और इसीलिए अब हम काम निकाल के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास में, और हम कोई भी गाना हो बड़े दिल से प्ले करते हैं जनाब, और दिल से सुनना भी पसंद करते हैं। चलिए फिलहाल इस दिल की धड़कन को और बढ़ाते हैं इस पागलपन वाले गाने के साथ में। भाई गाना बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्यारा है, फिल्माया गया मिथुन दा पर और मधु जी पर, और आवाज से सजाए से कविता कृष्णमूर्ति जी और कुमार सानू जी ने। भाई बीट ही आपको पता चली होगी कितना प्यारा सा गाना है, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। हाँ जी, आइए सुनते हैं आपके साथ इस गाने को प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी की डिमांड पर।

राजेश जी की डिमांड, उसके बाद होंगे अक्षय त्रिपाठी जी और फिर अविलल त्रिपाठी जी, मैं गायत्रीपुरम से सुने, फिर सुरेश कुमार जी की डिमांड है हमारे पास में, अनन्या पांडे जी की डिमांड है और नेहा जी की भी डिमांड आई हुई है, लेकिन अगर वक्त रहा तो ही ट्यून कर पाऊंगी इतनी सारी डिमांड को, बस मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आइए एंजॉय करते इस ट्रैक को।

आपने पहले नंबर पे डिमांड की होती, आज आप थोड़े से चूक गए, मुझे लगता है आप कहीं पे बिजी थे। और गाना इतना पागल नहीं, गाना इतना प्यारा है जिसका कोई जवाब नहीं, और आप सभी पागल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी का कहना है आकांक्षा जी हम भी पागल तुम भी पागल, ऐसा नेहा जी का कहना है, धर्मेंद्र मोहन जी का भी सेम कहना है हम भी पागल तुम भी पागल, और यहाँ तक के हमारे कमल नयन जी का भी कहना है मैं पागल नहीं हूँ पागल बनाया गया हूँ। और मैं कहूंगी मैं पागल नहीं हूं भैया, मेरा दिमाग खराब है। चलिए इस खराबी को सुधारते हैं, नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में बढ़ते हैं आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा में। ये डिमांड हमारे अक्षय त्रिपाठी जी की।

पकड़ के एक सॉन्ग्स, और इसी बीच में पधार चुके हमारे विकास तिवारी जी, और नाउ से कह रहे हेलो आकांक्षा मैम, हम भी आ गए हैं, बहुत देर से आए हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, आ गए ना, इतना काफी है जनाब। तो आप भी थोड़ा ठुमके लगा लीजिए हमारे साथ में, जैसे हम नाच रहे हैं बैठे बैठे।

शहर दिया हो या गांव दिया हो, लेकिन ये गाना बड़ा ही जबरदस्त था और हमने थोड़े से ठुमके भी लगा ली बैठे बैठे। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। इससे पहले कि गाड़ी की रफ्तार से तेर यानी फ्लून जो है वो कम हो जाए, मतलब कि समय हमारे यहाँ से निकल जाए, बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और डिमांड है हमारे अक्षय त्रिपाठी जी की। अभी आपने एंजॉय किया राजेश जी की डिमांड को, और चलिए फिर सुनते हैं शादियों के सीजन में लड़कियों का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग।

भाई ये मूवी क्या ही मूवी है, मस्त मूवी है, दमदार मूवी है, झक्कास मूवी है बोले तो। और हाँ जी, ये डिमांड भी उतनी ही प्यारी है और सभी की डिमांड मौसम से भी ऊपर होती है, क्योंकि क्षमा बांध देती मौसम के साथ में आपका दिल और दिमाग हिला के रख देती है। और हाँ जी, इसके बाद जो डिमांड होगी होगी हमारे अविरल त्रिपाठी जी की गायत्रीपुरम से, और उसके बाद हमारे सुरेश जी की आज की मे बी लास्ट डिमांड हो, और माफी होगी हमारी अन्या पांडे जी से, और साथ ही साथ में हमारी मंगू जी यानी नेहा जी से। फिलहाल ये गाना हाय।

सजना। हाँ जी, और ये शादियों के सीजन में बहुत दफा प्ले होता है और कई दफा तो पार्टी में भी होता है, क्योंकि लड़कियां इस पे नाचना बहुत पसंद करती है ना, जाने क्यों मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये हमारे मनीष शर्मा जी का, हाँ जी, सिग्नेचर सॉन्ग है और डिमांड की है इसकी हमारी अविरल त्रिपाठी जी ने, गायत्री पुरम गुंडा।

सिग्नेचर सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया हमारे अविरल त्रिपाठी जी की डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं गायत्री पुराम गोंडा से। और हमारे बीच में दर्शक दे चुके हैं हमारे रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी, और काफी दिनों बाद आपके दीदार हुए हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब यहाँ से मेरा जाने का भी वक्त हो चला है, और मैं माफी चाहूंगी अपने आन्या पांडे जी से और नेहा जी से। भाई आपका सॉन्ग मैं नहीं ट्यून कर पाऊंगी वक्त की कमी की वजह से। और आज की लास्ट डिमांड हमारे सुरेश कुमार जी की चौक गोंडा से है, और इसी में मैं ऐड करूंगी अपने नेहा जी से, क्योंकि भाई मौसम के रिगार्डिंग इन्होंने सॉन्ग की डिमांड की थी। और अपनी प्यारी आन्या पांडे जी को भी यही कहूंगी कि मौसम का लुत्फ उठाइए इस गाने के साथ में। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा के साथ ही। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हंसते खेलते मुस्कुराते गाते, और खाना बिल्कुल मत मिस करिएगा मेरी तरह। हाँ, खाते भी रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो गाने 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन को। और जाते जाते ये ऑसम मौसम वाला प्यारा सा गाना आप सभी के नाम। टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: अब आगे मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आपके साथ है आरजबीना, विज्ञान शाला में आप सुन रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास बातें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैंने बात की थी, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बड़ा क्षेत्र है जो कि बायोटेक्नोलॉजी को एक नया रूप देता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी जीव के भीतर जीन के हेर फेर को सरल भाषा में अगर देखें तो आपने घर में मतलब क्या कहते हैं कढ़ाई वगैरह तो की होगी ना, एक कपड़े के साथ दूसरा कपड़ा जोड़ देना वो कलरफुल हो जाता है ना, वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है, एक कलरफुल रिबन बना देना, लेकिन वो कलरफुल रिबन कलर से नहीं जीन से बनेगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहता है कि अगर जीन का नया नया हेर फेर करके नया कॉम्बिनेशन हम बना दें तो हमारा जो जीन्स है वो हमें क्या करता है कि नए कह सकते हैं गुणसूत्र देता है। तो इसके अलावा मैं अगर इसमें और बात करूँ तो पुनः संयोजन

तक डीएनए प्रौद्योगिकी, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना, डीएनए को मल्टीप्लाई किया जाता है, डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है। और डीएनए आप लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दुनिया में दो तरह के होते हैं, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों हमारे गुणसूत्र होते हैं। यानी कि बहुत सारे जीवों में जो गुणसूत्र है वो डीएनए है और बहुत सारे में आरएनए होता है। अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी छूट जाएगा। तो इसी डीएनए को, डीएनए जो होता है वो शुगर से बना होता है, पेंटोज शुगर से बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, और साथ ही साथ इसमें होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, जो विज्ञान से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। लेकिन अब सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो दाल में क्या क्या डालते हैं हम लोग, दाल में हम लोग क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, पानी डालते हैं और दाल डालते हैं। ये चार चीज़ें मिलकर दाल बॉयल कर देते हैं। तड़के में तो आप जो भी मर्जी डाल दो वही है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो जीन्स हैं वो क्या है, वो डीएनए के ऊपर होते हैं। और डीएनए किससे बना है, तीन चीज़ों से बना है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। ये तीन चीजें मिलके हमारे डीएनए को तैयार करती हैं। और डीएनए हमारे मतलब बेसिकली हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारे शरीर की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। इवन मतलब आपके जीन्स किससे मिलते हैं, क्या है, कैसे हैं, सब उसके पास है। तो इन जीन्स को हम लोग अदल बदल करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, ऐसा हमारे रिसर्च करने वाले बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं एक बताना चाहूंगी उदाहरण जीन थेरेपी का। जीन थेरेपी उपचार में कोशिकाओं में जीन स्वस्थ जो प्रतियां होती हैं उनको निकाल दिया जाता है या शामिल किया जाता है। एक ही जीन के दोषपूर्ण संस्करण के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है। जैसे कुछ बीमारियां जो होती हैं वो एक जीन की वजह से होती हैं, अगर उस जीन को हटा दिया जाए या उस जीन की जगह नया जीन लगा दिया जाए तो वो बीमारी सही हो सकती है। और अगर वो ना किया जाए तो वो जीन जो है हमारे शरीर में एक बड़ी बीमारी को मतलब जन्म दे सकता है, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, अब मैं बात करना चाहूंगी सेल कल्चर तकनीक। सेल कल्चर तकनीक जो है इसका उपयोग विशिष्ट सेल प्रकारों की संपूर्ण आबादी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, फिर उन्हें आगे के प्रयोग के लिए मॉडल के रूप में रखा जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगी इम्यूनो साइंस अनुसंधान। इम्यूनो साइंस का अध्ययन जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली में काम आता है, साथ ही साथ इसमें वैक्सीनेशन जैसे कि टीकाकरण की बात मैंने कर ली और कई सारी बीमारियों के रोकथाम के लिए इसको विकसित किया जाता है। अब बात करूंगी फार्मास्यूटिकल विकास की। फार्मास्यूटिकल में हम कई सारी मेडिसिन को नए फॉर्मूले नए तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कम से कम लागत में हमारी मेडिसिन बने और वो बायो प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने और साथ ही साथ नई चीजों का विकास करे। अब बात करते हैं दवा की खोज की और विनिर्माण प्रक्रिया की। दवा की खोज प्राकृतिक स्रोतों से नए अणुओं की पहचान के ऊपर केंद्रित होती है। यह संभावित है कि चिकित्सा में चिकित्सीय एजेंट कई सारे हो सकते हैं, पर अगर उन एजेंट को हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को बना दिया जाए, मतलब अगर हम किसी पेड़ को ना काटे, किसी मतलब केमिकल का प्रयोग ना करें, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीवों से अपने जो कहते हैं ना बेनिफिट्स लें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी सही होगा और हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो एक समय पे करोड़ों कॉपीज अपनी बनाते हैं, मतलब कम समय में बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो आपको भी सोचना चाहिए, जैसे कि पेंसिलिन की बात हमने की थी कि पेंसिलिन जो है सबसे पहले बनाई गई और इससे ये एक तरह की वैक्सीन थी और इसने बहुत सारा मतलब हमें मतलब उम्मीदें दी आने वाले भविष्य के लिए और वो साकार भी हुई। तो वैसे ही मतलब अगर हम चाहें तो सूक्ष्म जीवों से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी एनवायरमेंट के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। जैव प्रौद्योगिकी की जब बात करते हैं तो प्राथमिक ऊर्जा प्रवाह के लिए हम कृषि को सबसे पहले हमारा सेंटर होता है कि कृषि को कैसे इम्प्रोवाइज करें। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन को कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वनों की कटाई को कैसे रोकथाम कर सकते हैं, मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, इन सब के लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे हमें मदद कर सकती है। सबसे पहले तो हमें प्रदूषण को रोकने की जरूरत है, जलाशयों में जो झीलें हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़िया करने की, यानी कि क्वालिटी उनकी बढ़िया रहे, पॉल्यूशन ना उनमें हो, नदियों को, तटीय क्षेत्रों को, भूजल को यानी कि जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है, इसके साथ पानी का जो योग्य है इसको स्थिर रखने की जरूरत है। पर्यावरण की बात करूं तो जैव प्रौद्योगिकी में पर्यावरण की जो स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है और उसको सही करने की जरूरत है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसके लिए हमने कुछ नए तरीके ढूंढ लिए हैं, जैसे कि रोगजनकता या जो बायोसेंसर हैं ये हमें बनाते हैं, जैसे लाइकन है। लाइकन एक जो है ये एल्गी और फंजाई से बनने वाला
एक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी जो है वो फंजाई को खाना देती है और फंजाई जो है एल्गी को रहने की जगह देता है। दोनों एक दूसरे को लेन देन करके दोनों अपना जीवन यापन करते हैं और लाइकेन जहाँ पाया जाता है कहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है। तो इन सब का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। ठीक है, तो इसमें बायो मेडिएशन जो है वो क्या करता है, पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी के सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है। इसमें मिट्टी या पानी में प्रदूषण को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे पानी गंदा है तो उसमें सूक्ष्म जीव डाल दो, वो गंदगी को अपने डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया बहुत सारे हैं जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जितनी भी गंदगी होती है ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको खाना बना के खा लेते हैं और पानी को शुद्ध बना देते हैं। इसके अलावा तेल का रिसाव, दूषित भूजल, इन सब को साफ करने के लिए हम छोटे छोटे जीवाणुओं का प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैं आपके बात कर ही चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम चाहें तो हस्बेंड्री में भी ये एक बड़ा कह सकते हैं चैलेंज होगा कि अभी तक जिसने कुछ भी नहीं किया वो एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक्नोलॉजी से बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि भ्रूण प्रत्यारोपण एक ऐसा अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य एक मादा पशु से संतानों की संख्या में वृद्धि करना है। ऐसे एक मोइट थी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता था एक गाय एक समय पे कई सारे जो बच्चे थे उनको अपने पेट में पालना शुरू कर दी थी और कुछ कोशिका तक हम लोग बनाते थे और उनको निकाल के अलग अलग गायों में, जैसे कि जो गर्भाधारण नहीं कर पाती उनके पेट में डाल देते थे। एक तरह से सैरोगेसी टाइप की हो जाती थी, मतलब एक फर्टाइल गाय कई सारे बच्चे तैयार करती थी और उनको पालने का काम करती थी बाकी गाय। तो ये एक तरीका था जिससे कि हम लोग एक समय पे बहुत सारे गायों से मतलब दुग्ध की जो कहते हैं ना प्रोडक्शन के लिए उसको तैयार कर रहे थे। इसके अलावा हम टीका का विकास कर सकते हैं, टीके का विकास के साथ साथ पशुधन बना सकते हैं। पशुओं में बहुत सारी बीमारियां हैं उन सबको सही कर सकते हैं, बहुत सारी वैक्सीन बना सकते हैं, आणविक मॉडलिंग कर सकते हैं, अनुवांशिकी कर सकते हैं, जीन हेर फेर कर सकते हैं और मतलब ना जाने क्या क्या। मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक वरदान है मेरे हिसाब से, तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं लगती। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग दूध और मांस की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। प्रजनन कार्यक्रम चला के हम कृत्रिम जो कहते हैं ना गर्भाधान तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की देन है। IVF भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की देन है। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, पर्यावरण सबको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आप सोचिए जो क्षेत्र इतना काम कर रहा है तो उसमें काम करने वाले लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप लोग बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हैं, यानी कि 12th आपने किया साइंस स्ट्रीम से, उसके बाद आप बीटेक में एंट्रेंस देके जिसमें सीटें काफ़ी सारी खाली रह जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करके आप रिसर्च में जा सकते हैं। और रिसर्च में मैं सच बता रही हूँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रिसर्च के जो सेंटर्स हैं जहाँ पे सीट्स खाली हैं, रिसर्च करने वालों की कमी है। तो भागना तो हम सभी को है, लेकिन अगर हम सही ट्रैक पे सही समय भाग लेंगे तो हमारी मंजिल जो है ना हमारे करीब होगी। और चलते चलते मैं थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और भी आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये तकनीक जो है ना वो आने वाले भविष्य में एक नया कह सकते हैं कि भविष्य तैयार कर सकती है। अगर मैं खाद्य प्रसंस्करण की बात करूँ या संरक्षण की बात करूँ तो ये हमें जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भूमिका को समझाती है। इसमें भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण भी शामिल है, जिसमें सूक्ष्म जीव, जानवर या पौधों को मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें एक GMO होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने नया जीन डाल दिया। सरल भाषा के लिए समझते हैं कि आपने एक ऑर्गेनिज्म बनाया, एक जीव बनाया जिसमें आपने क्या किया, एक जीन डाल दिया जिससे उसके पंख आ जाए। मान लो मैं इंसान हूँ, मुझे बनाने से पहले मेरे अंदर एक पंख वाला जीन जो कि पक्षी से लेके मेरे अंदर डाल दिया और मेरे पंख उगाए। हमने ऐसे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी हैं, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है अगर हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे सोचें। पर इंसानों में अभी तक नहीं हो रहा है, पौधों तक हम लोग सीमित है, पौधों में ऐसा काम किया जा रहा है। नवीन भोजन बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं, एडिटिविक्स का निर्माण कर सकते हैं, माइक्रोबियल किण्वन कर सकते हैं, खाद्य पैकेजिंग को बढ़िया कर सकते हैं, रोग या सूखा प्रतिरोधी पौधे बना सकते हैं, दुबला मांस या बेहतर स्वाद वाले खाने की चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता, कहते हैं ना कि इस वाले टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो कहीं ना कहीं हम बायोटेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। इसके साथ साथ अधिक उपज वाली फसलों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को बना सकते हैं, नए पौधों का विकास कर सकते हैं, नई प्रजातियां तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये संभव है
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का है, ये पुनः संयोजक डीएनए की जैव प्रौद्योगिकी की एक कह सकते हैं कि तरीका है, जिसमें हम जीन में नया डीएनए या डीएनए में नया जीन जोड़ के एक नया डीएनए बनाते हैं, उसी को रिकॉम्बिनेंट, कॉम्बिनेशन मतलब नॉर्मल, जिसमें एक नया जीन डाल दें वो रिकॉम्बिनेशन। तो इससे हम एक बड़ा मतलब कह सकते हैं कि विकास कर सकते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब बात करूंगी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बड़ा मतलब कह सकते हैं कि क्षेत्र है जिसके बारे में अगर हम बात करने लग जाए ना तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इसकी जो महत्ता है वो घट जाएगी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस की। तब तक के लिए सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सो वापस आ चुकी हूँ मैं आप लोग के बीच करने बहुत सारी बात। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं विज्ञान शाला में बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी के महत्व को समझाने के लिए अभी आरजे बीना आपके साथ हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बहुत सारे क्षेत्र आपको बताए जो बायोटेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन सब में सबसे पहला है भाई कि जैव जो है ना प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि जैविक सामग्रियों का प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, रोज की जो कहते हैं ना कि तेज रफ्तार वाली जो दुनिया है इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीन थेरेपी और अनुवांशिक चिकित्सा सबसे पहली देन है या महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं क्षेत्र है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी बड़ा काम कर रही है। ये जो है जीवित कोशिकाओं के भीतर डीएनए संरचनाओं के हेर फेर करके बीमारियों की रोकथाम करता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका जैव प्रौद्योगिकी का नई फसलें विकसित करने का काम, यानी कि नई फसलें हम बनाएंगे। जो आपने गेहूं की और धान की नई नई वैरायटी नहीं सुनी है, गोल्ड, ये वो, मतलब ये सारी चीजें ना, ये हाइब्रिड भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की देन है। बेहतर पैदावार के साथ पादप अनुवंशिकी प्रौद्योगिकी भारी प्रगति के साथ सूखे और कीड़ों से बचने की गुणवत्ता के साथ हम नए पौधे बना सकते हैं। और दुनिया भर में स्थायी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना ये भी तभी संभव है जब भूमि संसाधन है वो दुर्लभ ना हो। यानी कि आप सभी समझ रहे हैं कि लैंड एरिया कम हो रहा है, और कम लैंड एरिया में खेती तो हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। तो इसके बढ़ते हुए जो कहते हैं ना क्षेत्र को समझते हुए हम क्या करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे पौधे उगाएंगे जो कम क्षेत्र में कम समय में ज्यादा उत्पादन देंगे, और ये तभी संभव है जब बायोटेक्नोलॉजी बड़े स्तर पे काम करेगी। इसके अलावा हम इसके अन्य क्षेत्रों की बात करें तो रक्त प्रवाह के माध्यम से दवा वितरण प्रणाली, जो कि चुंबक द्वारा संचारित छोटे रोबोट से बीमारियों को तुरंत डायग्नोस कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन का प्रयोग, इसके अलावा हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी सटीक निदान होंगे वो सब बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे कि अब चलते चलते मैं ये बताना चाहूंगी कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है नए उत्पादन के साथ साथ मौजूदा उत्पादों को भी बेहतर बनाती है, जीवित जीवों को और बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन को स्थिर बनाने के लिए काम करती है। इसमें अनुप्रयोगों की जो श्रृंखला है वो बहुत लंबी है, वो चिकित्सा, कृषि, खाद्य उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण में अपना बेहतर जो योगदान है वो देती आ रही है, और आने वाले समय में भी कुछ नए आयाम हमारे लिए तय करके रखेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक दुर्लभ चीजें हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। खाने में हम लोग भी पौष्टिकता चाहते हैं, लेकिन ये पौष्टिकता धीरे धीरे कम हो रही है मिलावट की वजह से। तो ये मिलावट तभी कम होगी जब हम कुछ नया करेंगे, यानी कि कम समय में कुछ ज्यादा, जादू जैसा। तो आधुनिक तकनीकें जो हैं इसमें वो है किण्वन, जैसे कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बायोटेक्नोलॉजी की ही एक देन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, CRISPR जिसे जीन संपादन या जीन एडिटिंग भी बोलते हैं, क्लोनिंग भी इसमें आ जाता है, जिसमें जीव के हूबहू अनुवांशिक प्रतिलिपि तैयार की जाती है, जैसे कि आरजे बीना की एक और कॉपी आरजे बीना। इसके साथ ही साथ स्टेम सेल थेरेपी जो कि टिश्यूज में की जाती है, यानी कि उत्कों में, उत्का जैसे कोशिका को मिलाओ तो उत्तक बनते हैं, यानी कि सेल मिला के टिश्यू बनता है। वैसे ही बीमारियों में भुखमरी को निपटाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ये अपने प्रभावी रास्ते हमारे लिए तैयार कर रही है। चुनौतियां क्या क्या इसमें हो सकती है? चुनौती भाई नैतिक जो सवाल है, कहते ना कि हम किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे जीव को नुकसान भी पहुंचाती है, तो ये एक परिणाम है इसका। और अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में ये भविष्य के लिए एक वरदान से कम होगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, स्वास्थ्य के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं, तो इन सब का निदान बायोटेक्नोलॉजी के पास है। और करियर की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आप सीधे तौर पर बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ रिसर्च में आप अपना बढ़िया बेहतर कर सकते हैं काम। इसमें MSc भी आप कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, BSc भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। इससे जुड़ी जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि नेट है, गेट है, CSIR है, DBT, BET है, इन परीक्षाओं में आप अपना स्किल दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर तकनीकी से जुड़ी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्यूरोसिटी है कुछ नया करने की, तो ये क्षेत्र आपके लिए है। इसमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां दे के आप रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे और ना जाने कितनी बीमारियों की, जो बीमारियों की दवाइयां बना देंगे, पता नहीं कितने पौधे बना देंगे और पता नहीं कितने जीवों के लिए एक नया जीवन तैयार कर देंगे। तो ऐसे ही सोच के साथ मैं उम्मीद करूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी को आप लोग अपने साथ आत्मसात करेंगे। वो लोग जो अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं और अभी भी डाउटफुल हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी ही जानकारी के साथ आरजे बीना को सुनते रहिए विज्ञानशाला में, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। और आप सुन रहे हैं ज्ञान 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
9: गोंडा शहर की धड़कन।
10: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
10: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
10: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
12: अरे सुना?
13: क्या?
12: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
13: वाओ!
12: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
14: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
15: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
16: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

इश्क करके ना निभाया तो क्या इश्क किया, इश्क करके गर ना निभाया तो क्या इश्क किया, इश्क करके हर जन्म के लिए उसको अपना बनाया, हाँ यही तो इश्क किया, हाँ यही तो इश्क किया। इश्क में जीने मरने की कस्में खाने वाले लोग तो हमने बहुत देखे हैं, पर जब बात आती है इसी जन्म में साथ निभाने की तो बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी का स्वागत है आपके शो, आपके फेवरेट आरजे बीना वाले शो गोंडा वैसे मसाला आरजे बीना वाला में। एंड यस, शाम के 6:08:40 हो चुके हैं, आपकी घड़ी में घड़ी टिक टिक करके बार बार चीखती है कि भाई धड़कनों को बढ़ाइए, 89.6 FM को ट्यून कराइए। यस, और ट्यून करते ही आपकी जो धड़कनें हैं वो म्यूज़िकल हो जाती हैं, एंटरटेनिंग हो जाती हैं, और लगता है कि यार इस दुनिया में म्यूज़िक अगर इतना है तो ये सारा का सारा ऑन एयर हमें क्यों दिख जा रहा है। और इसी के साथ मैं आज की शुरुआत जो है एक मिलो दूरी मिटाने वाले गाने से करूँगी, और इस गाने की जो वाइब है ये थोड़ी पुरानी है क्योंकि आज की कहानी भी थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि पीछे छोड़ते शहर से मैंने कभी अपना सामान साथ नहीं लिया, पीछे छूटते लोगों से मैंने कभी दिया हुआ समय नहीं मांगा, अपने बिछड़े हुए प्रेम के पास मैंने अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरी नज़र में पीछे कुछ तो छूटा रह जाना चाहिए, दोबारा फिर लौट के नहीं आना चाहिए, अगर आए भी तो वो समय तुम्हें लेकर आए, क्योंकि तुम्हारा लौटना मुझे वहीं रुक जाने जैसा चाहिए, तुम्हारा लौटना मेरा वहीं रुक जाने जैसा चाहिए। तो चलिए, कहाँ किसको लौटना है ये तो हम इस गाने को सुन के ही डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल आप सबके साथ आरजे बीना आप सभी का इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है, और फटाफट से लाइव हो जाइए और आज की शाम में लव सॉन्ग्स के साथ एक कहानी के चश्मदीद बन जाइए। तो आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो गुंडा बेसन मसाला आरजे बीना वाला विद योर फेवरेट आरजे बीना ऑन योर फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

वैसे आप बताइए, आपने कभी प्यार में मजबूरियां फेस की हैं या फिर बस आप स्मूथली अपने प्यार तक पहुंचते चले गए और प्यार ने आपको बुलाया और आप दौड़े दौड़े

फिलहाल मैं आपके सामने और आप मेरे सामने हैं, और आपके सामने आते ही भाई मेरी बातें शुरू हो जाती हैं। नो डाउट, नो इफ्स, नो बट्स, ओनली टॉक टॉक टॉक, यस यस। और देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि जब प्यार में दूरियां होती है ना, तो प्यार का मज़ा कुछ और होता है। और दूरियों के साथ साथ अगर प्यार मुकम्मल हो जाए तो प्यार बड़ा सुरीला होता है, बड़ा सुहाना होता है, और कहते हैं ना, एक म्यूज़िकल सॉन्ग बन जाता है, बहुत ही सूदिंग सॉन्ग बन जाता है, जिसको बार बार गुनगुनाने और गाने का मन करता है। और उसी के साथ मुझे गाना याद आ रहा है, गाना क्या, एक कविता याद आ रही पहले तो, कि कविता है कि तुम्हारे नाम का कोना, शेल्फ पर रखी बंद किताबें, उनमें रखे सूखे फूल, शेल्फ पर रखी बंद किताबें, उनमें रखे सूखे फूल। ध्यान से सुनिएगा, शेल्फ पर रखी बंद किताबें, उनमें रखे सूखे फूल, पर लिखी कुछ कविताएं, तुम पर लिखी कुछ कविताएं, बंद खतों में जमी है धूल, शेल्फ पर रखी बंद किताबें, उनमें रखे सूखे फूल, तुम पर लिखी कुछ कविताएं, बंद खतों पर अब जम गई धूल, तुम्हारी भेजी प्लेलिस्ट के गाने। कई बार हम लोग ना, जब प्यार में होते हैं या किसी भी रिलेशन में होते हैं, तो एक दूसरे की प्लेलिस्ट शेयर करना या एक दूसरे की प्लेलिस्ट एंजॉय करना मजा आता है। तुम्हारी भेजी प्लेलिस्ट के गाने, एक आध तुम्हारे झूठे बहाने, हमारे साथ की कुछ तस्वीरें, मेरे हाथ में तुम्हारे ना होने की लकीरें, बस इतने सबसे भरा है मैंने, तुम्हारे नाम का हर एक कोना, तुम्हारे नाम का हर एक कोना, तुम्हारे साथ की कुछ तस्वीरें, मेरे हाथ में तुम्हारे ना होने की लकीरें, बस इतने सबसे भरा है मेरे मन का वो खाली कोना। फिर चाहे हमारा अलग अलग शहर होना, या हो तुम्हारे मेरे जीवन में एक ही होना, तुम्हारे नाम रखा है मैंने एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। तो भाई देखिए, ऐसे कोने जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं ना कि जिनको हम चाह के भी रिप्लेस नहीं कर सकते। और चाहना तो बहुत दूर की बात है, और कहते हैं ना, पहला प्यार हमेशा पहला प्यार होता है। पहला प्यार हमेशा एक अलग वाइब दे के जाता है, एक अलग फीलिंग दे के जाता है, एक अलग एहसास दे के जाता है, अलग मेमोरीज बना के जाता है, वो मेमोरीज जो अमिट होती हैं, जिनको आप मिटा नहीं सकते। तो चलिए, हम भी प्यार के पहले जो कहते हैं ना, जो लम्हे हैं, उनको जीने की कोशिश करते हैं। और आज ही मैं एक कहानी लेके आई हूँ आप सबके साथ। जैसा कि फ्लायर में मैंने आपको बता दिया कि हमने कहानियाँ तो सबकी सुनी है, बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ा है, अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, कभी किसी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है, लेकिन कभी प्रिपरेशन के दौरान हमने कुछ खास लोगों की लव स्टोरी नहीं पढ़ी। और उन खास में आज मैं नाम लूँगी कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जिनका आज कह सकते हैं कि जन्मतिथि भी है, और जन्म से ज़्यादा आप उनके बारे में जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझते होंगे, पर सच बताऊं तो जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपने अभी तक उनकी प्रेम कहानी नहीं सुनी। तो वही आज सुनाने के लिए अर्जुबीना आपके साथ हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए, और चलिए एक गाना सुना देती हूँ आप लोग को। मैं इस गाने को सुन के बताइए कि कैसा है आपको, मतलब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिलहाल ये लव मैशअप आपको आपके प्यार तक पहुंचा देगी, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्यार तक पहुँचे बिना किसी रोक थाम के, क्योंकि जब प्यार तक पहुँचने के लिए रास्ते मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपके प्यार की याद भी आ जाती है। सो लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल लव मैशअप इन दिस इवनिंग। आप सुन रहे हैं शोगोना मिस मसाला आरजे बीना वाला विद योर आरजे बीना, आपकी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 एफएम के साथ। ये है गोंडा शहर की धड़कन, वो धड़कन जो आपकी धड़कन को बढ़ाती है और हमेशा से आपको हमारी याद दिलाती है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मैशअप।
एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर लिसनर बंटी गुर्जर जी, सविता जी, सविता जी कैसी हैं आप, और धर्मेंद्र मोहन आवाज़ विकास से आपका भी स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस।

0: याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
10: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

भाई गलियां किसी की भी हो, अगर भा जाती है ना तो मन करता है कि वहीं रुक जाएं और वहां से आए ना, और वो गलियां चीख के कहती हैं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो बिल्कुल दिल तो भरता ही नहीं है, और मैं रहूं या मेरे अलावा कोई और आरजे आप लोग के साथ रहे, बस मन करता है कि यहीं ठहर जाएं और वापस आ गए आपके पास। और सविता जी मैं गुम नहीं हुई थी कल, जानती है क्या हुआ था कल? नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी पे तो सुनाई दे रहे थे लेकिन एप्लीकेशन पे नहीं सुनाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग वापस से आप लोग के साथ लाइव हो गए, पर क्या कर सकते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि इट इज़ ऑल अबाउट द डेस्टिनी, तो डेस्टिनी तो जो डिसाइड करती है वो तो करती ही रहेगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्यारी सी खूबसूरत सी प्रेम कहानी की, जिसके बारे में आप लोग तो सुनने के लिए बेताब होंगे, क्यूरियस होंगे, मतलब जिसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो उस चीज़ के बारे में बात करना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक्साइटिंग हो जाता है। तो आज देखिए, हम सभी के जीवन में प्यार ने अलग अलग रूप में जन्म लिया। पैदा होते ही हम लोगों ने अपनी माँ से प्यार किया और प्यार बांटा, प्यार सीखा कि प्यार कैसे जताते हैं, प्यार की परिभाषा क्या है, किस जगह इसका क्या मायना है, भाई बहन का, माँ बेटे का, माँ बाप का, पिता बेटे का, सारे मतलब अलग अलग रिश्ते, दोस्तों के बीच प्यार। तो मैं ये कहूँगी सीधे सीधे तौर पे कि मतलब जब बात आती है किसी से प्यार निभाने की, तो हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि किस रिलेशन को कैसे निभाना है, या कह सकते हैं कि जैसे हर चीज़ की हमें रेसिपी मिल जाती है तो हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, पढ़ने के लिए सिलेबस मिल जाता है, एग्ज़ाम के लिए हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है, वैसे रिलेशनशिप निभाने के लिए भी अगर हमें कोई नसीहतें दे दे रिटन फॉर्म में तो कितना अच्छा हो जाए। वैसे ही आज प्यार की भी कुछ नसीहतों के साथ मैं आपके साथ हूँ, और प्यार में गिव एंड टेक नहीं होता है, प्यार में जजमेंट नहीं होनी चाहिए, प्यार में जो भी हो वो एक दूसरे के लिए हो, सपोर्ट होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, जजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम जजमेंटल होते हैं वहीं प्यार हमें ना धोखा देना शुरू कर देता है, या एक दूसरे के लिए प्यार की जो परिभाषा है वो बदल जाती हैं। तो आज जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोगों ने एक दार्शनिक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना, एक फिलोसोफर के रूप में जाना, पर आज कार्ल मार्क्स की लव स्टोरी कहाँ से कैसे शुरू हुई उसकी बात करूँगी। और आप लोग भी चाहते होंगे ना कि जिसके बारे में इतना सुन रखा है उनके जीवन में प्यार ने कैसे दस्तक दी और कैसे उन्होंने प्यार को निभाया, क्या वो एक लाइफ पार्टनर के साथ थे या उनकी लाइफ में कई बार प्यार आया। तो आज एक आइडल लव स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ मैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि प्यार ना सिर्फ एक फेरी टेल जैसा होना चाहिए, प्यार में संघर्ष होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अटूट विश्वास होना चाहिए। जहाँ पे ट्रस्ट होता है ना वहाँ पे कोई भी रिश्ता कभी भी टूट ही नहीं सकता। और हम लोग कई बार इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि रिश्ते टूटने को लेके हम परेशान हो जाते हैं, पर उन टूटे रिश्तों को मनाने का, बनाने का सब क्रेडिट जो है ना हम पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ आज एक रूहानी दुनिया में, जहाँ पे प्यार खतों में सिमट के रह गया, जहाँ पे प्यार एक दूसरे को समझने में रह गया, और जहाँ पे प्यार ने सबको ये बता दिया कि वो इंसान जो लोगों को फिलॉसफीज बता देता है अलग अलग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, जैसे कि आप लोग बेसिकली इस बात से मतलब इस बात को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि मतलब आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की लव स्टोरी के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा मार्क्स के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो उनके बारे में हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, उनके जीवन को समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 5 मई और 1883 में उनका देहांत हुआ। एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री,
इतिहासकार क्रांतिकारी समाजवादी थे, जिन्हें वैज्ञानिक समाजवाद और आधुनिक साम्यवाद का जनक भी माना जाता है। उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में दास कैपिटल जिसे बोलते हैं, जैसी कालजयी रचनाएं लिखी, जिन्होंने वर्ग संघर्ष पूंजीवाद की आलोचना करते हुए सर्वहारा क्रांति के सिद्धांतों के माध्यम से दुनिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, तो अगर बात करें तो इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, ट्रायर शहर में जर्मनी के। और इनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालय से कानून, इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 1841 में जैना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी इन्हें मिल गई। अब भाई इतना सब कुछ देखिए, मतलब ज्ञान किसी को देने के लिए सबसे पहले ज्ञान अर्जन करना ज़रूरी है। मतलब जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं तो आप दोगे क्या? तो सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हमेशा से जब भी आपको जहाँ भी मौका मिले पढ़ना सीखना सीखिए। एक बार की बात है, मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और एक पैसेंजर मेरे बगल में बैठे हुए थे एक सीट पे, और उनको देखा मैंने। मतलब यूजुअली सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे उस टाइम, मतलब मैं जब ट्रेन में थी तो लोग कैंडी क्रश बहुत खेलते थे, गेम है। मैं भी अपने फ़ोन में कैंडी क्रश खेल रही थी कोइंसिडेंटली। वैसे जब मैंने अगल बगल देखा कि मतलब वो अगल बगल तो लोग मोबाइल कोई चला रहा है, कोई गाने सुन रहा है, मैं भी गेम खेल रही थी, जब उनको बगल में देखा तो वो किताब पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने किताब बैग में रखी, मूंगफली खरीदी, मूंगफली खाने लगे। तो यार मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि एक बंदा मोबाइल नहीं चला रहा, मैं घुस के मोबाइल देख रही हूँ। मुझे कभी कभी इंसल्ट लगता है कि चार लोग नहीं चला रहे, मैं बैठ के चला रही हूँ, तो मुझे थोड़ी बेइज्जती टाइप की, मतलब थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। तो मैंने देखा उनको वो मूंगफली खा रहे थे, उन्होंने मूंगफली खा ली। अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा मूंगफली खाने का मन कर रहा था, नहीं, मैं उनको बहुत ध्यान से ये देख रही थी कि मतलब बंदे ने 35-40-45 मिनट्स बीत गए थे मेरे बगल बैठे बैठे, उन्होंने मोबाइल नहीं टच किया। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मोबाइल होगा ही नहीं तो क्या टच करेंगे, नहीं, उनके पास फ़ोन था बट उन्होंने फ़ोन टच नहीं किया। तो मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है भाई, उन्होंने मोबाइल नहीं टच किया, क्यों नहीं टच किया, कोई तो इसके पीछे रीज़न होगा, पर नहीं टच किया, नहीं किया। फिर मेरे मन में आया कि यार चलो कोई बात नहीं, किसी किसी की आदत नहीं होती चलाने की। फिर फाइनली मैंने देखा उन्होंने जब मूंगफली खा ली तो आप सोच रहे होंगे छिलका गिरा दिया होगा, अरे अपने मन से थोड़ी कहानियां मत बनाइए, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने मूंगफली वगैरह खाई और छिलका मतलब उसको ऐसे साइड में रखा हुआ था, और फिर उसको मतलब एक पुटली बना के पॉलीथीन में डाल के रख दिया। फिर जो न्यूज़पेपर था जिसमें पेपर में मूंगफली आई थी उसको धीरे से उसका जहाँ से गोंद लगा के जोड़ा हुआ था उसको खोला। फिर उसको खोले, मैंने कहा ये क्या पागलपन है यार, मतलब कोई कागज़ कैसे, मतलब कोई रैपर कोई खोल खोल के थोड़े देखता है, ये क्या कर रहे हैं। फिर क्यूरोसिटी बढ़ी कि क्या करने वाले, लाओ देखें। वो लखनवी अंदाज़ आपने अगर बचपन में किसी का क्लास में कहानी पढ़ी होगी तो वैसी क्यूरोसिटी मेरे मन में आ गई। इनका भाई चलो देखते हैं आज क्या हो रहा है। तो उन्होंने बढ़िया आराम से खोला उसको, बहुत करीने से, एकदम कहीं से फटना नहीं चाहिए। फिर खोला तो उन्होंने मतलब मुझे लगता है कि 15x15 का एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा उनके हाथ में था। और फिर मैंने देखा कि वो बहुत ध्यान से उसको पढ़ने लगे। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, पागल गल तो नहीं है, पता नहीं कब का न्यूज़पेपर होगा बैठ के पढ़ रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो यार अगला किताब लगता है पढ़ के ख़त्म हो गई होगी, पढ़ने की आदत होगी इसीलिए पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने वो पढ़ ओढ़ लिया तो मैं ऐसे देख रही थी उनको बहुत घूर के, तो उन्होंने बोला मैम पढ़ेंगी, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं नो थैंक्स। फिर मैंने कहा यार अगले ने दिया, मैंने लिया भी नहीं पढ़ने के लिए, मूंगफली खा रहा था वो तो पूछ ही नहीं। फिर बात याद आ गई कि यार स्ट्रेंजर्स का दिया तो कुछ खाना भी नहीं चाहिए, खाती तो मैं वैसे ही ना, ये पढ़ लेना चाहिए था। फिर मैंने कहा कि आप मतलब इतनी जिज्ञासा बढ़ गई, 12 बंकी पहुँचते पहुँचते मतलब दिमाग एकदम शॉर्ट कि भाई इतने पढ़ा गई हूँ क्या है ये। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, मेरी क्यूरोसिटी देख के मैंने पूछा कि मतलब आप ये न्यूज़पेपर मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, मतलब बुरा ना लगी इस तरीके से मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैम न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे नहीं पसंद है, मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद है। भाई जैसे लग रहा किसी ने थप्पड़ मार दिया बहुत ज़ोर से गाल पे, मतलब मुझे ये समझ में आया कि भाई मैं तो टाइम वेस्ट कर रही थी, अगला मुझे कह तो नहीं रहा था लेकिन इनडायरेक्टली मुझे बहुत तगड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तो फिर मैंने कहा मतलब मैं समझी नहीं।
तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, जैसे यहाँ पे एक एक सेकेंड एक एक मिनट इधर उधर वेस्ट हो रहा है और लोग फ़ोन चला रहे हैं, मुझे मतलब फ़ोन चलाना नहीं पसंद है। और मैंने कहा आप फ़ोन से भी देख सकते हैं, क्या नहीं फ़ोन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्षण भर के लिए प्लेजर देती हैं। डोपामिन सुना है आपने? मैंने कहा हाँ हाँ, डोपामिन मतलब वो हार्मोन होता है जो हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, मतलब ब्रेन से सिक्रीट होता है। बोले हाँ हाँ, तो ये डोपामिन जो है ना ये टेम्परेरी खुशी देता है हमको, छोटी छोटी जो गंदे मतलब चीज़ें हम लोग करते हैं जैसे कि आइसक्रीम खा के हमें खुशी मिल जाती है, तो वो टेम्परेरी खुशी देता है ये मोबाइल ये सारी चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करूँ और मुझे जहाँ भी जो भी दिखता पढ़ने के लिए सीखने के लिए वो मैं करने लगता हूँ। तो मुझे ये पेपर का रुकना मिला, मैंने सोचा पढ़ लूँ, अभी फेंक ही दूंगा, वेस्ट हो जाएगा, मूंगफली तो खा ली, लेकिन अब इसका एक एक कहते हैं ना कि कतरा कतरा वसूल लेना, तो वो मैं कर रहा हूँ। उस दिन से मेरे दिमाग में इस बात को घर कर लिया, मैं आगे पीछे तो हर जगह मोबाइल चलाऊंगी लेकिन स्टेशन पे मोबाइल नहीं चलाती ना ट्रेन में चलाती हूँ। अब आप लोग इसको पागलपन समझिए या जो समझिए, लेकिन एक सीख मुझे मिली कि भाई मैं ट्रेन में और स्टेशन पे मोबाइल नहीं चलाऊंगी। तो ये होता है ना सीखना, मैंने जैसे कहा ना कि कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ सीखा फिर हमें बहुत कुछ सिखाया, तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कहानी आप लोग को याद रहेगी और मे भी क्या पता आपके साथ भी अगल बगल बैठे लोग कुछ ऐसा कर रहे हो अतरंगी सा और अपने ध्यान ना दिया। तो अब मैं बात करूंगी इनके वैचारिक विकास की कि इन्होंने कैसे अपने विचारों का मतलब बहुत सारा ग्रोथ किया। तो मैं बताऊंगी, मार्क्स ने हेगल के द्वंद्वात्मक दर्शन से प्रभावित होने के बाद बहुत सारे भौतिकवाद में अपनी जो कहते हैं ना सिद्धांतों को जोड़ा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो कहते हैं ना उन्होंने डेवलपमेंट किया। क्रांतिकारी यात्रा उनकी जो रही है, उन्होंने जो है रिंशे जीटंग समाचार पत्र का संपादन किया, लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें जर्मनी फ्रांस और बेल्जियम छोड़ना पड़ा। कहते हैं जो इंसान क्रांति लाने वाला होता है ना उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्रांति इन सेंस। अभी आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा बहुत कुछ, अब मैं शब्दों में क्या ही बताऊँ। जो इंसान थोड़े बदलाव करने का सोचता है उसको थोड़ी सी मुँह की खानी पड़ती है, कुछ ऐसा इनके साथ भी हो गया। और प्रमुख सहयोग की अगर बात करूँ तो 1844 में पेरिस में उनकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक हैंग्स से, जो कि अपने जीवन भर के मतलब उनको अपना मित्र मानते थे और वैचारिक सहयोगी भी उनके बन के रहे। मतलब एक इंसान ऐसा आता है आपकी लाइफ में जो आपके दोस्त पक्का बन जाता है और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के देता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसी संगति होती है ना वैसा कुछ ना कुछ आपका प्रभाव बनता है, एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी विचारधारा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, और उन्होंने अपना अंतिम समय जो है वो लंदन में बिताया और 14 मार्च 1883 में उनका निधन हो गया। तो ये तो रही उनके मतलब विचारों की जो यात्रा थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने एक राजनीतिक नारा भी दिया था कि विश्व में श्रमिकों को एकजुट होना होगा, या कह सकते हैं विश्व, उन्होंने ऐसे नारा टाइप का दिया था कि विश्व के श्रमिकों एकजुट हो जाओ। और सच्ची बात है कि जब हम एकजुट हो जाते हैं ना तो हम दुनिया बदल सकते हैं, यू नो, काया पलट टाइप। तो चलिए काया पलटेंगे, लेकिन अभी मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने अपने मार्क्सवाद के 7 जो है सिद्धांत दिए थे, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, क्या पता आपके किसी एग्जाम में मदद कर दे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, एंड इसके बाद था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष क्रांति, इसके अलावा सर्वहारा वर्ग का अधियानात्मक और साम्यवाद। ये थोड़ा सा बहुत शुद्ध हिंदी था तो मैंने सोचा इस मार्क्सवाद को एक और लैंग्वेज में एक नया नाम दिया गया जिसको लेनिनवाद भी बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे पहले से, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। लेकिन अब चलते हैं उनके जीवन में प्यार की यात्रा को तय करने के लिए। तो प्यार की अगर बात करूँ तो प्यार तो हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आया ही होगा किसी ना किसी रूप में, और आज मसाला तो होगा ही हमारी स्पेशल शाम का। लेकिन आज कोई सेलिब्रिटी की बात नहीं होगी, आज किसी बड़े नाम की बात नहीं होगी, आज उस नाम की बात होगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी को और दुनिया को समानता का पाठ पढ़ाया, मतलब अपने जीवन में गरीबी देखी और लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया। और आज बात करने जा रही हूँ कार्ल मार्क्स की और उनकी प्रेमिका या पत्नी कह सकते हैं जेनी वॉन वेस्टफेलेन की। और अगर इनकी बात करें तो इनकी प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो जैसे कहते हैं ना गरीब लड़का अमीर लड़की, कुछ ऐसी टाइप की। अमीर घराने की रईस परिवार की रहने वाली जेनी वॉन और हमारे जो कहते हैं ना कि कार्ल मार्क्स क्रांतिकारी थे तो फकीर थे, अक्सर क्रांति खिलाने वालों के घर में कुछ बचता नहीं है, तो कुछ ऐसा। तो आप ये आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सच्चा प्यार मुश्किल वक्त में साथ निभाने की ताकत रखता है, हाँ या ना, यस या नो में आंसर देना है। क्या सच्चा प्यार मुश्किल समय में
साथ निभाने की ताकत रखता है या नहीं। यस या नो में आंसर दीजिए। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा एक प्यारा सा ज्ञान, मतलब आप लोग को ज्ञान भरा नहीं, बढ़िया सा एनर्जेटिक सा गाना सुना देती हूँ, जिसको सुन के आपके मन में ओहो हो प्यार के तार ऐसे ऐसे बज जाएंगे ना कि क्या बताऊँ। तो ना नया ना पुराया, बढ़िया सा आप लोग के लिए एक लव सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, जिसको सुन के आपकी जो कहते हैं ना दिमाग में भूमिका बन जाए प्यार की। तो प्यार की भूमिका बनाते रहेंगे आपके साथ, बजाते रहेंगे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 93.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे हैं अपनी आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला। आरजे बीना वाला स्टे ट्यून्ड।

0: लगी।
1: तो बिल्कुल खबर हो या ना हो, पर मुझे ये तो पता है कि आपको इतना तो पता है कि आंसर्स देने होते हैं आपको। और यस, आंसर आया है सविता जी का। और सविता जी ने कहा कि मतलब अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो मुश्किल समय में आपका साथ निभा सकता है। ओके, इस बात को मैं पॉइंट आउट करती हूँ। और आशु जी आप बताइए, अगर प्यार सच्चा है तो क्या वो आपका मुश्किल समय में साथ निभा सकता है या साथ छोड़ के जा सकता है? यस या नो? चलिए अगला गाना आप लोग को सुनाते हुए चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ भी। लेकिन पहले ये गाना मेरे सारे उन सभी लिसनर्स के लिए जिनको लगता है कि प्यार अगर सच्चा हो तो हर तरह की सिचुएशन में आपके साथ होगा। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माय लवली लव वाले लिसनर्स के लिए।

चाहिए। जी हाँ, प्यार तभी रुकेगा जब उसे आप में पूरी दुनिया दिखे, यानी कि उसे किसी भी तरह का सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, बस आप चाहिए, तो ज़रूर आपका प्यार आपके साथ रुकेगा। नो डाउट, नो इफ्स, नो बट्स। सबलू सामा जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? मुंबई से सुन रहे हैं हमें सबलू जी, क्या हाल है? बंडी जी राजस्थान से, आशु जी लखनऊ से, सविता जी गोरखपुर से। तो चैट रूम में देखने वाले लोग और जो जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, उन सभी को दिल से इस्तकबाल है आरजी बीना का, और फटाफट से आ जाइए, कैसे हैं आप लोग? और चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्यार के जो नैया है ना, उसको बढ़ाते हुए, और राम के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राम ने ये कहा है कि अगर आप कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। तो ये जो गाना है, यहाँ प्यार के मामले में थोड़ा कम सेट बैठता है ना, कि अपने तो नैया है राम के भरोसे, प्रेम की नैया को पार तू लगाई दे। हाँ, तो प्रेम की नैया को आपको खुद ही पार लगाना पड़ेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, और बात ये है कि कहानी में शुरुआत होती है प्यार की, और प्यार झुकता नहीं, जैसा कि हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है, तो वैसे ही इस कहानी की शुरुआत भी हुई है। और आप सभी को बताना चाहूँगी, बात उस ज़माने की है जब लोग प्यार का नाम लेने से भी कतराते थे, एंड प्यार मतलब शादी के बाद भी करने से सोच डरते थे, शादी के पहले तो बहुत दूर की बात है। और सबसे पहले बात कि कहानी शुरू होती है तब जब दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो मैं भी चलूंगी इन लोग के फैमिली बैकग्राउंड की तरफ, और आप लोग को ले चलूंगी बहुत पुरानी दुनिया में, यानी कि 18वीं शताब्दी में, और हम लोग भी चलते हैं उस ज़माने में, वो ब्लैक एंड वाइट वाली दुनिया में प्यार कैसा होता था, क्या रूहानी होता था, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही वैसा होता था। तो चलिए, हम जैसे कि मैंने आपसे पूछा था सवाल, और आपने सवाल का बिल्कुल सही उत्तर भी दिया, तो कहानी शुरू होती है काल की और जैनी की लव स्टोरी से, यानी कि ये लव स्टोरी बचपन वाली लव स्टोरी है। जी हाँ, जेनी और काल एक ही लोकेलिटी में रहते थे, और दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे, दोस्ती थी बचपन से। जेनी एक ऊँचे घराने की थी, और इन्हें ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। वहीं मार्क्स जो थे वो उनसे 4 साल छोटे थे, और एक तो पहला यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मार्क्स उनसे छोटे थे, फिर भी मार्क्स ने जो है जेनी के घर जाके जेनी के पिता से जेनी का हाथ मांगा। पहले तो समाज ही पीछे पड़ गया कि भाई तुम तो एकदम लो ग्रेड मध्यम वर्ग के लड़के हो, तुम कहाँ चले गए इतनी हाई फाई, वो भी सुंदर सी लड़की का हाथ मांगने। पहले तो भाई पूरा समाज पीछे पड़ गया, फिर उसके बाद लड़की के पिता ने भाई मना कर दिया कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, नो, ऐसा तो इम्पॉसिबल वाला सीन है, मतलब आप कहाँ और वो कहाँ, हमारी पुत्री कहाँ, इतनी मतलब क्यूट सी सुंदर सी, इसको ब्यूटी क्वीन कहते हैं और आप कहाँ। तो कहते हैं ना कि लोग थोड़े से दुश्मन होते हैं ज़माने भर की रंजिश से, जिसे फुर्सत नहीं मिलती, वो दिल भी तो किसी की याद में हर पल धड़कता है। इनकलाब की बातें तो दुनिया सुनती है अक्सर, पर उस जुनून के पीछे भी कोई अपना है जो तड़पता है। तो बस इनकलाब की जो गुहार थी वो कहीं ना कहीं इश्क की आग से चल रही थी। कहते हैं ना कि हर किसी को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन दे रहा था आपके पीछे, वो सपोर्ट कौन हो सकता है, आपका अपना ही हो सकता है। तो वो अपना था कोई जो सपोर्ट कर रहा था, और मार्क्स के पीछे जेनी थी। नसीबों का लिखा कोई मिटा नहीं सकता शायद, जिसे दुनिया समझती थी पराया वो अपना निकला। महल की शहजादी ने जिसे चुना था अपना साथी, वो शख्स तो सारी दुनिया का रहनुमा निकला। तो महल की शहजादी को भी वो पसंद थे, तो दोनों ने मतलब कहते ना कि एक दूसरे से शादी करने का जो था ना मन बना लिया था, और मार्क्स को किसी कारणवश उन्होंने हाथ वाथ मांगा, और भाई गंभीरता चल रही थी, तनातनी जिसे कहते हैं ना, थोड़ा स्ट्रेस वाला माहौल। मार्क्स को उसी समय एक देश जाना पड़ गया, मतलब दूसरे देश जाना पड़ गया, काफ़ी मतलब माहौल कह सकते टेंशन वाला हो गया था। पेरिस के ब्रेसल्स और फिर लंदन की
उन सब तंग गलियों में, और भुखमरी का दौर उस समय था, घर का सामान गिरवी रखना, और इन सब के बीच जेनी ने मार्क्स को नहीं रोका और 7 साल इंतजार किया। 7 साल, आप क्या इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि कोई इंसान आपका इंतजार करे? वो भी मतलब आपकी माँ कर सकती है, आपका पिता कर सकता है, लेकिन आपका कोई प्यार करने वाला आपका 7 साल इंतजार करे, आजकल के जमाने में क्या पॉसिबल है? आप सोच के बताइए। आजकल तो देखती हूँ कि मतलब शादीशुदा इंसान है और थोड़ा सा मतलब अच्छी जॉब वॉब मिल जाती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला सीन हो जाता है। मतलब 6 महीने भी इंसान मतलब पेशेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ 7 साल जहाँ पे कम्युनिकेशन का कह सकते माध्यम 0 के बराबर थे, फ़ोन वगैरह ना के बराबर थे, और चिट्ठियाँ पहुँचने में 6-7 महीने, कभी कभी तो साल लग जाता था, और उस दौर में 7 साल तक प्यार को जिंदा रखना ये कोई मामूली बात नहीं थी, और ये जेनी ही कर सकती थी। और जेनी ने 7 साल तक इंतज़ार किया मार्क्स का और किसी से शादी नहीं की। जेनी ने मार्क्स का हमेशा साथ दिया, चाहे उनकी लिखावटों को साफ करने में हो, और चाहे उनके कहते ना कि क्रांतिकारी विचारों को एक छोटी सी हवा देने में हो। मुसीबतों की अंधेरी रातों में वो साथ चलती रही, चिराग बनकर खुद को हर कदम जलाती रही। कभी कफन के पैसे ना थे, कभी रोटी का ठिकाना, मगर मार्क्स की खातिर वो हर सितम सहती रही, वो हर सितम सहती रही। तो चलिए हम सुनते हैं हमारी प्यारी जेनी के लिए ये गाना, और आप लोग भी बताइए कि क्या आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि जहां आपको इंतज़ार करना पड़े यार, कि मतलब आई हैव टू वेट, और बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़े, तो क्या आप करेंगे? मतलब मुझे भी खुद पे भी डाउट हो रहा है कि 7 साल इंतज़ार थोड़ा सा मतलब दिल को दहलाने वाला लग रहा है, पर वो प्यार था, वो पेशेंस था, वो धैर्य था, वो जजमेंटशिप नहीं थी, वो प्यार था। एंड यस, मार्क्स लकी थे इस बारे में, कार्ल मार्क्स लकी थे इस चीज़ के लिए, और उनको जेनी मिली थी।

इंतज़ार। जी हाँ, 7 साल का इंतज़ार, लंबा धैर्य और फाइनली इंतज़ार मुकम्मल हुआ और 1847 के पहले यानी कि 1843 में दोनों की शादी हुई। लेकिन ये किसी परिकथा की शुरुआत नहीं थी। आपको लग रहा होगा ना कि अरे 7 साल का इंतज़ार और शादी हो गई बस और काम खत्म। नहीं भाई, ये कहानी आगे कई दर्दनाक मोड़ देखने वाली थी। 1843 में शादी हुई और मार्क्स के जो क्रांतिकारी विचार थे, इसकी वजह से उन्हें हर साल दूसरे देश, दूसरे शहर निकलना पड़ता था। कभी पेरिस, कभी ब्रसेल्स, फिर लंदन, ऐसे ही। यहाँ तक कि जेनी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, घर का सामान बेच दिया ताकि मार्क्स अपनी किताब दास कैपिटल लिख सकें। उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं किया, उन्होंने मार्क्स के विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उनकी एडिटर और सेक्रेटरी की भूमिका भी निभाई। मतलब जब आपका प्यार आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करते करते आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपनी जी जान लगा दे, तो समझ लो आपको दुनिया का बेस्ट लाइफ पार्टनर या पार्टनर मिला है, सरल भाषा में कहूँ तो भाई नसीब इस मामले में तो कार्ल मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और एक समय ऐसा भी आ गया कि रोटी का ठिकाना नहीं था। बहुत कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को आंखों के सामने अगर दम तोड़ते देख रही है क्योंकि इलाज के पैसे नहीं है, उस समय माँ टूट जाएगी और अपने ऐसे लाइफ पार्टनर से जो क्रांति के पीछे भाग रहा है उसके सामने हाथ जोड़ देगी, भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि तुम तो क्रांति के पीछे अपने बच्चों को गवा रहे हो। पर जेनी ने कुछ नहीं कहा। आप बताइए कि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको लग रहा है कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है जो हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपना धैर्य खोगे कि नहीं खोगे? तो जेनी ने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने इसलिए दम तोड़ते देखा क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। जेनी टूट सकती थी, मार्क्स से शिकायत कर सकती थी, पर उन्होंने मार्क्स के मिशन को अपना बना लिया था। वो सिर्फ पत्नी ही नहीं थी, एक कामरेड थी, यानी कि साथी थी। साथी वो होता है जो आपको पुश करता है हर जगह, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आपके अपने हर दर्द को वो मरहम बनके अपने लेवल पे सॉल्व करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है, खुद जल के भी रोशनी बन जाता है सामने। मोहब्बत सिर्फ बाहों के सहारे से नहीं करते, कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ बाहों के सहारे से नहीं करते, ये तो एक कश्ती है जो तूफानों में पलती है। जहां उम्मीद की हर एक क्षमा बुझने को आती है, वही वो एक साथी है जो दुआओं से बात बनाती है, वही वो एक साथी है जो दुआओं से बात बनाती है। अब बात करते हैं 1881 की, जब जेनी उस समय पे थी जब सब कुछ बदलने वाला था। 1881 के पहले की कुछ चीज़ों को और मैं बताना चाहूँगी क्योंकि हर किसी का मन होता है ना कुछ जान ले और जान ले और जान ले। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जेनी और मार्क्स के 7 बच्चे थे, 4 को गरीबी और बीमारी ने खा लिया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब इनके पास कफन के पैसे भी नहीं थे, लेकिन जेनी अपना धैर्य बनाकर रखती रही। मार्क्स ने एक बार लिखा था कि जेनी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी हिम्मत मार्क्स की असली पूंजी थी। अब देखते हैं कि क्या ये प्यार आगे जाएगा या फिर धैर्य के साथ, मतलब धैर्य जैसे टूटेगा वैसे प्यार का भी दी एंड हो जाएगा। आज के ज़माने में छोटी छोटी परेशानी पे एक दूसरे से हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं, एक दूसरे को जज करने लगते हैं, लेकिन क्या करें, आजकल का ज़माना ही कुछ ऐसा है। पर एक समय था जो मार्क्स को अब तोड़ने वाला था। अभी तक तो सब कुछ जेनी से सहती आई अपने लेवल पे, पर अब वो समय आ गया था जब मार्क्स को सहना था। 1881 में जेनी इस दुनिया को अलविदा कह गई। मार्क्स पूरी तरह टूट गए,
उन्होंने कहा था, मेरी हस्ती का एक बड़ा हिस्सा चला गया और उन्हें लगा कि अब वो नहीं जी पाएंगे। जेनी के जाते ही उनकी जिंदगी में भी जैसे अंधेरा छाने लगा था। उनको दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मार्क्स उनके जनाजे पर नहीं जा पाने के गम में और ज्यादा डूब गए थे, क्योंकि जब जेनी की डेथ हुई वो उनके पास नहीं थे। ठीक 15 महीने बाद मार्क्स ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दोनों एक साथ सो रहे हैं। उन्हें मौत भी जुता ना कर सकी इस जहां में, वो आज एक ही मिट्टी का हिस्सा है। जहां इनकलाब का नाम लिया जाएगा दुनिया में, वहीं गूंजेगा मार्क्स और जेनी का ये किस्सा। वहां गूंजेगा मार्क्स और जेनी का ये किस्सा। ये तो बात रही दोनों के प्यार की शुरुआत की और अंत की। एक इंसान जब क्रांतिकारी बनता है तो वो अपनी क्रांति के पीछे भागता रहता है। उसे सपोर्ट करने वाला इंसान जो उसके पीछे चल रहा है वो कभी कभी दिखना बंद हो जाता है उसे। ऐसा नहीं था कि मार्क्स प्यार नहीं करते थे जेनी से, पर आज जिस दर्शन शास्त्र को हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो उनके विचारों पे चल रहे हैं, वो तब संभव ना हो पाता अगर वो जेनी के साथ खड़े रहते या जेनी का सपोर्ट करते। तो एक साथ इंसान दो नाव पे तो पैर नहीं रख सकता, पर जेनी ने धैर्य नहीं छोड़ा। जेनी ने उनका साथ अंत तक निभाया, अंधेरी रातों में साथ चली, खाली हाथों में साथ रही, और इस तरह हो गई दोनों के अमर प्रेम की कहानी का अंत। हर सितम सहने के बाद भी उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया। और एक अंतिम लेटर मैं पढ़ना चाहूंगी। अक्सर क्या करते थे, कार्ल मार्क्स की आदत थी, वो जेनी को प्यार जताने के लिए उनके लिए एक लेटर लिख दिया करते थे। लेटर में हमेशा उनके लिए कुछ जो जो वो महसूस करते थे, जो वो मिलके नहीं कह पाते थे, वो चिट्ठी में लिख के रख दिया करते थे। और वो लेटर जब भी जेनी को मिलते थे, जेनी उसको बहुत प्यार से पढ़ती थी। और आज उन्हीं में से एक चिट्ठी को आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। वो चिट्ठी जिसे कार्ल मार्क्स ने 21 जून 1865 में लिखी थी। मेरे दिल अजीज, मैं फिर से ये खत तुमको लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ और भी मैं तुमसे दूर होता हूँ, तुम्हें अपने और करीब महसूस करता हूँ। तुम हर वक्त मेरे जहन में होती हो, मैं तुम्हारे बिना किसी भी उत्तर के तुमसे कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूँ। ये जो क्षणिक दूरियां हैं, ये बहुत ही सुंदर होती हैं। लगातार साथ रहते रहते हम एक दूसरे में, एक दूसरे की बातों में, आदतों में इस कदर इकसार होने लगते हैं, उसमें कुछ भी अलग होने की संभावना ही नहीं होती। फिर छोटी छोटी सी बातें, आदतें कब बड़ा रूप ले लेती हैं पता ही नहीं चलता। और फिर साथ रहते रहते हम चिड़चिड़ापन अपने अंदर महसूस करते हैं। ये दूरियां हमारे अंदर इस चिड़चिड़ेपन को दूर रखती हैं। लेकिन दूर जाते ही वो सब पल मुझे याद आने लगते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए होते हैं। किसी करिश्मे की तरह दूरियां प्यार की परवरिश करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज और बारिश नन्हे पौधे की करती हैं। मेरी प्रिय, इन दिनों मेरे साथ प्यार का यही करिश्मा घट रहा है। तुम्हारी परछाइयां मेरे आसपास रहती हैं, मेरे ख्वाब तुम्हारी खुशबू से सजे होते हैं। मैं जानता हूं कि इन दूरियों ने मेरे प्यार को किस तरह संजोया है, संवारा है। जिस पल तुम मेरे साथ नहीं होती हो, मैं अपने भीतर प्रेम की शिद्दत को फिर से महसूस करता हूं। मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ हूं। ये जो पढ़ना, लिखना, जानना, आधुनिक होना, ये सब हमारे भीतर के संशयों को उजागर करता है, तार्किक बनाता है, लेकिन इन सब का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा प्यार मुझे मेरा होना बताता है।
मैं अपना होना महसूस कर पाता हूँ तुम्हारे प्यार में। दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं। ये चिट्ठी कार्ल मार्क्स द्वारा जेनी के लिए लिखी गई थी, जो मैं पढ़ रही हूँ आप लोग के बीच। दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत खूबसूरत महिलाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम हो जिसके चेहरे में मैं खुद को देखता हूँ, जिसकी एक एक सांस, एक एक झुर्रियाँ मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादें हैं। मेरे जीवन की तमाम तकलीफें उन मीठी यादों के साए में कम लगती हैं। तुम्हारे चेहरे को चूमते हुए मैं अपने जीवन को भी तकलीफ और दर्द में भूल जाता हूँ। गुड बाय मेरी प्रिय, तुम्हें और बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, तुम्हारा मार्क्स। आप बताइए, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कितने भी गहरे जख्म क्यों नहीं होंगे, वो सब भर जाएंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे आप लोग बताइए। इतनी खूबसूरत चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरी आंखें भर आईं कि कोई इतना संवेदन, इतना प्यार के साथ, इतना इमोशन के साथ कैसे लिख सकता है। ओह माय गॉड, मेरी धड़कनें बढ़ गई इसको पढ़ते हुए। आप लोग बताइए आपको सुन के कैसा लगा। और ये थी कार्ल मार्क्स की और जेनी की कहानी। जेनी के मरने के ठीक एक साल दो महीने बाद, यानी कि 15 महीने बाद, मार्क्स ने इस दुनिया को छोड़ दिया। सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, पीछे पीछे चल देता है। और इन दोनों के प्यार के लिए एक प्यारा सा गाना तो बनता है, द ओल्ड इज गोल्ड, दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू जेनी एंड मार्क्स।

और अक्सर नए पुराने गानों से हमें ये पता चलता है कि इमोशंस हर जगह हैं। तो एक नया गाना जो नया तो बहुत नहीं है लेकिन हाँ प्यार को फील करने के लिए मदद करता है। बंडी जी लिखते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ किस्मत वालों को ही मिल पाता है, बाकी तो दिखावे वाला प्यार करते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन अगर हम एक इंसान भी अगर लॉयल होगा सामने वाला कोशिश करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत दिल से निभाता है और सामने वाला उस प्यार को समझ नहीं पाता है। धर्मेंद्र जी लिखते हैं प्यार ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों स्वार्थी ना हो, एक दूसरे पर भरोसा अटूट करें। और सच कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्यार हमेशा एक दूसरे की ज़रूरतों पर नहीं डिपेंड करता, प्यार एक दूसरे के भरोसे और एक दूसरे की कहते हैं ना कि प्रेजेंस ना होने पे भी महसूस किया जा सकता है। बस आपका इमोशनल कॉन्टैक्ट कितना है ये आपके प्यार को डिसाइड करेगा कि आपका प्यार कहाँ तक जाएगा। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

तो भाई प्यार इबादत बन जाता है जब आपके साथ हो जाता है। फिलहाल मेरा प्यार जो है आप लोग हैं, और आप लोग मेरे प्यार को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मुझे भी लगने लगता है ना कि हाँ,

मुझे तो मुझे ऑन एयर आने के बाद लगता है कि एकदम मैं फुल मोहब्बत वाले जोन में हूँ। और देखिए, और चलिए, आप लोगों के साथ कुछ छोटे मोटे से सवाल हो जाते हैं और आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी

तो भाई बिल्कुल आपकी आरजे बिना आपका लव सॉन्ग सुनाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाली है। तो जल्दी से सोच के बताइए वो कौन सी किताब थी, जल्दी से नाम लिखिए, और आरजे बिना की तरफ से आपको तोहफा ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। और आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी फटाफट से एक लव शायरी लिख के भेज ही दीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज देखूँ कि आपके अंदर प्यार कितना ज़्यादा है। जो जो लाइव मुझे सुन रहा है वो फटाफट से अगर अपने प्यार को, प्यार के लिए डेडिकेटेड शायरी, लव शायरी नहीं लिख के भेजेगा तो मैं समझूंगी कि उसका प्यार झूठा है, वो सिर्फ दिखावा करता है। तो चलिए आपके प्यार को समझते हुए एक गाना आप लोग के साथ सुनते हैं और आंसर का इंतज़ार भी करते हैं। और जैसा कहते हैं ना कि इंतज़ार हो गई इंतज़ार की, तो इंतज़ार करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि प्यार आपका सच्चा है या फिर झूठा। तो चलिए सुनते हैं फिल्म आपकी मेट्रो इन दिनों से गाना, प्यारा सा गाना कायदे से, मुझे बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं अरिजीत की आवाज़ में।

हाँ बिल्कुल, और मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती। सभी जानते हैं कि नशा नहीं करते फिर भी पी लेते, पर

अगर तुम शराब होती फिर भी पी लेते, अगर तुम शराब होती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आप लोगों से एक और सवाल कर ही लिया जाए मुकम्मल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्ल मार्क्स की हमने बात की, तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। तो ये बताइए ज़रा कि कार्ल मार्क्स ने मतलब कार्ल मार्क्स ने अपनी जो फाइनल जो कहते हैं ना कि जर्नी जो है, उनका जो डेथ है, उनकी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, वो कब ख़त्म हुई, कहाँ ख़त्म हुई? ईयर तो मैंने बता दिया, जगह का नाम आप बताइए कि कौन सी वो सिटी थी जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और चलिए क्या बात है, प्यासी ही रह गई मोहब्बत की आरजू। ओहो, क्या कहने। गुड इवनिंग आरके जी, कैसे हैं? कि धर्मेंद्र जी लिखते हैं कि प्यासी ही रह गई मोहब्बत की आरजू, आँख में आंसू ही दे गई मोहब्बत की आरजू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आरके जी, आपके लिए मैं गाना सुनाऊंगी कि ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। दिल को बच्चा रखिए। और बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि अमेरिका में लोग बोलते हैं कि एज बिगिंस एट 40, और एज एक नंबर मात्र है, और दिल अगर जवां है तो सब कुछ जवां है। तो चलिए आगे बात करते हुए, बंटी जी ने कहा है ना कि गाना सुनना है उनको, तो उनका गाना सुना देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और मुकम्मल कर लेते हैं। लिखते हैं हमारे प्यारे लिसनर अनिल जी लिखते हैं कि तेरे इश्क की बारिश में भीगना है मुझे, तेरे इश्क की बारिश में भीगना है मुझे, ये सूखी मोहब्बत से अब मन भर सा गया है। क्या बात है, मतलब सच में प्यार की बरसात हो रही है आज शाम में। क्या बात है, क्या बात है। अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, बंटी जी लिखते हैं कि अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यास लिखा जाता है, मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलम भी, मैं प्यार लिखूँ तो तुम्हारा नाम लिख जाता है। तो चलिए प्यार वाला गाना घूमर बाय बंटी जी, फिल्म पद्मावत से आप सभी के लिए। अगले सवाल का जवाब तैयार रखिएगा। सवाल है कि मार्क्स ने अपनी अंतिम सांसें किस शहर में ली?

0: जी बिल्कुल, और बिल्कुल सही आंसर दिया आशु जी, और मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। गुड इवनिंग अनुष्का, कैसी हैं आप? और ये दर्द किसी के जाने का जीवन से वो कभी भरा नहीं जा सकता। तो मैं चाहूँगी आप अपनी पसंद का गाना फरमाइश करें, लेकिन आपके लिए गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ, और ये गाना मैं रहूँ या ना रहूँ स्पेशली मैं प्ले करना चाहती हूँ हमारी लिसनर आशु जी के लिए। आशु जी, ये गाना आपके लिए, लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू, और आप अपनी पसंद का फरमाइश कर सकती हैं।
1: इट्स कॉम्प्लिकेटेड।
2: इट्स सिंपल। लव।
1: लव? आपने भी किया था लव?
2: था, किया है और हमेशा करता रहूंगा।

0: प्यार पास हो या दूर,
1: कुछ तेरी स्टोरी जैसी,
0: प्यार में जीना ही प्यार है,
1: कॉम्प्लिकेटेड,
0: और कोई साथ हो या ना हो, प्यार कभी भी अधूरा नहीं रहता अगर आप प्यार को जीना जानते हैं। कई बार हम मिन्नतें करते हैं अपने प्यार से और कह देते हैं कि

करूं। तो बस इंतज़ार करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्यार को ज़िंदा रखना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए और प्यार से इस दुनिया को जीते रहिए, क्योंकि कहते ना, जंग से

हमें दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। तो चलिए सुनते हैं बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। और इसी के साथ मुझे याद करते रहिए, कल मिलेंगे आप लोगों के साथ, अंताक्षरी खेलेंगे और खूब धूम मचाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून, लव यू ऑल। सर उठा के जियो, प्यार करके जियो, जहाँ भी जियो प्यार के साथ जियो। ओके, एंजॉय करते रहिए और अपनी फ्रिक्वेंसी यानी कि 89.6 FM को ट्यून करके रखिए। लव यू ऑल।

सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खास बात, आपके जज्बात ज़रूर मुझे चैट बॉक्स में बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए एकदम जज्बातों से मैच करता हुआ, और उसको ला के हमारी फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों। मुझे तो आज समझ ही नहीं आ रहा था कि आज की फरमाइशी महफिल को आखिर शुरू कैसे किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ में इस फरमाइशी की महफिल को शुरू किया जाए, क्योंकि आज आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल का मूड भी कुछ मिक्स्ड है। तो आप लोग का मूड कैसा है मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम अनुष्का जी श्रावस्ती से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, द ग्रेट सेन साहब राजस्थान से, दीपक खतियागर गोंडा से, अनिल वर्मा सैदापुर से, बंटी गुर्जर, सुरेश कुमार जी चौक से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से, आरजे सोनी गोपालगंज से आपका भी स्वागत है, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, मजीद मालवे नगर गोंडा से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और इस्तकबाल है। सो क्यों ना बढ़ें हमारी आज की पहली फरमाइश की तरफ। सो पहली फरमाइश हमारे पास में किसकी है, क्या आप सभी को पता है? सो पहली फरमाइश है दोस्तों हमारे पास में अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा, आए हाय। सो सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा, और ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी और वरना कवारी मर जाऊंगी। हमने एंजॉय किया है फाइनली ये गाना अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले किसी ने कुछ अर्ज किया है। सबलू सावंत जी का बोरीवली मुंबई से कहना है कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिन, ये जवाब उनका था। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना जीवन साथी साथ में रहना। सो एंजॉय करते हैं मनहार उदास और अनुराधा जी का ये गाना ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

साथ में रहना। हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना किसी देरी के। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमारी महफिल में हमारे नए नए श्रोता लोग जुड़ चुके हैं, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। निशा गोंडा से आपका स्वागत है और धर्मेंद्र मोहन जी आपका भी स्वागत है। विशाल बेदर्दी, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। उदालक शर्मा जी मनकापुर से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है द ग्रेट सेन साहब की। द ग्रेट सेन साहब को राजस्थान से सुनना है गाना कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। तो पूरब और पश्चिम का ये गाना एंजॉय करेंगे हम। और इसी के साथ में द ग्रेट सेन साहब ने कुछ अर्ज भी किया है कि दिल तोड़ कर वो बोले मुस्कुरा दो, हमारी यादों को दिल से भुला दो, हम तो जी लेंगे तुम्हारे बिना, बस तुम अपने दिल को समझा दो। सो एंजॉय कर लेते हैं अब इनकी फरमाइश भी। स्टे ट्यून्ड।

सो कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुमको छोड़ दे। हमने एंजॉय किया है ये गाना, ये नगमा द ग्रेट सीन साहब की फरमाइश पर। तो चलिए ना, चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपक जी की हथियागढ़ गोंडा से। उनको सुनना है रंग मूवी का गाना, दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा। सो एंजॉय कर लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मजीद जी, न्यू तरंग टेलर गोंडा से आपका स्वागत है, स्टे ट्यून। कितना खूबसूरत नगमा है ना, आवाज किसकी है चैट बॉक्स में जरूर बताना।

सो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। रंग मूवी का ये गाना हमने इंजॉय किया है कुमार सानू की आवाज में, और मैंने आप लोग से पूछा था कि चैट बॉक्स में जरूर बताना, तो हमारे न्यू तरंग टेलर से मजीद जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि कुमार सानू की आवाज है। वेरी वेरी गुड। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से, और अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना हमको ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे। तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है सैदापुर।

पेंटर बाबू मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है। दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना किसी देरी के, लेकिन उसके पहले स्वागत है आपका विकास प्रजापति जी। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत जी की बोरीवली मुंबई से, और बोरीवली मुंबई से सबलू सावंत जी को सुनना है गाना देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। आहा, सो एंजॉय करते हैं सबलू सावंत जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। ये नगमा मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे तो दिल के बहुत करीब है। आप लोग को कैसा लगता है जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ में सबलू सावंत जी का कहना है कि धोखे का दर्द झूठे वादों में किसी के ऐसे पिस गए, धोखे का दर्द झूठे वादों में किसी के ऐसे पिस गए, सीने के दर्द को दबाकर हम हंसना सीख गए। वाह बहुत खूब, सो एंजॉय कर लेते हैं अब ये वाली फरमाइश भी। वैसे सबके दिल में दर्द तो होता ही होता है, चाहे 1% चाहे 0.1% चाहे 10%, है ना।

0: So, इस बहुत ही खूबसूरत से नगमे का लोफी मिक्स वर्जन हमने एंजॉय किया है दोस्तों, सबलू सावंत जी की फरमाइश पर, जो की है बोरीवली मुंबई से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रबल मिश्रा जी गोंडा से, और जुगल किशोर वर्मा मीन्स जग्गू दादा एमपी से आपका भी स्वागत है। सो दोस्तों, नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आरजे सोनी की गोपालगंज से, उनको सुनना है गाना बारिश की जाए। सो एंजॉय करते हैं बी प्राक का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ आरजे सोनी की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले मेरे कुछ लिसनर्स को पता नहीं होगा कि वो फरमाइशें कैसे कर सकते हैं। सो आपको बस सिंपल सा फंडा करना है कि अगर आपके पास में आईफोन है तो एप्पल स्टोर, या फिर अगर आपके पास में एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर पे जाना है, और ज्ञानस्थली 89.6 एफएम लिखना है और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको ब्लैक एंड रेड कलर का लोगो दिखेगा, बस आपको इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन आपके ऐप में इंस्टॉल हो गया, मुबारक हो। और आप फटाफट से चैट बॉक्स में आके अपनी फरमाइशी गीत को लिख सकते हैं और आपका गाना जरूर प्ले होगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।
1: तू कब करेगी शादी?
2: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी।
1: क्यों?
2: दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है।
1: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

तो बी प्राक का ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों, ये दर्द भरा नगमा हमने एंजॉय किया है आरजे सोनी की फरमाइश पर। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। शादी से याद आया दोस्तों, कल मेरे घर के पास में ना संगीत था लड़के का, और फिर उस संगीत में, लड़के के संगीत में मैं रात में गई हूँ और मैंने खूब डांस किया है, मुझे तो बहुत मज़ा आया है, मैंने तो बहुत इंजॉय किया है। तो शादियों के सीज़न में यही तो होता है, मैं तो बस ऐसी पार्टी ढूंढती रहती हूँ कि जहाँ पे मुझे जी खोल के डांस करने को मिले, और मुझे ऐसी पार्टी भी मिले, ऐसे गैंग भी मिले जो एकदम अव्वल, एकदम मेरे दर्जे के हों, जिस हिसाब से मैं पागल हो जाती हूँ जैसे ही साउंड सिस्टम बजता है, मेरा माइंड हैक हो जाता है। ऐसे ही मेरी पार्टी में कुछ है, मेरे गैंग में कुछ मेंबर्स हैं जिनका भी स्क्रू ढीला हो जाता है जैसे ही वो साउंड सिस्टम बजता है, तो हम सब के सब पागल हो जाते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो ऐसे ही शादी ब्याह का न्योता अटेंड करने जाती हूँ, आप कैसे शादी ब्याह के न्योता में जाते हो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी सुरेंद्र यादव जी की तरफ से, जो कि हैं गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस गाने को हम इंजॉय करेंगे किसकी फरमाइश पर? सिर्फ और सिर्फ विशाल बेदर्दी की फरमाइश पर। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तूने चुरा लिया है। अलका याग्निक और शान की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये गाना विशाल बेदर्दी की फरमाइश पर, और विशाल बेदर्दी ने कुछ अर्ज भी किया है। विशाल बेदर्दी का कहना है कि बेदर्द तेरी हंसी में छुपा कोई राज है, बेदर्द तेरी हंसी में छुपा कोई राज है, हम टूटते रहे और तुझे इस पर नाज है। दिल दे बैठे जिसको अपना समझकर, दिल दे बैठे जिसको अपना समझकर, वही आज हमारी मोहब्बत से बेपरवाह है। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है न्यू तरंग टेलर से मजीद जी की, मालवे नगर गोंडा से। और न्यू तरंग टेलर से मजीद जी को मालवे नगर गोंडा से सुनना है गाना वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, याद है ना। सुराज रिबूट का अरिजीत सिंह की आवाज में एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मजीद जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो याद है ना, हमने एंजॉय किया अरिजीत सिंह की आवाज़ में राज रिबूट का ये नगमा, सिर्फ और सिर्फ मजीद जी की फरमाइश पर, जो कि है न्यू तरंग टेलर मालवीय नगर गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, फरमाइशी महफिल में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा सीधे 9 बजे तक अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। सो एंजॉय करिएगा देश भर की जानकारियों को, चंद मिनटों में कलेक्ट करिएगा और उसके बाद में फटाफट से अपनी फरमाइशी महफिल में उपस्थित हो जाइएगा। अगर चाय नाश्ता करना है तो वो भी करने जा सकते हैं। सो एंजॉय करते हैं प्रबल मिश्रा की फरमाइश। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इम्तियाज अहमद जी गोंडा से, मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से, आपका भी स्वागत है। अनिल शास्त्री जी स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
6: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। यह सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की, इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अनु दादा जी की आवाज़ में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो क्यों ना चलें अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। तो इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, चुकी है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तो हमने एंजॉय किया मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की। उनको सुनना है गाना कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। सो दिल चाहता का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। एंजॉय करते हैं रवि की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: खूबसूरत सनम्मा बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी आवाज विकास गोंडा से रवि की, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था इट्स कुमार को, नागेश्वर धाकड़ को, प्रमुख कुमार को जो कि हैं लुधियाना से, और राधे को। चले चलते हैं, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की गोंडा से, और निशा को गोंडा से सुनना है दूल्हे की सालियों आईना तो देखो। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा निशा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: बॉलीवुड क्लासिक से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

से लोग हमने एंजॉय किया है हम आपके है कौन मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। निशा की फरमाइश पर जो की है गोंडा से, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। और मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना नैनो की जो बात नैना जाने हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम नागेश्वर धाकड़, आपका तहे दिल से स्वागत है और इस्तकबाल है। नीना वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। सो दोस्तों एंजॉय करते हैं मनीष शर्मा की फरमाइश और लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपके अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। और इस गाने की फरमाइश मनीष शर्मा की भी तरफ से आई है और मान लेते हैं कि नागेश्वर धाकड़ की भी तरफ से आई है और अनिल बनर्जी की भी तरफ से आई है। अनिल बनर्जी जी गोरखपुर से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। Stay tuned.

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। एक ऐसा समय जिस समय हमको ज़रूरत होती है बहुत सुकून की, कुछ अपनेपन की, कुछ अच्छे से ख्यालों की, ख्वाबों की, ताकि हमारी नींद अच्छी हो जाए, रात अच्छी हो। और कहा जाता है ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो रात क्या है साहब, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो ये चाहने वालों की रात है और इस चाहने वालों की रात में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। जिस कलमकार को आपके बीच आज लेकर आए हैं उनका नाम है आलोक श्रीवास्तव, बहुत ही जाने माने पत्रकार, बहुत बड़ी हस्ती मीडिया के जगत की, फिल्मों के कई सारे संवाद लिखे और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से, हम कायस्थों को भी थोड़ी उर्दू आती है। ये कहने का उन्होंने ऐलान किया और फिर गजल की दुनिया में उतरे और कहा कि, आलोक श्रीवास्तव जी ने कहा कि तू वफा करके भूल जा मुझको, तू वफा करके भूल जा मुझको, अब जरा यूं भी आजमा मुझको, तू वफा करके भूल जा मुझको, अब जरा यूं भी आजमा मुझको, ये जमाना बुरा नहीं है मगर, ये जमाना बुरा नहीं है मगर, अपनी नजरों से देखना मुझको, बेसदा कागजों में आग लगा, सदा मतलब आवाज, बेसदा कागजों में आग लगा, आज की रात गुनगुना मुझको, तुझको किस किस में ढूंढता आखिर, तुझको किस किस में ढूंढता आखिर, तू भी किस किस से मांगता मुझको, अब किसी और का पुजारी है, अब किसी और का पुजारी है, जिसने माना था देवता तुमको। क्या बात है, अब किसी और का पुजारी है, जिसने माना था देवता तुमको। कहना ये चाहते हैं कि जिसने आपको देवता समझा, आपने उसकी कदर नहीं की और वो इस कारण किसी और का पुजारी बन बैठा, उसे लगा कि उसने भगवान ही गलत चुन लिया। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये उसमें दिखे जो इसके लिए डिजर्व करता हो। और जब हम रास्ते पर चलते हैं साहब, तो जिंदगी चलते रहने का नाम है, कभी कभी रुके रुके से भी कदम कुछ कहते हैं। जी हाँ, रुके रुके से कदम क्या कहते हैं ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी स्वर कोकिला लता जी की आवाज में ये प्यारी सी गजल। जी हाँ, आज गजल की शुरुआत करेंगे लता जी की आवाज से, उनकी गाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ। सुनते रहिए और रेडियो गन 89.6 FM यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल लता जी की आवाज़ में ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। पहले हमने आपको एक गजल सुनाई लता मंगेशकर जी की आवाज में, और फिर उसके पश्चात इस समय जितनी भी गजल गायिकाएं हैं जो गा रही हैं, उनमें श्रेया घोषाल को लोग कहते हैं कि थोड़ा सा टच उनका लता जी से हल्का सा मिलता जुलता है। तो हमने कहा एक पौराणिक युग की मीरा और एक आधुनिक युग की मीरा का एक बेजोड़ संगम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद है आपको गजल पसंद आई होगी। हाँ भाई, मेरे साथ बहुत सारे श्रोता भी हैं, और सबसे पहला संदेश हमको मिला है नीना जी का। सर नमस्कार, आदाब आपको नीना जी, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। मनीष शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भाई क्या बात है, कैसे हैं आप? नेहा जी बहराइच से हैं, नमस्कार मनु सर, आदाब नेहा जी। और क्या भाई, मखमली आवाज़ की मल्लिका हैं आप। पत्रकार शोएब अख्तर सिंह साहब हैं, पुराने गाने साहब, पुराने ही गाने तो चलते हैं, नए गाने तो हमने कभी बजाए ही नहीं। जी बिल्कुल, मेरे दिल की है आवाज़ जी। और नेहा ने लिखा है कि उर्दू है ही मीठी जुबान। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही मीठी जुबान है। और इसके पश्चात भाई मेरे साथ प्रबल मिश्रा जी हमको दिखाई दे रहे हैं, उपस्थित हैं, जब है प्रणाम करते हैं। और अनिल शास्त्री लिखते हैं कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं हो सकता। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, भाई मनुष्य जी हाजिर हों, आपको नमस्कार। नमस्कार जी जी, आपका नमस्कार स्वीकार किया हमने। और इसके पश्चात हम चलते हैं, भाई क्या बात है नेहा जी, अरे अभी तो ये अभी अभी आए अभी बैठे, ये किसके लिए लिख दिया भाई आपने? और सविता शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जी प्रणाम करते हैं आपको, चरण स्पर्श है। शुभ संध्या सर जी, आपको भी शुभ संध्या। और जी चलते हैं फिर आलोक श्रीवास्तव की ओर। उन्होंने कहा कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, मुझे लगता है कि जब आप सफर में होते हैं तो किसी का साथ आपको बड़ी मजबूती देता है, कोई है अपने साथ। अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ, तवाफ बोलते हैं चक्कर लगाने को, जिसको परिक्रमा करना कहते हैं, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। वास्तव में वो पंक्ति है कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। तो अगर किसी के साथ आप चले हैं और फिर अगर आपको अकेले चलना पड़ गया तो साहब तकलीफ होती है। तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, लगा के वक्त को ठोकर जो खाकसार चले, लगा के वक्त को ठोकर जो खाकसार चले, यकी के काफिले हमराह बेशुमार चले। और फिर उन्होंने ऊपर वाले से कहा कि नवाजना है तो फिर इस तरह नवाज मुझे, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो इस तरह दीजिए ऊपर वाले कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। और वास्तव में हर इंसान यही चाहता है। पता नहीं कितने साल हो गए रफी जी को गए हुए, लेकिन याद उनकी आज भी है, कोई मिटा नहीं पाया और न कोई शायद वहां तक पहुंच भी पाया। नवाजना क्या है? नवाजना है तो फिर इस तरह नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। यह जिस्म क्या है? कोई पैरहन उधार का है। पैरहन कहते हैं कपड़े को, वस्त्र को, यही संभाल के पहना यही उतार चले। अब आप सोचिए, माटी की देह मिली राख का बिछौना, जिंदगी मिली है जैसे कांच का खिलौना। उसी तरह से साहब गीता भी यही बोलती है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयात नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार से हम फटे पुराने वस्त्र पहनकर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से जिंदगी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेने चली जाती है, रूह नहीं मरती। तो
तो ये जिस्म क्या है? कोई उधार मांगा हुआ कपड़ा है? ये जिस्म क्या है? कोई पैरहन उधार का है, यही संभाल के रखा यही उतार चले, ये जुगनुओं से भरा आसमां जहां तक है, ये जुगनुओं से भरा आसमां जहां तक है, वहां तलक तेरी नजरों का इकदार चले। मैं चाहता हूं कि तुम आसमान की ऊंचाइयों तक देख पाओ, यही तो एक तमन्ना है इस मुसाफिर की, यही तो एक तमन्ना है एक मुसाफिर की, जो तुम नहीं हो तो सफर में तुम्हारा प्यार चले। अगर आप नहीं भी हैं तो आपका प्यार हमारे साथ रहे, और इंसान अगर नहीं भी रहता तो उसका प्यार, आप अकेलेपन में होते हैं तो बहुत याद आता है। पंक्तियां हैं कि भीग जाती हैं जो पलके कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलके कभी तन्हाई में, कहां पूछता हूं मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूं कि ऐसे में अचानक कोई, और ये भी डरता हूं कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले। जी हां साहब, तो ये इश्क है, और इश्क नचाए जिसको यार वो फिर नाचे बीच बाजार। जी हाँ, इश्क ने अगर एक बार आपको नचा दिया साहब, तो आप ये पाएंगे कि जो मजा इश्क में है वो कहीं नहीं है। कुमार विश्वास जी लिखते हैं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। उनकी अगली गजल ये है, अगली पंक्तियां की, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना है कभी मीरा दीवानी है। दीवाने होने का अपना एक अलग अंदाज है साहब, ये खुलेआम चैलेंज कर देना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये दीवानापन गजब की बात है। किसी शायर का शेर मुझको याद आता है कि कमाले इश्क हर शख्स को हासिल नहीं होता। देखिए, आपसे बात करता हूं तो पंक्तियां दिमाग में आती हैं, कमाले इश्क हर शख्स को हासिल नहीं होता, लाखों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है, इश्क बनियों के बस की बात नहीं है साहब। जो हर चीज में व्यापार में जो घाटा और मुनाफा देखेंगे, मोहब्बत उनके बस की बात नहीं है। मोहब्बत तो समर्पण का नाम है, और इश्क ने अगर आपको नचाया एक बार तो फिर आप सरे बाजार

नाचेंगे और आपको कोई शर्म नहीं रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका इश्क बड़ा पाकीज़ा है। चलिए, जब बात इश्क की चल चुकी है तो एक बहुत ही पुरानी सी गज़ल पंकज उदास साहब की आवाज़ में हमको याद आ रही है, फिलहाल सुनाते हैं और सुनकर बताइए क्या ये गज़ल आपने पहली बार सुनी थी, और अगर सुनी तो फिर आपको कितनी अच्छी लगी।

जी हाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ दुनिया में आके, क्या बात है भाई। और बहुत से लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं भाई, पवन मिश्रा जी मेरे साथ हैं स्टार्स पर, तारे पर तारे, सितारे पर सितारे, और क्या बात है। और ये इश्क का मतलब जानते हैं आप लोग, जब तलक रज्जगा नहीं चलता, जब तलक रज्जगा नहीं चलता यानी रात में जागने वाला काम, जब तलक रज्जगा नहीं चलता इश्क क्या है पता नहीं चलता, और मेरे करीब आ जाओ प्यार में फासला नहीं चलता। जी हाँ, आप मेरे एहसास के करीब आए, हम आपके एहसास तक पहुँचें तो शायद ये महफिल और भी शानदार हो सकती है। इश्क जब तलक रज्जगा नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता, और मेरे

करीब आ जाओ, प्यार में फासला नहीं चलता, वो फासले जो हों वो विचारों के ना हों। अगर आप जहनों में दीवार ना हो तो मिलना कोई दुश्वार नहीं है। आप एक ही शहर में रहते हुए कुछ व्यक्तियों से बात नहीं कर पाते होंगे फोन पर, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे हफ्ते में 2 या 3 बार बात आपके शहर के बाहर है और हो जाती होगी। तो ये तो दिल से दिल को राहत है साहब। चलते हैं आलोक श्रीवास्तव जी की ओर। उन्होंने कहा कि जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है। उसके ताने होते हैं। आपको कोई सटायर करता है, व्यंग करता है तो एकदम क्या, जैसे हम घर पर पहुंचे और हमारे पापा हमसे पूछ ले, अरे मनु जी आज आप 11:30 बजे आ गए, आइए आपका स्वागत है। मतलब अंतरात्मा हिल जाएगी मेरी कि कोई गुनाह अजीम हो गया हमसे। तो उसके ताने होते हैं। मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। वो सब बातें जो तुम अक्सर कहती हो, वो सब बातें जो तुम अक्सर कहती हो, उन बातों का सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो गर्लफ्रेंड होती हैं वो कहती हैं कि बड़ी नसीब वाली होगी वो लड़की जिसे तुम मिलोगे, और जिसके साथ शादी होती है वो कह देती है कि पता नहीं हमारा कहाँ कर्म फूटा था कि तुमसे शादी हो गई। कंफ्यूज्ड सा मैं हो जाता हूँ कभी कभी कि वो वाली पहले वाली सही थी कि ये वाली सही है। मतलब बहुत खुश नसीब होगी वो जिसे आप मिलेंगे, और जिसको मिले उसने कहा कर्म फूट गए हमारे जो तुम मिले। आप भी जरा सोच कर बताइएगा, आपके भी साथ ऐसा हुआ है क्या कर्म फूटने वाली बात? जोक्स अपार्ट, जी हाँ एकदम विनोद की बात है ये। वो सब बातें जो तुम अक्सर कहती हो, उन बातों का सहना मुश्किल होता है। वो बातें जो कहने में आसान लगें, वो बातें जो कहने में आसान लगें, उन बातों का कहना मुश्किल होता है। तनवीर गाजी ने एक शेर में अपनी बात कही कि वो जो 3 लफ्ज मैंने तुमसे बोले थे मुझे बस उतनी ही अंग्रेजी आती है। मतलब वो 3 शब्द क्या थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो बातें जो कहने में आसान लगे, उन बातों का कहना मुश्किल होता है। माजी की यादें भी ऐसा सूरज है। माजी मतलब आपका बीता हुआ, हमारा बीता हुआ कल। माजी की यादें भी ऐसी सूरज हैं, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है। मैं अपनी दुनिया का ऐसा सूरज हूँ, मैं अपनी दुनिया का ऐसा सूरज हूँ, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है। मतलब गिरवी रख पाना। लगती है ये बहर बहुत आसान, मगर जो आप सुन रहे हैं ये पंक्तियाँ, उन्होंने कहा कि ये सुनने में ये पंक्तियाँ आसान लगती है। लगती हैं ये बहर बहुत आसान, मगर इसमें गजलें कहना मुश्किल होता है। जी हाँ, वास्तव में आसान लफ्जों में गजलें कह पाना ये बहुत बड़े हुनर की बात होती है। जी हाँ, आइए आपको फिर ले चलते हैं एक बार फिर दर्द की दुनिया में। इंसान की एक उम्मीद होती है,
वसीम बदलवी साहब हमको याद आते हैं, उनका एक

0: दिन है कि मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मनाकर मुझको ले जाए। इंसान जब छोड़ता है तो सोचता है कि भी आएंगे मनाएंगे और साथ लेकर जाएंगे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आ जाते हैं, रोकते हैं और मना कर लेकर चले जाते हैं। नहीं तो साहब ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं जाने दो, जाने वालों को कोई रोक पाया है क्या? जी हाँ, जब बात आने और जाने की हो रही है तो एक बहुत ही प्यारी गज़ल मुझे फिर याद आ गई और मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए भाई, सविता जी ने ईमानदारी के साथ बताया कि वो पंकज उदास साहब की गज़ल उन्होंने उसके पहले नहीं सुनी थी। अब आप बताइए क्या ये गज़ल आपने पहले कभी सुनी थी? जी हाँ, बात लता जी की गज़ल से हमने शुरू की थी और अगर रफ़ी जी की गज़ल न शामिल करें तो लगता है कि कुछ अधूरापन है। आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब।

जी हाँ, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों सांस दे रहे हो। वास्तव में कोई संगीतकार है साहब, और अगर उसका हाथ कट गया और उसके सामने आप वाद्य यंत्र लाकर रख दीजिए तो उसका तो दिल कलेजा निकल जाएगा। एक फिल्म देखी मैंने, गीत, राजेंद्र कुमार बहुत अच्छा गीत गाते हैं, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, और आवाज़ जब चली जाती है तो बंसी की धुन पर, और जब सामने नायिका सितार पर होती है, आह, उस व्यक्ति को अपनी बेबसी पर इतना रोना आता है कि नायिका को कहना पड़ता है कि तेरे नैना क्यों भराए। कभी मौका मिलेगा तो इस गीत को YouTube पर सुनिएगा, वीडियो अगर आप देखेंगे तो शायद इस एहसास को आप ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। चलते हैं आलोक श्रीवास्तव जी की तरफ। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। देखिए, इस दुनिया में ना साहब, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि इस दुनिया का हर इंसान आज के दौर में समझदार है। अगर हम समझते हैं कि हम सामने वाले को मूर्ख बना सकते हैं तो इससे बड़े मूर्ख हम हैं, सबसे बड़े मूर्ख हम हैं, क्योंकि सामने वाला भी आपके जितना ही समझदार है। आपके पेरेंट्स भी समझदार हैं, आप कुछ गलत करते हैं और उनको बता देते हैं, वो कहते हैं ठीक है, लेकिन वो जानते हैं, क्योंकि उम्र का जो पड़ाव आज आप देख रहे हैं उस पड़ाव को उन्होंने 40 साल पहले छोड़ दिया है। कहा जाता है कि जौन करत हो तुन कह के छोड़ दे, तो साहब गलत नहीं कहा जाता, सही है। तजुर्बा आप बाजार से नहीं खरीद सकते, ये इंसान की जिंदगी उसको सिखाती है। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफम बहुत है, मसरूफ मतलब व्यस्त, मसरूफम बहुत है मगर बेखबर नहीं, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। आज का दौर पिता और पुत्र में, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। अगर ऐसा होता दोस्त, और अगर ये पंक्तियां गलत होती, तो गोंडा जैसे शहर में भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, जो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि बच्चे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया है। समाज की ये कड़वी सच्चाई है जो हमको सोचनी चाहिए। आखिर में कौन है वृद्धाश्रम में रहने वाले वे वृद्ध, कहां से आ गए, वो स्वर्ग से टपक पड़े क्या? नहीं साहब, निकाले गए हैं वो। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सो तुम्हारे ही मातृ पिता तबलो बुलानन दीख नहीं जबलो, ससुराल प्यार भई जब तेरी रूप कुटुंब भये तब ते। शादी के बाद लड़का बदल जाता है साहब। अरे लड़कियां तो शादी के बाद विदा होती हैं, लड़के इंटर पास होने के बाद विदा हो जाते हैं, निकल जाते हैं IIT करने, डॉक्टर बनने, MBBS बनने, लड़कियां तो फिर भी कुछ दिन रुक जाती हैं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे उनकी कोई रह गुजर नहीं, कितना जिए कहाँ से जिए और किस लिए। तीन शब्द, तीन सवाल, कितना जिए कहाँ से जिए और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं। कभी सोचता है काश ये हम पर होता, लेकिन तकदीर, मौत जबानी होगी तभी आएगी साहब। दे ऑल्सो सर्व हू ओनली स्टैंड एंड वेट, और माजी की राख उल्टी तो चिंगारियां मिली, बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं। चाहना चाहिए, मोहब्बत जरूरी है, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन अ लिमिट, हर चीज अपनी सीमा में बहुत खूबसूरत लगती है। बढ़ते संदेश की ओर, और मनीष शर्मा जी लिखते हैं, भाई की लगती है ये बहस बहुत आसान, मगर जो आप सुन रहे हैं ये पंक्तियाँ आसान लगती हैं ये बहस बहुत आसान, मगर इनमें गज़लें कहना मुश्किल होता है। जी हाँ, वास्तव में आसान लफ्ज़ों में गज़लें कह पाना एक बहुत बड़े होने की बात है। जी हाँ, आपको फिर ले चलते हैं एक बार फिर दर्द की दुनिया में। इंसान की एक उम्मीद होती है, वसीम बदलवी साहब की वो पंक्ति आ जाती थी है,
कि मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मना कर मुझको ले जाए। जी हाँ, प्रवल मिश्रा जी हमारे साथ हैं भाई, क्या बात है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि प्यार जिद से नहीं किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपने लिए राधा नहीं। अरे क्या बात कह दी, अपनी राधा के बिना नहीं रहता, क्या बात कह दी आपने। और सत्या जी इतनी बहुत बात सुना है और रोज सुनते हैं, क्या बात है भाई, शुक्रिया। और रूठने की अदाएं भी क्या गजब थी उनकी, गले लगा कर बोला बात नहीं करनी तुमसे, क्या बात है भाई। प्रवल मिश्रा जी का शायराना अंदाज भी बहुत पसंद आता है। धर्मेंद्र मोहन जी, दिल लुटियाँ दिल लुटियाँ, रेडियो गणेशली के मालिक से मेरी बात करवाओ भाई, क्या बात है, हमको आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या। मुझे गुरूर है तुझे चाहने वाले बहुत हैं, और मुझे गुरूर है मेरी तरह तुझे कोई और चाह नहीं सकता है। बिल्कुल, क्या बात है। यहाँ पर मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं, कोई ज़रूर

0: और ये घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति लेंगे। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। जी हाँ, आप सभी लोगों ने इतनी देर तक हमारा साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जी हाँ, अपने खजाने को तैयार रखिएगा, कल काल इन प्रोग्राम है, कल आपको बनना है श्रोता, हम बनेंगे श्रोता और आप बनेंगे वक्ता। जी हाँ, तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है बाहर एक गजल, ठीक 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार
1: आप सबके साथ, और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, बीच सफर में। दिन के 10 बज रहे थे। उत्तराखंड आपदा राहत केंद्र की संचालिका अम्मा जी अपने कार्यालय में बैठी आपदा राहत केंद्र के कार्यों और गतिविधियों का लेखा जोखा देख रही थीं। कार्यालय क्या था, टीन की छत वाला एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक तरफ की दीवार पर कुछ गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लगी थीं, दूसरी तरफ की दीवार पर कुछ नाम पते लिखे हुए थे उन व्यक्तियों के जिनके या तो फोटो उपलब्ध नहीं थे या जो इस केंद्र में इस आशा के साथ रह रहे थे कि शायद कभी कोई अपना आकर उन्हें ले जाए। दरवाजे के ठीक सामने कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी थी जिसके उस तरफ अम्मा जी बैठकर अपना काम करती थीं। उनका चेहरा दरवाजे की तरफ रहता था ताकि आगंतुक को ठीक से देख सकें। कमरे के बाहर रखी कुर्सी पर जमुनिया बैठती थी, आने वाले लोगों का नाम पता लिखकर अम्मा जी को बताने के लिए, फिर उनके हाँ कहने पर वही आगंतुक को अंदर भी ले जाती थी उनसे मिलवाने। जमुनिया के बगल में जमीन पर बैठा एक आंख वाला और एक टांग से लंगड़ा मरियल सा कुत्ता भूरा झपकी लेता रहता था। उत्तराखंड में मई जून का महीना टूरिस्ट सीजन होता है, तपती गर्मी से जान बचाकर लाखों की संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ठंडक का मजा लेने आए हुए थे। ऐसे में जून 2013 में अचानक आई प्राकृतिक विपदा ने उत्तराखंड के जनजीवन को झकझोर कर रख दिया था। भारी संख्या में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी हताहत हुए थे। ये राहत केंद्र जून 2013 में आए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्थानीय लोगों की सहायता के लिए काम करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसके सभी सदस्य किसी न किसी रूप से इस आपदा से पीड़ित और ग्रसित थे। किसी ने धन खोया था तो किसी ने जन, अगर किसी का कोई अपना आ जाता तो सारे सदस्य खुशी खुशी उस सदस्य को गले लगाकर उसके परिवार को सौंप देते। बड़ी

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बीच सफर में। अब तक आपने सुना उत्तराखंड में जून 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक सहायता केंद्र में अम्मा जी काम करती थीं। उनके साथ वहां पर थी उनकी सहायिका जमुनिया और एक कुत्ता भूरा। अब आगे, झपकी लेता हुआ भूरा अचानक भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज सुनकर अम्मा जी समझ गईं कि जरूर कोई दुखियारा आया होगा। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रतिदिन कोई ना कोई आ ही जाता था सहायता मांगने। कभी कोई रोजी रोटी की तलाश में तो कोई अपनों की। जमुनिया ने उस व्यक्ति का नाम पता लिखकर कागज अंदर लाकर टेबल पर रख दिया। अम्मा जी रजिस्टर में कुछ लिख रही थीं। बिना देखे ही जमुनिया को आगंतुक को अंदर भेजने का इशारा कर दिया। पता नहीं क्यों आज आगंतुक के साथ भूरा भी अंदर चला आया अपनी दुम हिलाते हुए, वरना अम्मा जी के आवाज दिए बिना वो कभी भी अंदर नहीं आता था। अपने काम में मगन अम्मा जी ने टेबल पर रखा कागज उठाया और पढ़ने लगी। नाम हरीश रावत, उम्र 65 साल, गांव बिसुनपुरा, जिला चमोली, उद्देश्य गुमशुदा धर्म पत्नी की तलाश, पत्नी का नाम लाजवंती रावत, उम्र 61 साल, पहचान रंग गोरा, भारी बदन और चेहरे पर सिंदूर की एक बड़ी सी बिंदी। उन्होंने नाम और पता एक बार और पढ़ा और सन्न रह गई। सिर का पल्लू आगे सरका, आंख उठाकर सामने देखा। फटे पुराने कपड़ों में भूख और लाचारी में डूबा एक व्यक् ति जो अपनी उम्र से कम 10 वर्ष ज्यादा का लग रहा था, आंखें नीचे किए और अपने हाथों को जोड़े खड़ा था, याचना भरा भाव लिए हुए। 15 जून 2013 की आधी रात का एक एक लम्हा क्या वो भूल सकती थी? बाहर के कमरे में लाजवंती और उनके पति सो रहे थे। कमरे में प्रकाश के लिए एक ढिबरी रात भर जलती रहती थी। पति की उम्र 62-63 वर्ष की थी। दुबले पतले और फुर्तीले होने के कारण वो अपनी उम्र से 5 वर्ष कम ही प्रतीत होते थे, जबकि वो भारी बदन थी। घुटनों में दर्द रहने के कारण चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती थी।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बीच सफर में। अब तक आपने सुना अम्मा जी एक राहत आपदा केंद्र में काम करती थीं, जो कि जून 2013 में आए प्राकृतिक आपदा के लिए बनाया गया था। एक दिन वहां पर एक व्यक्ति सहायता मांगने आया, जिसका परिचय पढ़कर वो पुरानी यादों में खो गईं। उन्हें वो रात याद आ रही थी जिस रात वो आपदा आई थी। अब आगे, रात में दर्द की दवा लेने पर ही नींद आती थी उन्हें। सर्दी में दर्द ज्यादा बढ़ जाता, तब छोटी छोटी जरूरतों के लिए पति और बहुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। अंदर के दो कमरों में उनके दो बेटे, बहुएं, पोते पोतियां सो रहे थे। भरा पूरा परिवार था उनका। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और दरवाजे पर खड़ी गायें उनके परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तभी वो भयानक जलजला आया। पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पता चलते ही चारों तरफ भागो भागो पहाड़ हिल रहा है कि चीख पुकार मच गई। बगल में पति गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जोर से हिलाया तब वो उठे। अंदर जाकर बच्चों को आवाज लगाई। बेटे बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बाहर भाग रहे थे, किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। जान के खतरे का आभास होते ही आनन फानन में भाग खड़े हुए थे फुर्तीले हरीश रावत भी। एक बार पलट कर देखा भी नहीं घुटनों से लाचार अपनी बेबस पत्नी को, जिसने पिछले 35 सालों से उनके हर सुख दुख में साथ दिया था। बहुत आहत हुई थी लाजवंती पति के इस रवैये से। कहां सात फेरे लेकर सात जन्मों तक का साथ निभाने की कसमें खाई थी दोनों ने, पर सेकंड भर में ही सब कुछ साफ हो गया। एक ना एक दिन मरना तो सबको है, पर जीते जी अपनों का साथ छूटने का दुख मरने से भी भयंकर होता है, ऐसा महसूस हुआ था उस पल। उस रात अम्मा जी बिल्कुल असहाय और संवेदन शून्य पड़ी थीं अपने बिस्तर पर। तभी भूरा एक आवारा कुत्ता, जो घर के बाहर वाले बरामदे में पड़ा रहता था, न जाने किधर से आया और उन्हें देखकर भौंकने लगा, मानो कह रहा हो जल्दी करो वरना अनर्थ हो जाएगा। वो चाहती तो धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर सकती थी, पर जीने की इच्छा तो खत्म हो चुकी थी। अब जीना भी किसके लिए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बीच सफर में। अब तक आपने सुना जून 2013 में आई उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में आहत लोगों की मदद करने के लिए एक सहायता केंद्र था, उसमें अम्मा जी काम करती थीं। बिछड़े हुओं को मिलाना या किसी और तरह की आर्थिक या कामकाज से जुड़ी जरूरतों में मदद करना उनका काम था। एक दिन वहां पर कोई आया जिसका परिचय पढ़ के वो सोच में डूब गईं। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब वो आपदा आई थी, किस तरह रात में जब अचानक सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा तो उनका पूरा परिवार और उनके पति अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और वो अपने शरीर और पैरों में दर्द की वजह से चलने में असमर्थ थीं और वहीं रह गईं। अब आगे उन्होंने भूरा से कहा, तू भी क्यों नहीं भाग जाता नलायक मुझे छोड़कर। पर भूरा जाता तो कैसे, कुत्ता जो था, एक बार जिसके हाथ की रोटी खा ली जिंदगी भर उसका गुलाम बन गया। तभी ऐसा लगा कि भूचाल आ गया हो, सब कुछ उलट पुलट। उसके बाद जब आंख खुली तो देखा ऊपर से रोशनी आ रही थी, दिन निकल चुका था। ध्यान से देखने पर अनुमान लगाया शायद चट्टान के टुकड़े छत पर गिरने से छत टूट गई थी और कमरे में चारों तरफ रोड़े पड़े थे। वो नीचे पड़ी थी और उनकी खाट उनके ऊपर। फिर जब दोबारा होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। लोगों ने बताया कि एक घायल कुत्ते ने किस तरह लोगों को भौंक भौंक कर बताया कि कोई इस मलबे में दबा पड़ा है। तब से वो कुत्ता भूरा और लाजवंती साथ साथ ही रहते थे। उपचार के बाद धीरे धीरे वो थोड़ी ठीक हुईं, तो लोगों के दुख दर्द देखकर अपना गम भूल गईं और दिन रात जरूरतमंद लोगों की सेवा में लीन हो गईं। शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने से इस दौरान शरीर गल चुका था। अब वो सफेद वस्त्र पहनती थीं और मस्तक पर बिंदी नहीं लगाती थीं। उनके सेवा भाव के कारण उन्हें आपदा राहत केंद्र की संचालिका बना दिया गया। किसी को उनका असली नाम नहीं मालूम था, सब उन्हें सम्मान से अम्मा जी कहते थे। तभी जमुनिया अंदर आई ये सोचकर कि अम्मा जी क्या आदेश देती हैं। अम्मा जी ने इशारे से दीवार पर लगे फोटो और नाम पता दिखाने को कहा। आगंतुक ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा और निराश होकर वहीं धम्म से जमीन पर बैठ गया। सारे के सारे अनजान थे उसके लिए। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर जमुनिया उस व्यक्ति को लेकर बाहर चली गई और क्षमा मांगते हुए कहा कि ये केंद्र उनकी सहायता करने में असमर्थ है। फिर हमेशा की तरह सांत्वना दी और कहा, हौसला रखिए, आपको आपकी पत्नी जरूर मिल जाएंगी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बीच सफर में। अब तक आपने सुना, जून 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में आहत लोगों की सहायता के लिए एक सहायता केंद्र में अम्मा जी संचालिका थीं। जमुनिया उनकी सहायिका और उनके साथ रहता था एक कुत्ता भूरा। रोज ही कोई ना कोई वहां आता, कभी अपनों को ढूंढने, कभी रोजी रोटी की तलाश में। एक दिन वहां जो कोई आया, उसका परिचय पढ़कर अम्मा जी को पुरानी बातें याद आने लगी कि किस तरह उनका एक खुशहाल परिवार था और एक दिन जब आपदा आई तो सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। एक बार पलट के नहीं देखा, चलने में असमर्थ वो भी वहां से निकल पाई या नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया जो वहां अपनी पत्नी को ढूंढने आया था। वो उस केंद्र से बाहर निकल गया। अब आगे, जमुनिया के साथ ही भूरा भी चल पड़ा उस आगंतुक के पीछे पीछे, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। पता नहीं कुत्ते में क्या बात थी कि आगंतुक को अपने बरामदे में पड़े उस आवारा कुत्ते की याद आ गई, जिसे मना करने के बावजूद भी लाजवंती सुबह शाम कुछ ना कुछ खाने को दे ही देती थी। और अकस्मात ही उनके मुंह से निकल पड़ा, भूरा। नाम सुनते ही कुत्ता अपनी दुम हिलाने लगा। उस रात करीब 10 बजे भूरा के भौंकने से अम्मा जी की नींद खुली। लगा किसी ने हौले से दरवाजा खटखटाया हो, ठीक उसी तरह जिस तरह शादी के बाद उनके नए नवेले पति सबके सोने के बाद खटखटाकर कमरे में घुसते थे। उन्हें लगा मन का वहम है, पर थोड़ी देर बाद जब दोबारा दरवाजा खटखटाया गया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। देखा हरीश खड़े थे, आंखें नीची किए और अपने हाथों को जोड़े। कहा, लाजो मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। धक से कलेजा हो गया एकदम उनका। ये भूरा भी ना, अम्मा जी ने सोचा। दिल कड़ा करके कहा, कौन सी लाजो, कैसी लाजो? हरीश बोले, मेरी धर्मपत्नी, मेरी हमसफर। वो तो मर चुकी 15 जून 2013 की आधी रात को, जब किसी अपने ने बीच सफर में उनका साथ छोड़ दिया था, कहकर उन्होंने दरवाजा कस के बंद कर लिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी बीच सफर में। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आज की कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर की जिसकी खूबसूरती जगमगाई सिल्वर स्क्रीन पर, जिसने बतौर गायिका भी अपनी आवाज का जादू हम सब पर बिखेरा। वो कौन है, उनकी जिंदगी कैसी रही, ये सब बताऊंगी मैं, यानी आरजे अनोखी, जो लेकर आई है आपका पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हमारे आज के अंक के सुपरस्टार पर बातें ढेर सारी होंगी आपसे, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले उन्हीं की आवाज में ये सॉन्ग।

दोस्तों, इस खूबसूरत आवाज की मल्लिका का नाम है सुलक्षणा प्रताप नारायण पंडित, जिन्हें हम सुलक्षणा पंडित के नाम से भी जानते हैं। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 में हुआ। सुलक्षणा पंडित दरअसल हिसार से ताल्लुक रखती हैं, जिसे अब फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये जिला हरियाणा में पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इनके पिता प्रताप नारायण पंडित एक बड़े ही जाने माने शास्त्रीय गायक रहे हैं और हमारे देश के मेस्ट्रो क्लासिक सिंगर पंडित जसराज इनके अंकल हैं। इनके पारिवारिक बैकग्राउंड पर और भी बातें जारी रहेंगी आपके फेवरेट शो भूले बिसरे गीत में आरजे अनोखी के साथ, पर उससे पहले ये सॉन्ग जो अपनी बारी का वेट कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ली 89.6 एफएम पर शो भूले बिसरे गीत, जिसमें आज के अंक की नायिका हैं सुलक्षणा, जो एक बेहद रौनक हुस्न की मल्लिका, अदाकारा व हिंदी सिनेमा जगत की पार्श्व गायिका भी रही हैं। इनके तीन भाई हैं, मनधीर, जतिन और ललित। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही पहचाना आपने, वही जतिन ललित जो कि संगीतकार जोड़ी के रूप में बड़े मशहूर हुए। छोटी बहनें हैं माया और अभिनेत्री विजया पंडित। इनकी तीसरी बहन संध्या सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो आप सभी जान ही चुके हैं कि हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री और म्यूजिक से इनका कैसा नाता है। अब बात इनके म्यूजिक करियर की, पर उससे पहले इन्हीं पर फिल्माया गया इन्हीं की आवाज में ये सॉन्ग।

सुलक्षणा पंडित जब मात्र 9 वर्ष की थी तो इन्होंने एज अ प्लेबैक सिंगर काम शुरू किया था। इनका पहला सॉन्ग था सात समुंदर पार से गुड़ियों के संसार से, जिसमें लता मंगेशकर के साथ ये सुनाई दी थी। मूवी का नाम था तकदीर 1967 में। आइए एंजॉय करते हैं इसी गीत को।

किशोर दा और रफी साहब के साथ भी इन्होंने कई सारे कॉन्सर्ट्स में भाग लिया। दूर कराही जो 1971 में आई, इन्होंने इसमें गाया था बेकरार दिल तो गाए जा। अभी ये बतौर सिंगर ही काम कर रही थी कि 1975 में इन्हें एज एन एक्ट्रेस भी ब्रेक मिला। इसके बारे में जानेंगे इस म्यूजिकल सॉन्ग को एंजॉय करने के बाद। सॉन्ग वही है बेक

दोस्तों, इनकी पहली फिल्म थी उलझन, जो कि रघुनाथ झलानी की फिल्म थी। इस मूवी में इन्हें पहला ब्रेक मिला। इसमें इनके हीरो थे संजीव कुमार। इस फिल्म में लता मंगेशकर ने गाने जरूर गाए थे, लेकिन सुलक्षणा ने भी एक दो सॉन्ग्स गाया था। उन्हीं में से एक सॉन्ग के बोल हैं, आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप।

दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि सुलक्षणा जी ने दूसरी ही फिल्म संकोच जो कि आई थी 1976 में ऐसा किरदार निभाया उसमें कि इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। हाँ जी, खाली नॉमिनेटेड ही होके रह गई, लेकिन सोचने की बात है कि दूसरी फिल्म में ऐसी अदाकारी की गई इनके द्वारा कि इनका नाम फिल्म फेयर की लिस्ट तक पहुंच गया। इसमें इनके साथ एज अ हीरो थे जितेंद्र कपूर, फिर विनोद खन्ना के साथ प्रकाश मेहरा की फिल्म हेरा फेरी में दिखी सुलक्षणा पंडित। यानी अब तो आप समझ गए होंगे कि इनके फिल्मी सफर में रफ्तार आ गई थी। तो आइए एक और सॉन्ग का लेते हैं आनंद और फिर इनके लाइफ का क्लाइमेक्स बताती हूँ आपको। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर अपना पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत इस सॉन्ग के साथ।

दोस्तों, इस सॉन्ग से पहले मैंने आपको सुलक्षणा की लाइफ के क्लाइमेक्स के बारे में बताने को कहा था, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इनकी कुछ खास उपलब्धियों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुलक्षणा का करियर बहुत छोटा था पर बहुत वर्सेटाइल था। इन्होंने लता मंगेशकर, किशोर दा, मोहम्मद रफी के साथ कई सॉन्ग्स गाए। और हाँ, ये बात भी बहुत हैरान करती है कि सुलक्षणा पंडित को कैफी आजमी और खयाम साहब के लिखे गीतों के लिए गाने पर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा अदाकारी की बात करें तो सुलक्षणा ने अनिल गोस्वामी की फिल्म खानदान में, जो कि 1979 में आई थी, जितेंद्र और बिंदिया गोस्वामी के साथ काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर वेदी और भी अन्य नायकों के साथ ये काम कर रही थी, पर संजीव कुमार के साथ इनका रोमांस काफी चर्चा में रहा। ऐसा क्यों और इनके लाइफ का क्लाइमैक्स यानी सुलक्षणा की लाइफ का क्लाइमैक्स क्या रहा है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे सुलक्षणा जी की ही आवाज में ये प्यारा सा नगमा।

इन्होंने बंगाली फिल्म में भी काम किया। इनकी आवाज पद्मिनी कोल्हापुरी, रेखा, सबाना आजमी के साथ में भी खूब चमकी। ये आवाज चली तो बड़े धूम से, पर उतनी तेज से ही धुंधली भी पड़ गई। और वो क्लाइमैक्स क्या था जिसके बारे में मैंने इतनी देर से आपसे चर्चा की थी? जी श्रोताओं, सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार ने लगभग 7 फिल्मों में काम किया। 7 काम करते करते सुलक्षणा संजीव कुमार से प्यार करने लगी, पर संजीव कुमार का दिल टूट गया था जब इन्होंने हेमा मालिनी को अपना प्रस्ताव भेजा था और हेमा जी ने इन्हें मना कर दिया था। धीरे धीरे संजीव कुमार शराब में डूबते गए और हार्ट पेशेंट हो गए। अमेरिका जाकर हार्ट सर्जरी भी कराई, पर 6 नवंबर 1985 को मात्र 47 की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। संजीव कुमार की मृत्यु ने सुलक्षणा पंडित को तोड़ दिया और इस तरह से ये गहरे सदमे यानी डिप्रेशन में चली गई और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने एक उभरते हुए सितारे को कहीं अंधेरे की धुंध में खो दिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना सुलक्षणा पंडित के बारे में, जो कि एक प्लेबैक सिंगर के साथ साथ एक खूबसूरत और वर्सेटाइल एक्ट्रेस भी थी। अब अपनी आरजी अनोखी को दें अनुमति, मिलते हैं आपसे आपके पसंदीदा शो भूले बिसरे गीत के अगले अंक में। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, जाते जाते अपना तोहफा कबूल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये प्यारा सा नगमा। टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।